सुप्रभात। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 अगस्त 2026। इस समय प्रातः के 5:58:30 में हैं। अब आज की प्रथम सभा आरंभ होती है। मंगल कामना के साथ हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: भाजपा प्रवक्ता संबित

0: पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि परीक्षा को पहले क्यों नहीं रोका गया और क्या इसे दोबारा कराया जाना चाहिए। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
1: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
0: उधर झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। आवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की कथित ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव क्षेत्र में कथित हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त कार्रवाई समिति के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया कि लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

प्रभु, आपकी कृपा की छांव में पल रहे हैं हम। आप दिखा रहे हो रास्ता और चल रहे हैं हम। दुनिया की ठोकरों से तो वाकिफ हैं हम खूब। हम आप दे रहे हैं सहारा, तभी तो संभल रहे हैं हम।

ईश्वर भजन में अपना जीवन बिताने वाला कभी भी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि प्रभु की भक्ति तभी मिलती है जब सभी दुख देने वाली सांसारिक वस्तुओं से मोह भंग हो जाता है।

आज के वंदना कार्यक्रम में आपने जो भक्ति रचनाएं सुनी उनमें आवाजें थीं ओम व्यास साधना सरगम की, MS सुबोलक्ष्मी, अनुराधा पौडवाल और साथियों की। और आइए अब आपको सुनवाते हैं संवेत स्वरों में ये देशगान।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु। आज का विषय है बड़ों की सीख। आलेख श्रीमती निर्मला चतुर्वेदी का है, वाचन है अंजू पांगती का।
1: श्री कृष्ण स्वयं भी महाभारत रोक न सके, इस बात पर महामुनि उत्तंक को बड़ा क्रोध आ रहा था। देवयोग से भगवान श्री कृष्ण उसी द्वारिका जाते हुए मुनि उत्तंक के आश्रम में आ पहुंचे। मुनि ने उन्हें देखते ही कटु शब्द कहना प्रारंभ किया। आप इतने महाज्ञानी और सामर्थ्यवान होकर भी युद्ध नहीं रोक सके? आपको उसके लिए शाप दे दूं तो क्या ये उचित न होगा? भगवान कृष्ण हंसे और बोले, महामुनि, किसी को ज्ञान दिया जाए, समझाया बुझाया और रास्ता दिखाया जाए तो भी वह विपरीत आचरण करे तो इसमें ज्ञान देने वाले का क्या दोष? यदि मैं स्वयं सब कुछ कर लेता तो संसार में इतने सारे लोगों की क्या आवश्यकता थी? मुनि का क्रोध शांत न हुआ। लगता था वे मानेंगे नहीं, शाप दे ही देंगे। तब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर कहा, महामुनि, मैंने आज तक किसी का अहित नहीं किया। निष्पाप व्यक्ति चट्टान की तरह सुदृढ़ होता है। आप शाप देकर देख लें, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, आपको किसी वरदान की आवश्यकता है तो हमसे अवश्य मांग लें। उत्तंक ने कहा, तो फिर आप ऐसा करें कि इस मरुस्थल में ही जल वृष्टि हो और यहाँ भी सर्वत्र हरा भरा हो जाए। कृष्ण ने कहा, तथास्तु, और वहां से आगे बढ़ गए। महामुनि उत्तंक एक दिन प्रातःकाल भ्रमण में कुछ दूर तक

0: निकल पड़े। दिन चढ़ते ही धूल भरी आंधी आ गई और मुनि मरुस्थल में भटक गए। जब मरुदगणों का क्रोध शांत हुआ तब उत्तंक ने अपने आप को निर्जन मरुस्थल में अकेला पाया। धूप तप रही थी, प्यास के मारे उत्तंक के प्राण निकलने लगे थे। तभी महामुनि उत्तंक ने देखा चमड़े के पात्र में जल लिए हुए एक चांडाल सामने खड़ा है और पानी पीने के लिए कह रहा है। उत्तंक उत्तेजित हो उठे और बिगड़ कर बोले, तुम मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो श्राप देकर भस्म कर दूंगा। चांडाल होकर तुम मुझे पानी पिलाने आए हो। उन्हें साथ साथ कृष्ण पर भी क्रोध आया। मुझे उस दिन मूर्ख बनाकर चले गए, पर आज तो उत्तंक का क्रोध सातवें आसमान पर था। जैसे ही श्राप देने के लिए उन्होंने मुंह खोला, भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। कृष्ण ने पूछा, नाराज न हो मुनि, आप तो कहा करते थे कि आत्मा ही आत्मा है, आत्मा ही इंद्र और आत्मा ही साक्षात परमात्मा है। फिर आप ही बतलाइए कि इस चांडाल की आत्मा में क्या इंद्र नहीं थे? ये इंद्र ही थे जो आपको अमृत पिलाने आए थे, पर आपने उसे ठुकरा दिया। बताइए अब मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। ये कहकर भगवान कृष्ण भी वहाँ से अदृश्य हो गए और वो चांडाल भी। मुनि को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि जाति और कुल के अभिमान में डूबे हुए मेरे जैसे व्यक्तियों ने शास्त्र ज्ञान को व्यावहारिक नहीं बनाया, तो फिर कौरवों पांडवों ने श्री कृष्ण की बात को नहीं माना और युद्ध करते रहे, इसमें कृष्ण का क्या दोष? महापुरुष केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं। यदि कोई महापुरुषों से प्राप्त ज्ञान को आचरण में न लाए और यथार्थ लाभ से वंचित रहे तो इसमें उनका क्या दोष? सुधीजनों और महापुरुषों के बारे में केवल सुन लेना या पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं है। उनसे प्राप्त शिक्षाओं और ज्ञान को व्यावहारिक जीवन में आचरण में भी लाना आवश्यक है।
1: चिंतन बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बड़ों की सीख, इस विषय पर आलेख था श्रीमती निर्मला चतुर्वेदी का और वाचन था अंजू पांगती का। और आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान। स्वर है श्रीकांत पारगांवकर का और संगीत है सतीश भाटिया का।

वर के रूप में श्री राम जिस घोड़े पर सवार हैं वो मानो कामदेव का सुंदर रूपधारी है, जो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और मस्त चाल से सबको मोहित कर रहा है। भगवान शंकर श्री राम के इस मनोहारी रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र प्यारे लगने लगे। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु श्री राम के इस रूप पर मुग्ध हैं, किंतु ब्रह्मा को ये छवि देख पाने के लिए अपने मात्र 8 नेत्र पर्याप्त प्रतीत नहीं होते। इधर बारात के स्वागत को आतुर नगरवासियों में आनंद की लहर दौड़ गई है। चंद्रमुखी तथा हरिण की सी आंखों वाली स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वागत गान गा रही हैं। इस अवसर की शोभा देखने के लिए इंद्राणी, शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तथा अन्य देवांगनाएं आम स्त्रियों का रूप धारण कर महिलाओं के समूह में आ मिली हैं। कौन भला किसे जाने और पहचाने, महिला समुदाय के कमल जैसे नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं और होठों पर मुखरित हो रहा है परिछन गीत।

अभी आप सुन रहे थे श्रीराम चरित मानस गान, स्वर थे श्रीकांत पारगांवकर और साथियों के, संगीत था सतीश भाटिया का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें विषय होगा पालक की खेती। वार्ता करेंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। पुराने फिल्मी गाने सुनिएगा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुबह 7:00।

सुबह 7:31 पर ब्रज माधुरी कार्यक्रम में सुनिएगा ब्रजवार्ता बैरन बरसात। वार्ता करूंगी कोमल प्रसाद शर्मा, साथ ही सुनिएगा कुछ लोकगीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आपको सुनवाएंगे सुबह 8:30 पर। 9 बजे कथा क्रम में कहानी सुनिएगा मन के हारे हार है मन के जीते जीत, आलेख और वाचन होगा डॉक्टर किरण बाला गुप्ता का। कार्यक्रम आबोहवा का प्रसारण समय सुबह 9:25 पर। विषय होगा समुद्र भी प्रदूषण की चपेट में, आलेख और वाचन होगा श्री अशोक गुप्ता का। सुबह 9:30 पर आपको सुनवाएंगे चंद गैर फिल्मी गजलें। सुबह 10 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत। पूर्वाह्न 11 बजे सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति होगी संजय सारस्वत की। मध्याह्न 12 बजे गीत बात और एसएमएस, ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। 12:30 पर ब्रज लोकगीत कार्यक्रम।

में आज की कलाकार होंगी सुंदरी कुमारी और सखियां। दोपहर 1:15 पर वनिता लोक कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय होंगे योग और व्यायाम का महत्व, और दूसरा विषय होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। साथ ही वार्ता सुनिएगा भारतीय महिला परिधान में साड़ी का महत्व, वार्ताकार होंगी पूजा। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय अपराह्न 2:30 पर। शाम 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम में आज की बात में युवाओं को लक्ष्य से दूर करता नशा, ये विषय होगा। और दूसरा विषय होगा गरीबों के लिए स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार योजना। साथ ही मार्गदर्शन में सुनिएगा प्रबंधन के क्षेत्र में करियर, वार्ताकार होंगे प्रोफेसर विकास त्रिपाठी, और इनसे बातचीत करेंगे विजय सिंह नौलखा।

शाम 6:15 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में देश हमारो तीर्थ स्थल उज्जैन वार्ता करेंगे हरि नारायण मिश्रा। संध्या वंदन कार्यक्रम शाम 6:30 पर 6:50 पर किसानवाड़ी कार्यक्रम होगा। शाम सुहानी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:31 पर। रात 8 बजे संसद समीक्षा, रात 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा। सुहाने तराने चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:15 पर। रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग का अनुप्रसारण किया जाएगा।

0: ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें, विषय है पालक की खेती। वार्ताकार हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार सारस्वत।
1: पालक का अपना एक विशेष स्थान है और हरी सब्जियों में ये एक विशेष गुणकारी फसल है। पालक की अच्छी पैदावार देने वाली जातियों में ऑल ग्रीन नामक जाति मुख्य है। इसकी पत्ती का आकार मध्यम और पत्ती मुलायम होती है, पतली होती है, गहरे हरे रंग की होती है। इसकी कटाई बुवाई के 30 से 35 दिन पश्चात शुरू हो जाती है और फिर 15 से 18 दिन पश्चात कटाई मिलती रहती है और इस तरह इससे कुल 6 से 7 कटाई ली जा सकती हैं। इसकी बुवाई आमतौर पर अगस्त से लेकर के जनवरी तक की जा सकती है, लेकिन फरवरी से जुलाई तक भी इसको बोया जा सकता है, परंतु कटाई की संख्या और पैदावार इस समय कम मिलती हैं। पूसा ज्योति नामक पालक की दूसरी प्रजाति है जिसकी पत्तियों का आकार बड़ा रंग हरा होता है। शेष बुवाई और कटाई की संख्या ऑल ग्रीन नामक जाति की भांति ही इसमें रहती हैं, अर्थात इस जाति की बुवाई भी अगस्त से लेकर के जनवरी तक की जाती है और पहली कटाई बुवाई के 25 से 30 दिन बाद तथा शेष हर 15 दिन बाद कटाई मिलती रहती है। पूसा हरित नामक जाति भी अच्छी जाति है और यदि इसकी बुवाई सितंबर अक्टूबर तक की जाती है तो यह पैदावार अच्छी देती है। पालक की एक चौथी जाति को हम कह सकते हैं HS23 के नाम से, जिसकी बढ़वार अधिक होती है। बुवाई के 30 दिन बाद पहली कटाई और शेष कटाई लगभग 15 दिन के अंतर से की जाती है। इसकी पत्तियां मोटी होती हैं और रसदार होती हैं तथा बुवाई भी अगस्त से लेकर के जनवरी तक की जाती है। जॉबनेर ग्रीन भी एक अच्छी प्रजाति है। बुवाई, कटाई और पत्ती आदि सभी इसमें जो अन्य प्रजातियां बताई हैं उसी

0: के आधार पर इसमें की जाती है। पालक के लिए बलुई दोमट भूमि अच्छी होती है। इससे भी बुवाई से पूर्व अच्छी तरह से इसकी जुताई की जाती है और खेत की तैयारी के समय 100 से 150 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद आप खेत में मिलाएं, 2 क्विंटल सिंगल सुपर फास्फेट और 50 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलाया जाता है। पालक की बुवाई 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनों में की जाती है। ऐसा करने से निराई में सुविधा होती है, भूमि में वायु का संचार सुगमता से होता रहता है, जिससे पौधों की बढ़वार भी समय से और अच्छी होती है। पालक में सिंचाई का भी विशेष महत्व है। जाड़े के दिनों में 10 से 12 दिन के अंतर से तथा गर्मियों में 5 से 6 दिन के अंतर से इनमें क्रमशः सिंचाइयाँ की जाती हैं। तो पालक एक आयरन देने वाली प्रमुख फसल है और इसकी उपयोगिता दिन प्रतिदिन हरी सब्जियों के रूप में बढ़ती जा रही है। तो पालक की खेती करके आप आसानी से अच्छी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि पालक की मांग प्रतिवर्ष या ये कहें कि सालों भर बनी रहती है और इसको उपभोक्ता लोग खाना भी पसंद करते हैं।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आपने सुना पालक की खेती विषय पर ये वार्ता। वार्ताकार थे डॉक्टर देवेंद्र कुमार सारस्वत।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और अपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: भारतीय रेल विभागेन पश्चिम रेल विभागस्य गैरातपुर अहमदाबाद खंडे चतुर्मार्गीय उपरि सेतोः निर्माणार्थं 53,100 कोटि रूप्यकाणां परियोजना स्वीकृतास्ति। रेलमन्त्रालयेन सूचितं यत् एषा परियोजना पश्चिम रेल विभागस्य अम्ब्रेला वर्क इत्याख्यस्य छत्रक कार्यक्रमस्यान्तर्गतं मार्गीय परिष्कारार्थं सेतूनां पुनर्निर्माणार्थं स्वीकृतास्ति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् रेल सेतु भागस्य समग्र दीर्घता 100 मीटर मिता भविष्यति। अस्मिन् 53 मीटर परिमितं प्रत्येकमपि द्वौ संयुक्त गीडर भागद्वयं समाविष्टमस्ति। हरघर तिरंगा इत्यभियानस्य भागरूपेण जम्मू कश्मीरस्य रियासी मंडल प्रशासनेन जनसामान्यानां हृदयेषु देशभक्ति भावनायाः संवर्धनाय चिनाब नद्याम् एका विशाल तिरंगा नौका यात्रा आयोजिता। स्वतंत्रता दिवसात् पूर्वं एतत् अभियानं समग्रे देशे तीव्र गतिं भजते, यत्र विविध प्रदेशेषु देशभक्तिपूर्ण यात्राणां सांस्कृतिक कार्यक्रमाणां अन्येषां च विविधानां आयोजनानां उत्सवः आचर्यते। भारत ऋतु विभागेन उत्तर बंगाल खात्याः उपरि न्यून चाप क्षेत्रस्य निर्माणस्य पूर्वानुमानं प्रकटितमस्ति, येन अद्य ओडिशा राज्ये गांगेय पश्चिम बंगाल प्रदेशे च अत्यधिक वृष्टिः भवितुम् अर्हति। ह्यः नाइजीरिया देशस्य लागोस नगरे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप क्रीडायाः तृतीये दिने भारतीय फेंसिंग इत्यनेन दलेन विभिन्नेषु वरिष्ठ व्यक्तिगत स्पर्धासु त्रीणि स्वर्ण पदकानि, एकं रजत पदकं, एकं कांस्य पदकं च प्राप्तम् इति वार्ताः।
2: FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। हमारा अगला कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

राम गांगुली के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे शमशाद बेगम को फिल्म आग में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं बहू बेगम फिल्म का गीत, आवाज़ है आशा भोसले की।

चलती का नाम गाड़ी। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत जिसे गा रहे थे किशोर कुमार। गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई थी एसटी बर्मन ने। आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं शमशाद बेगम की आवाज़ में। फिल्म का नाम है आर पार।

आर पार फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे शमशाद बेगम के स्वर में। गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई थी ओपी नैयर ने। इस गाने के साथ ही भूले बिछड़े गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने के लिए संसद ने पारित किया राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी। चयन समिति ट्रस्ट को सौंपेगी अंतिम तीन नाम। नीति आयोग की रैंकिंग में गोरखपुर जिले के बांस गांव ब्लॉक को मिला पहला स्थान। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला पुरस्कार। और प्रदेश में फिर मानसून सक्रिय होगा, 18 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कल राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दी, जबकि लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। यह विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी।
1: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: इस बीच विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। संसद के दोनों सदनों ने कल विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।

0: अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के व्यवस्था संचालन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की भर्ती के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया कल पूरी हो गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रक्रिया के दौरान 18 आवेदकों के साक्षात्कार लिए गए। सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय चयन समिति ने पहले दिन करीब 10 आवेदकों का इंटरव्यू लिया था, जिनमें

0: आवेदकों का इंटरव्यू लिया था, जिनमें रिटायर आईएएस अधिकारी दिनेश चंद्र, रिटायर आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे भी शामिल रहे। सभी उम्मीदवारों के इंटरव्यू और उनके अनुभवों का आकलन करने के बाद चयन समिति अंतिम तीन नाम की सूची तैयार करेगी। ये नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को सौंपे जाएंगे, जिस पर अंतिम फैसला ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। इस फैसले पर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय इंडिया बिग एनर्जी एंड टेक एक्सपो के दूसरे दिन कल कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को बायो एनर्जी की राजधानी बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है।
2: देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा चीनी पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक इथेनॉल पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और अगले दिनों में, जैसा कि आपके अपने प्रेजेंटेशन में आया कि कंप्रेस्ड बायोगैस में भी हम देश में सर्वाधिक उत्पादन, ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश की तस्वीर है।
1: कार्यक्रम में दूसरे दिन भी प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री एके शर्मा मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम रैंकिंग में गोरखपुर जिले का बांसगांव विकास खंड नंबर 1 चुना गया है। यह जानकारी नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर की तरफ से प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे एक पत्र में दी गई है।
3: इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए गोरखपुर को 1.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिली है। गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का जोर समावेशी विकास के जरिए नागरिकों के जीवन में सुगमता और गुणवत्ता के वृद्धि और समग्र रूप में जीवन स्तर के सुधार पर होता है। इसके अंतर्गत 5 थीम स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत ढांचा और सामाजिक विकास के कुल 39 संकेतकों पर संबंधित आकांक्षी ब्लॉकों का मूल्यांकन किया जाता है। GN चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
1: हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश के कई जिलों में कल तिरंगा यात्रा निकाली गई। लखनऊ में महापौर सुषमा खरकवाल के नेतृत्व में लखनऊ नगर निगम मुख्यालय से गांधी प्रतिमा तक तिरंगा यात्रा निकली। बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, संभल और अमरोहा में भी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और स्थानीय लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। कानपुर देहात में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों के मन में राष्ट्रीयता और एकता की भावना को मजबूत करना है। हापुड़ जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों को 2.5 लाख झंडे बनाने का लक्ष्य दिया गया है। गांव अनवरपुर के एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य हेमलता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस अभियान के लिए आभार जताया।
4: हमारे SSG अधिकारियों ने हमें 10,000 झंडे का टारगेट दिया था बनाने के लिए, हमने वो लक्ष्य पूरा किया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव में कुछ कार्य करने को मिला महिलाओं के लिए। और पहले गांव में महिलाएं बाहर नहीं जाती थी, हम SSG से जुड़े तो हमें बाहर जाने का अवसर मिला और हम बहुत खुश हैं इस चीज।
1: स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रदेश में युवाओं को रचनात्मक अभिव्यक्ति का मंच प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए रंग दे बसंती अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत कल लखनऊ में विश्वविद्यालय के पास भित्ति चित्र कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कलाकारों ने माफिया मुक्त और बदलते उत्तर प्रदेश की थीम पर सार्वजनिक भित्ति चित्र बनाए। इस अभियान के क्रम में आज मुजफ्फरनगर में कॉमिक वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज ही रंग दे बसंती अभियान का गीत डर से आजादी भी लॉन्च किया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल अयोध्या में डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 31वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं। इस अवसर पर राज्यपाल ने युवाओं को नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की।

0: नशा किसी भी युवक की शक्ति नहीं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। यह व्यक्ति से उसका विवेक, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, परिवार का विश्वास और जीवन का उद्देश्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान केवल एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि राष्ट्र की युवा शक्ति को सुरक्षित रखने का जन आंदोलन है।
1: प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश न होने के कारण उमस भरी गर्मी पड़ रही है। कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की खबर भी मिल रही है। उधर मौसम विभाग आगामी 18 अगस्त तक मानसून के फिर सक्रिय होने और राज्य के कई जिलों में व्यापक वर्षा होने की संभावना जता रहा है। इस बीच पहाड़ों पर लगातार बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान से मात्र 5 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। वहां बाढ़ से राहत के लिए विविध इंतजाम किए जा रहे हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने के लिए संसद ने पारित किया राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी, चयन समिति ट्रस्ट को सौंपेगी अंतिम 3 नाम। नीति आयोग की रैंकिंग में गोरखपुर जिले के बासगांव ब्लॉक को मिला पहला स्थान, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला पुरस्कार। और प्रदेश में फिर सक्रिय होगा मॉनसून, 18 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।

0: भैया यह कार्यक्रम में आज आपको सुनवाए रहे हैं कोमल प्रसाद शर्मा की वार्ता बैरन बरसात।
1: भैया प्रचंड गर्मी के पाछे कजरारे बदरान को दुपट्टा ओढ़ के आयो महीना सावन को। जी महीना कितेक सुहावनो मन भावनो हुए है। सावन में प्रकृति फिरते मुखरित हो उठे है। धरती हरी चुंदरिया ओढ़े नई नवेली दुल्हन सी लगे है। जाकू देख के पशु पक्षी तलक आत्म विभोर रह जाए हैं। तो फिर मांस मती को का कहो। सावन के कारे कजरारे अत प्यारे बजरा आकाश में उमड़वे लगे हैं और धरती पे ठंडी ठंडी बूंद वाके करे जाकू शांति पहुँचावे हैं। और ऐसे में कोकिलाओं की तरियां ग्राम बालाएं कूकने लगे हैं। बदरा आयो मधुर सुहावनो एजी कोई घटा उठिए घन घोर। कारे कारे बादर बिजली चमके झिंगुर मचावत शोर। रिम झिम रिम झिम मेहा बरसे वन में नाचत मोर। पर भैयाओ हमारे ताही तो जी बरसात बैरन है गई ही। हम तो अपवीति सुनाए रहे हैं त्यारी चुम जानो बात दिनारी है गई है। ब्याह गौने ते दूसरी तीसरी साल की होगी। ज्योताओं को बाली बच्चा उनाओ अब तो भगत्ती में पानी है। ऐसा भयो कि सावन लगते ही घरवारी के पीहरते दो लपका आई गई। बिनकू देख के घरवारी को पाम छटंकी उठवे लगयो और मोहड़ो फूल की तरियां खिल गयो। चौके बाकू लेवे के ताई आए है। भैया अब अगारी की सुनो। बिन के ताई फूली फूली पूड़ी खस्ता कचौड़ी दो सब्जी एक सूखी और एक पतरी अचार बूंदी को रायतो और कटेमा दही फसेमा भूरो। बिन के तो आनंद आएगे और हमारे ताई टिकरा भये सो देख तकेम हमें तो जूड़ी चढ़ आई। पर कहें कौन थे वो तो बाके माजाए भैया कहो करे हैं कि पीहर को तो कुत्ता हु प्यारो लगे है। भैयाओ अब अगारी को अहवाल सुनो। हमारी घरवारी गल भैया डारते भये बड़े प्यार ते हमसे बोली कि देखो जी बहुत दिना है गए भेज देव सावन सगुन मनाऊंगी और भैया आएगो मोए लेवाए वे मैं पीहर कू जाऊंगी। भैया तुम साची मानी हो इतेक सुन तकेम मेरा तो नीचे को दम नीचे रह गयो ऊपर ले गो राम उड़ाए। कछु देर पाछे हमने थूक ली लियो और उतर दियो कि बरसात को मौसम प्यार का मौसम हुई है सो हमें अकेलो मत छोड़े तेरे बिना कैसे भगत कटे हो। भैया हो बाने तो मेरी बात जा कानते सुन के और वा कानते निकास दी और कहवे लगी कि सावन को आमन भयो मोर मचा में शोर घटा उठी घन घोर सो बोले पपिया मोर। अब घटाए उठिए घन घोर

जाऊंगी, मेरो भैया आएगो लेन, पिया जी मेरो भैया मोई भेज देव दिन चार, पिया जी मोई भेज देव। मैं हूँ दासी नाथ तिहारी, पेड़ो देखेगी सास तिहारी, अरे सावन को हल्ला भारी, पीहर में तो जाऊंगी। भैया जी सुन के हमारी हालत सांप छछूंदर जैसी है गई, न लीलवे के न थूकवे के।

0: ना ही करते हैं तो खटपाटी लेके पड़ जाएगी और मोहरों ऐसो बनाई लेगी मानो जब भूवर डार दई हो। और हामी भर देते हैं तो चौबे जी छब्बे के चक्कर में दुबे नायरेंगे। पर जे सोच के बाल हट और त्रिया हट के समूही अच्छे अच्छे दिग्गज घोंटू नवाए जाए हम कुन से खेत की मूली है सो भैयाओ हाँ कर दई। पर मन ही मन सुमिरन करवे लगे ले तुम सुनो के गहरे गहरे के बरसों मेहा और बहुत दिना अरु रहना ऐसे बरसों उमड़ घुमड़ के जे घरवारी जाए सके ना। और तड़क तड़क बीजूरिया चमके पवन चले झकझारी और ऐसो घिरे अंधेरो चहुदिस निकस न पावे घरवारी। पर भैया ऐसो कछु न भयो कहो करें कि मेरे मन कचोर है करता के कचोर। सुबह तो कील कांटे थे झंड है के बिंदा लगाए के मोकू सिंगट्टा दिखाए के अपने पियर को सटक गई। भैया हम पे कहा बीतना बीती ही बाकू सुन लियो। बरसात को मौसम हो जब बिजुरी चमके और तड़के तो रात कोरी निकस जाए नींद ही ना आवे रात भर छत की सोटिन को गिनते रहते और सोचते है कब हमारी घरवारी अपनी सहेली न के संग झूला झूलती भई मौज ले रही होगी और हम ऐसे सुन्न पड़े जैसे सियाप सूंगे हुए। ऐसी बरसात थे तो हमको कहाँ मिलो ऐसो मन कर तो कि ऐसी बरसात में तो दिया सराई थे आँच दे दियो इतकू घरवारी के वियोग में याद आवे और बितकू बादर घोर गर्जना करे तो डर के मारे हमारी तो कप कप ही छूट जाती ही। भैया महाकवि तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य श्री रामचरित मानस में जानकी जी के वियोग में मेघ गर्जन से भयभीत होते हुए श्री राम के मुख से कहलवाए हुए घन घमंड नभ गरजत घोरा और प्रियाहीन डरपत मन मोरा। सो भैया वो तो भगवान है बिनको नाम ही जीवन नैया पाल लगावे है। हम तो तुच्छ प्राणी हैं माया के आवरण में हमारे कितने टका उठते हैं। सांची मानो बरसात को आनंद ऐसे लुप्त है गयो जैसे गधा के सिरते सींग। कैसी विचित्र बात ही कि मेघ गर्जन के समय घरवारी अपने ढिंगा हो तो डर ना ही लागे और बाकी ढिंगा रहवे पे डरू नौ दो ग्यारह रह जाए। चाहे किते को बादर गर्जना करें हमारे मन पर रिजवा भरी असर ना उपरियो पर बाकी बिना हम अकेले में घर आंगन की ऐसी पड़ताल कर रहे जैसे पटवारी खेतन की पड़ताल की हो करे। भैया कहवे सुनवे की सब बातें पर हमें तो अपनी घरवारी के वियोग में जे बरसात को मौसम फीको फीको लग रहे हो रेडियो पे बरसात के गीत बज रहे एक नायिका ऐसे में गा रही कारे बदरा तू न जा बैरी विदे सन जा घनन घनन मेघ मलार सुना। भैया हमने रेडियो को बंद कर दियो चूँकि बाके गीत हमारी याद को इतेक बढ़ावा दे रहे कि जी देखी तब हिलकी बंदी आ रही है। अपनी घरवारी की जा बरसात के मौसम में हमें कितेक याद आ रही जाकू हमारा हियरा ही जाने। भैया जीहू विचार आयो के तो वो अकेलो छोड़ के चली गई है तो दरवाजे पर लंबो पर जा और चौखट से मूड़े फूल ले और तन के सिगरे कपड़ा लत्ता फार के सूदो थाने पहुँच जा और कोतवाल के समूही बिरहा के गीत गामत भयो कह दीजो के हम तो मजनू हैं घरवारी चली गई है मायके अब हम कहा करेंगे घर जाए के। सो भैयाओ हमारे ताई तो ऐसी आई बैरन बरसात।
1: भैया अभी आपने सुनी।

0: 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए ये सूचना।
1: सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नाव दुर्घटनाओं से बचाव के लिए सभी नौका चालकों से एक विशेष अपील। यात्रियों की सुरक्षा आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए नाव चलाते समय इन सुरक्षा नियमों का पालन करें। नौका चालक कृपया ध्यान दें। आपको क्या करना है? अपनी नाव में पर्याप्त मात्रा में लाइफ जैकेट हमेशा साथ रखें। यात्रा शुरू करने से पहले सभी यात्रियों को सुरक्षा नियमों की जानकारी जरूर दें। अपनी नाव का उचित रख रखाव करें और ट्यूब या अन्य तैरने वाले उपकरण हमेशा साथ रखें। किसी भी आपात स्थिति के लिए आपदा संकेत देने वाले उपकरण अपने पास रखें। यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान मौसम की जानकारी लगातार लेते रहें। पेट्रोल, डीजल या किसी भी अन्य ज्वलनशील वस्तु को नाव में एक सुरक्षित जगह पर ही रखें। आसपास चल रही अन्य नावों पर नजर रखें और मदद मांगने के लिए संचार उपकरण हमेशा साथ लेकर चले। नौका चालक यह गलतियां बिल्कुल न करे। नाव पर कभी भी तय सीमा से अधिक भार न होने दे। नाव पर बैठे सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से लाइफ जैकेट पहनाए और स्वयं भी पहने। नाव चलाते समय किसी भी प्रकार के नशे का सेवन न करें। लालच में आकर क्षमता से अधिक यात्रियों को नाव में न बिठाएं। मौसम खराब होने या तेज हवाएं चलने की स्थिति में नाव का उपयोग बिल्कुल न करें। सूर्यास्त के बाद नाव संचालित ना करें। प्रशासन द्वारा तय किए गए प्रतिबंधित क्षेत्रों में नाव लेकर न जाएं। और सबसे जरूरी, नाव को बहुत तेज गति से न चलाएं। आपकी एक छोटी सी सावधानी कई लोगों का जीवन बचा सकती है। नियम अपनाएं, दुर्घटना से बचें।
0: अभी आपने ये सूचना सुनी। हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर।
2: भैया, यह आवश्यक सूचना के बाद आओ आपको सुनावे एक और लोकगीत।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
6: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
5: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व

0: तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने ये कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितताएं की।
1: इस कथित पेपर लीक के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब पुलिस ने फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करके एक अंतरराज्यीय चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस ने 7 मुख्य साजिशकर्ताओं और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ।
2: समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
3: पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोच के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय, जो कि हर दूसरे देश पे बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलके आवाज उठाने लगे हैं, एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
4: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से उत्तरी ओडिशा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंदुझर में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदापुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गाँव में आकाशीय बिजली

0: गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।
2: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक है, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया है।
3: 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर गहन चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
1: केरलम में आज 3 स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
4: नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कणूर और कोची में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा। वायुसेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी में, कोची सदर नेवल कमांड बैंड एर्नाकुलम के लुलू मॉल में और एजी माला नेवल अकेडमी बैंड कणूर के थाजे चोवा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
5: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद फरहत। संसद के मानसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के शब्द सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। अमर उजाला लिखता है, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष बहस शुरू करे। पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित, संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लोकसभा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जलते नोट सुलगते सवाल, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को दी गई सीख प्रकाशित की है, रील के दौर में युवा शॉर्टकट नहीं मेहनत का रास्ता चुने। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे स्टेशन पर लिखी बात अवश्य याद रखें, शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्नाटक में गुटखा पान मसाला बनाने बेचने और रखने पर रोक, स्वास्थ्य के लिए सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, भारत में तंबाकू जनित बीमारियों से हर वर्ष करीब 13 लाख से अधिक मौतें होती हैं। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर शिक्षा से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहें स्कूली पढ़ाई, चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने समझने जैसी प्रक्रिया

0: अपनाई जाए तो ये खेल खेल में सीखने जैसी प्रक्रिया होगी। दैनिक जागरण ने सीबीएसई द्वारा पूरक परीक्षा के परिणाम जारी करने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, सीबीएसई 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, 53.8% विद्यार्थी हुए पास। डिजी लॉकर और सीबीएसई की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने का आदेश सही बताया। कहा, बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान से ही सभ्य समाज की होती है पहचान। पीठ ने कहा, अनुभवों का खजाना होते हैं बुजुर्ग, अमर उजाला की खबर है। आज विश्व अंगदान दिवस पर नवभारत टाइम्स ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश में अंगदान की कमी बनी चुनौती। भारत में मृतक अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 से कम। पत्र ने एक और सुर्खी दी है, ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं मुफ्त देने की संसदीय समिति की सिफारिश, साल भर में जितने किडनी ट्रांसप्लांट उससे 5 गुना मरीज अब भी कतार में।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए। और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल रेफर्ड टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर फर्दर स्क्रूटनी। कैलकाटा हाई कोर्ट कैंसल्स ऑल ओबीसी सर्टिफिकेट्स इश्यूड अंडर रिवाइज्ड रूल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रीवियस तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल। पंजाब फार्मेसी ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट स्टेड बाय हाई कोर्ट ओवर एलिगेशंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग। आईएमडी प्रेडिक्ट्स हेवी रेनफॉल इन उड़ीसा एंड गंगेटिक वेस्ट बंगाल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर एरिया ओवर नॉर्थ बे ऑफ बंगाल। More than 30 civilians, including women and children, killed in Pakistani airstrikes in Surab district of Balochistan. And in cricket, BCCI confirms India versus Afghanistan T20 international series in September. And now the news in detail. Both Houses of Parliament have given their approval to refer the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee, JPC, for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Minister of State for Home Nityanand Rai moved a motion in the Lok Sabha to refer the bill to a JPC comprising members of both the houses for wider consultations. The committee will consist of 21 members from the Lok Sabha nominated by the Speaker and 10 members from the Rajya Sabha nominated by the Chairman. The committee will submit its report to this House by the last day of the first week of the winter session. The Rajya Sabha also approved the motion to nominate 10 members from its side to the Joint Committee for consideration of the FCRA Amendment Bill 2026. Today is the last day of the monsoon session of Parliament. The session, which began on the 20th of last month, will conclude today. The Rajya Sabha is scheduled to take up the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 today for consideration and passage. Both Houses of Parliament are also scheduled to take up private members' business today. The Calcutta High Court has cancelled OBC All certificates issued under the OBC-A and OBC-B classifications introduced by the previous Trinamool Congress government in West Bengal. We have more details on this from our correspondent.
3: The Calcutta High Court has cancelled OBC certificates issued under the OBC A and OBC B class.

0: on the moon, where astronauts can live, work, and carry out experiments for extended periods of time. And finally, catching the Gen Z mode, Delhi police goes kuchu kuchu to warn against deadly mancha, mentions the pioneer. And with that, it's back to you, Sarabjit.
1: Thank you, Sarah. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Foreign Contribution Regulation Amendment Bill referred to Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. Calcutta High Court cancels all OBC certificates issued under revised rules introduced by previous Trinamool Congress government in West Bengal. Punjab Pharmacy Officers recruitment stayed by High Court over allegations of organized cheating. IMD predicts heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal due to formation of low pressure area over North Bay of Bengal. More than 30 civilians, including women and children, killed in Pakistani airstrikes in Surab district of Balochistan. And in cricket, BCCI confirms India versus Afghanistan T20 international series in September. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Yeah. आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।
3: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन HIV का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है।

पैरेट्स फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे के की आवाज में। गीत को लिखा था नासिर फराज ने और धुन बनाई थी राजेश रोशन ने।

विधु विनोद चोपड़ा के इस गाने की धुन बनाई थी शांतनु मोइत्रा ने, आवाजें थी सोनू निगम और श्रेया घोषाल की। फिल्म का नाम था वजीर। कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं फना फिल्म से, आवाज है सोनू निगम और सुनिधि चौहान की, गीतकार हैं प्रसून जोशी और संगीतकार हैं जतिन ललित।

0: क्या
1: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
0: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
2: पर बैंकिंग में नहीं।
0: वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
2: सीनियर सबसे पहले, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

होए। बंटी और बबली फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में। गीत को लिखा था गुलजार ने और धुन बनाई थी शंकर एहसान लॉय ने।

0: चांदनी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और बाबला मेहता की आवाजों में, बोल थे आनंद बख्शी के और धुन बनाई थी शिव हरि ने। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब समाप्त होता है।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बज चुके हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं कथा क्रम में कहानी। विषय है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आलेख एवं वाचन है डॉक्टर किरण बाला गुप्ता का।
5: ये नियति थी या मह संयोग पता नहीं, किंतु उस दिन पुराने समाचार पत्रों को देखना, उलटना पलटना मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ। जब एक कॉलम पर मेरी दृष्टि पड़ी जिसमें अमृता प्रीतम जी की एक मर्म स्पर्शी रचना प्रकाशित हुई थी, उन्हें सादर नमन करते हुए उनकी रचना के कुछ अंश प्रस्तुत हैं। खेल में दो पर्चियां थीं, एक पर लिखा था सुनो, दूसरी पर लिखा था कहो। उसके हाथ लगती रही वही पर्ची जिस पर लिखा था सुनो। वह सुनती रही, सुने उपदेश, सुनी बंदिशें, सुनी वर्जनाएं, जो उसके लिए थीं वह जानती थी कहना। किंतु राजा ने कहा जहर पियो, वह मीरा हो गई। ऋषि ने कहा पत्थर बनो, वह अहिल्या हो गई। प्रभु ने कहा निकल जाओ, वह सीता हो गई। चिता से निकली चीख किन्हीं कानों ने सुनी नहीं, वह सती हो गई। घुटती रही उसकी फरियाद, अटके रहे उसके शब्द, सिले रहे उसके होंठ, रुंधा रहा उसका गला। उसके हाथ कभी नहीं लगी वह पर्ची जिस पर लिखा था कहो। एक लंबे अंतराल के बाद वर्तमान संदर्भ में आज इन पंक्तियों ने मेरे अंतर मन में विलुप्त नारी संवेदना, नारी शक्ति के प्रति एक ऐसी कसक उत्पन्न की जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया और मेरी लेखनी लिखने को विवश हो गई। 20वीं सदी हो या 21वीं सदी, महिलाएं कुछ शक्ति संपन्न होते हुए भी अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती। काल के हर क्षण को आत्मचिंतन की अपेक्षा होती है। मेरा ऐसा मानना है कि परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, समाज में अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी, किंतु सुधार की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अपने को समयानुकूल परिष्कृत परिमार्जित करने की प्रवृत्ति ने मानव मन को मननशील और चिंतनशील बना दिया। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधम मोक्षयो, अर्थात मानव मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मेरे अतीत के पन्ने कुछ इसी तरह की कहानी बयां करते हैं। बात करीब एक दशक पुरानी है। गांव के एक सरकारी स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत थी। सेवानिवृत्ति में कुछ ही समय शेष था, भविष्य को लेकर चिंतित थी। वैसे भी एकल जीवन में व्यस्तता और क्रियाशीलता जरूरी है, अन्यथा खाली दिमाग शैतान का घर। कुछ करना है क्या, कब और कैसे, ये प्रश्न चिन्ह। इसी सोच में घर लौट रही थी कि सामने एक छोटी बच्ची को सड़क पर बिलखते हुए देखा। खून बह रहा था, दुर्घटना की शिकार वह बच्ची। समाज की विद्रूपता निर्लज्जता का इससे बड़ा उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। मैं उस बच्ची को पास के क्लिनिक पर ले गई। प्राथमिक चिकित्सा के बाद उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। सिर से लगातार खून बह रहा था, खून की कमी, खून चढ़ाना था। किस्मत से मेरा ब्लड ग्रुप उससे मैच हो गया, बच्ची की जान बच गई। हाथ पर प्लास्टर बंधा, पैर का घाव, अन्य छोटी मोटी चोटें तो डॉक्टर्स ने कहा 24

घंटे में बच्ची को होश आएगा। मैं वहीं बैठी रही, सोच रही थी इसकी पहचान मालूम करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके माता पिता को इनके सुपुर्द कर सकूं, लेकिन कहीं से भी कोई खुला सुराग नहीं मिला। अचानक अस्पताल का एक कर्मचारी बोला, मैडम, इस बच्ची को मैंने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे देखा है, रोज़ मुझे वहीं मिलती है। ये सुनकर मेरा कलेजा हिल गया। विश्वास हो गया कि या तो ये गलत हाथों में फंस गई या इसका कोई परिवारीजन नहीं है। कहते हैं ना कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। मेरा विचलित मन अतीत की यादों में खो गया। मेरे साथ भी कुछ इसी तरह का हादसा हुआ था। एकल जीवन की संघर्षमय चुनौतियों को मैंने सहा था। सच ही कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। एक अनजान व्यक्ति ने मुझे दुर्घटना में बचाया और पिता की तरह प्यार दिया। उनके साथ 4 या 5 बरस रही। अवस्था कहूँ या अस्वस्थता, काका मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन उनके दिए संस्कार, उनकी सीख आज भी मुझे ऊर्जा देती है, एक नई चेतना देती है। सेवा भाव, परोपकार, साहस, सत्कर्म, मन की पवित्रता, इन्हें कभी मत छोड़ना बेटे। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। बच्ची के पास बैठे बैठे मेरी चिंता चिंतन में बदल गई। इस बच्ची को संरक्षण देना ही अब काका को मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पुलिस को सूचित किया, कानूनी कार्रवाई की। बच्ची के बयानों के बाद बच्ची को अपने साथ घर ले आई। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य था अब इस बच्ची का उज्जवल भविष्य, जिसे मैंने गौरी नाम दिया। उम्र 7 वर्ष, उसके अतीत के विषय में मैं कुछ नहीं जानती, फिर भी हम दोनों में एक मन चाह ऐसा रिश्ता जुड़ा कि वह मुझे दीदी माँ कहने लगी। देखते ही देखते 16 बरस की हो गई। मेरी सेवानिवृत्ति का समय भी पास आ गया। विदाई समारोह हुआ। मेरे अच्छे कार्यों को, 100% परीक्षा फल को देखते हुए मुझे पुनः नौकरी करने के लिए आमंत्रण दिया गया सरकार की तरफ से। काम तो करना चाहती थी, किंतु इस तरह नहीं। मैं चाहती थी कि मेरे पद पर किसी ज़रूरतमंद महिला की नियुक्ति हो। मुझे स्कूल में अतिरिक्त 2 घंटे कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने के लिए दिए जाएं, अवैतनिक रूप से। इस मेरे सुझाव से विशेष रूप से बच्चे बहुत खुश थे। अधिकारियों ने मेरी सराहना की। इस तरह मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा हुआ। हर कक्षा के कमज़ोर बच्चों का ग्रुप बनाया, उन्हें पढ़ाने लगी। उसी तरह नियमित स्कूल जाना, पढ़ाना, ये मेरा क्रम बना रहा। मेरी गौरी ने इंटर में अपने प्रदेश में टॉप किया, स्कॉलरशिप मिली, मैंने उसे विदेश पढ़ने भेज दिया। इसी दौरान एक वाकया ऐसा हुआ जिसने मुझे फिर से एक नई दिशा प्रदान की। बच्चों के फॉर्म भरते समय कुछ माताएं अंगूठा लगा रही थीं हस्ताक्षर के स्थान पर, मतलब गांव में अभी भी निरक्षरता बाकी है। 20वीं सदी में भी महिलाओं की प्रतिभा को नकारना शायद पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता रही, जिसे दूर करना जरूरी था। मैंने निश्चय किया कि मैं इन महिलाओं को इनकी क्षमता और इनके विश्वास के बल पर आत्मनिर्भर बनाकर रहूंगी। सरपंच जी से मिलकर मैंने उन्हें अपनी योजना बताई। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि बेटी, मैं तुम्हारे इस काम में मदद करूंगा, पर थोड़ा कठिन तो है पुरुषों को राजी करना। तो मैंने कहा, काका, कठिन तो है किंतु असंभव नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल शब्द में आई एम पॉसिबल छिपा हुआ है। उन्हें मेरा ये सूत्र वाक्य बहुत जच गया और बस इसी के सहारे काका ने अपना काम शुरू कर दिया। इधर मैं स्वयं संध्या को हर घर घूमने निकल जाती, गपशप करती, स्त्रियों से बातें करती और जानने का प्रयास करती, क्योंकि उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। कई दिनों तक ये सिलसिला मेरा जारी रहा। बातों ही बातों में मैंने एक दिन उनको अपना मकसद बताया। असुरक्षा, गरीबी, झगड़े, पति की प्रताड़ना, अस्वस्थता से बचने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए तो बहुत ही आवश्यक है। मेरी इस मुहिम में मेरे स्कूल के शिक्षक भी जुड़ गए। सरपंच काका ने अपने घर का एक बहुत बड़ा अहाता हमें दे दिया और अपने घर की स्त्रियों को सबसे पहले उन्होंने पढ़ाने भेजा। 3 या 6 बजे का समय, सायंकाल। शुरू में 6-7 महिला आईं, किंतु बाद में संख्या बढ़ती गई। हमने सबसे पहले उन्हें वो सामान्य बातें बताई जो जीवन में बहुत जरूरी हैं, जैसे साफ सफाई, खाना पीना, बीमारी, आत्मसम्मान, स्त्री शक्ति, आत्मनिर्भरता, बच्चों का लालन पालन, संस्कार आदि महत्वपूर्ण विषयों को छोटी छोटी कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से समझाना शुरू किया।
उनसे सवाल जवाब किए, उनके मन की बात जानी। उनकी रुचि धीरे धीरे इसमें बढ़ने लगी। प्रतिदिन नए प्रश्नों का हल उनको मिलता। उनकी खुशी उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। पढ़ने के प्रति उनकी जिज्ञासा देखकर उनकी

किताब, कॉपी, पेंसिल, पेन आदि जरूरी सभी सामग्री उन्हें वितरित की गई। महिलाओं की सीखने की क्षमता, उनकी स्मरण शक्ति काबिले तारीफ थी। पहाड़े, गिनती, अक्षर ज्ञान, वाक्य बनाना, पढ़ना लिखना, आवश्यक प्रारंभिक ज्ञान। मुझे आश्चर्य हुआ कि समय से पहले उन्होंने सब कुछ सीख लिया। कुछ महिलाएं तो प्राइमरी ज्ञान पहले से ही रखती थीं, बस उस ज्ञान का बाहर आना जरूरी था। प्रशंसा और प्रेरणा से उनका हौसला बढ़ा, अपने उज्जवल भविष्य के सपने देखने लगी। ज्ञान, क्षमता, बुद्धि, विवेक, साहस, कौशल, इन सबको बस तराशने की आवश्यकता थी। समय कलिकाल के पंख लगाकर उड़ता ही जा रहा था। एक छोटा सा आंगन आज एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के रूप में परिणित हो चुका था। अब समय था उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, सरकारी योजनाओं के तहत सरकारी अनुदान राशि दिलाना। हमारा प्रयास सफल हुआ। जिन महिलाओं की जिन घरेलू कार्यों में रुचि थी, उनके अनुरूप उन्हें ट्रेनिंग दिलाई। कौशल विकास योजना के अंतर्गत सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पाक कला, पत्तल बनाना, पुराने कपड़ों से बैग बनाना, पर्स बनाना, चटाई बुनना, मसाले तैयार करना, अचार मुरब्बा तैयार करना और खिलौने बनाना इत्यादि। प्रशिक्षित महिलाओं ने अपने अपने ग्रुप बनाए, काम शुरू किया। धीरे धीरे काम इतना बढ़ गया कि मांग के अनुरूप वह माल नहीं दे पा रही थी। अब सबका अपना अपना काम था, किसी की फैक्ट्री, किसी का रेस्टोरेंट, किसी की शॉप और किसी का शोरूम। उनका रहन सहन, खान पान सब बदल गया। आत्मविश्वास तो देखने लायक था। वाक्पटुता हो, हिसाब किताब हो, अच्छे अच्छे उनसे प्रभावित हो जाते। सरपंच काका, गांव के सभी पुरुष भाई बहुत प्रसन्न थे। आमदनी का जरिया भी बढ़ा और भविष्य भी संवरा। काका ने कहा, हमें एक प्रदर्शनी लगानी चाहिए। प्रदर्शनी में दूर गांव और शहरों से लोग आएंगे तो हमारा काम और अधिक बढ़ेगा। प्रदर्शनी का सुझाव सफलता की ऊंचाइयों तक हमें ले गया। सरकार की तरफ से आई सूचना के तहत महिलाओं को एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था। मतलब जैसे कुछ विषय थे जिन पर 5-5 मिनट बोलना था, जैसे नारी सशक्तिकरण, धर्म विज्ञान, भारतीय संस्कृति और संस्कार, आत्मनिर्भरता, स्त्री शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, विश्व बंधुत्व की भावना आदि। स्त्री और पुरुषों की उसमें बराबर की भागीदारी थी। एक मंचीय कार्यक्रम का हमने आयोजन किया, जिसमें सरकारी स्कूल के प्रधान शिक्षक, गांव के सरपंच, प्रधान आदि लोगों को सम्मानित किया गया। सभी प्रतिभागी पुरुष तथा महिलाओं ने बहुत अच्छा बोला अपने अपने विषय पर, किंतु कुछ अति महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख आपके सामने करना चाहते हैं। सुधा सिंह, हमारी पुरातन भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिना जैसे सूत्र वाक्यों का उल्लेख है, जिनका मतलब होता है आपसी प्यार, अपनापन, भाईचारा, निस्वार्थ सेवा भाव और निष्काम कर्म, वो भी जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर। महिलाएं आज बहुत आगे बढ़ रही हैं। हमारी सरकार ने 33% आरक्षण देकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर हमें बहुत अधिक गौरवान्वित किया है। नारी शक्ति से प्रकृति में संतुलन बनता है। जल, थल, नभ हर दिशा में स्त्रियों का आज वर्चस्व है। हम संकल्प लेती हैं कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में योगदान देंगी। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सभी कृत संकल्प हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त्रे तत्र देवता। इस वाणी को हम सभी महिलाएं मिलकर चरितार्थ करेंगे। मैं यहाँ एक बात पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। विज्ञान जहाँ प्रकृति का उपासक है, तो धर्म ईश्वर का उपासक है। एकांगी ज्ञान, एकांगी समृद्धि अपूर्ण है। प्रकृति की उपासना में यदि धर्म की उपासना समाहित हो जाए तो मानव कल्याण और फिर विश्व कल्याण अवश्यम भी है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 पर भारी सफलता प्राप्त की और अब आदित्य L1 अंतरिक्ष में उड़ान भर रहा है। यह सब प्रकृति संरक्षण और आत्मसंकल्प की भावना से ही संभव हो सका है, क्योंकि कर्म के संपादन में मन की आंतरिक शक्ति अर्थात आध्यात्मिक शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है और संकल्प से ही सिद्धि का मार्ग प्रशस्त भी होता है। वैज्ञानिकों ने प्रथम प्रयास में असफल होने के बाद भी नई ऊर्जा से, नई मन शक्ति से काम शुरू किया और उन्होंने सफलता अर्जित की। उनको बधाई। प्रबल प्रबंधन वृक्षों को उखाड़ सकता है पर चट्टान को हिला भी नहीं सकता। दुख सुख सब कह परत हैं, पौरुष तजहु नमीत।
दुख सुख सब कहें परत हैं, पौरुष तजहु नमित, मन के हरे हार है।

0: मन के जीते जीत। धन्यवाद।
1: कथा क्रम में अभी आप कहानी सुन रहे थे मन के हारे हार है मन के जीते जीत। आलेख एवं वाचन था डॉक्टर किरण बाला गुप्ता का।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए जालौन और हाथरस जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं जालौन जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सुनीता सिंह का।
1: जनपद जालौन में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अनाथ और संकटग्रस्त बच्चों की मदद की जा रही है। प्रदेश सरकार की यह योजना अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता, मुफ्त शिक्षा और विवाह सहयोग प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत कोविड 19 के कारण माता पिता को खोने वाले बच्चों को 4,000 रूपए प्रति माह की आर्थिक मदद मिलती है। अन्य कारणों से माता पिता या अभिभावकों को खोने वाले अथवा बाल श्रम भीख मांगने वाले मुक्त कराए गए बच्चों को 2,500 रूपए प्रति माह दिए जाते हैं। DPRO सुरेंद्र पटेल ने बताया,
2: उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, जिसमें इन बच्चों ने अपने माता और पिता दोनों को खोया है, उनको हमारी सरकार कोविड से अच्छादित बच्चों को 4,000 रूपए प्रति महीने और कोविड से बिन अन्य कारणों से 2,500 प्रति महीने सरकार के द्वारा राशि प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य है कि उनकी शिक्षा स्वास्थ्य के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से संकल्पित है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में जनपद जालौन को 1273.96 करोड़ की लागत वाली 374 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें 216 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 158 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इस परियोजनाओं में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, विद्युत, नगर विकास, पुलिस एवं राजस्व विभाग से जुड़ी अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं शामिल हैं। इस मौके पर उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, आयुष्मान भारत योजना, कृषि एवं पशुपालन विभाग सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, आवास की चाबी, ऋण स्वीकृति, सोलर रूफटॉप स्वीकृति, कृषि यंत्र, गोल्डन कार्ड एवं अन्य सहायता सामग्री वितरण की गई। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के खातों में 13,14,30,000 रूपए की CCL, RF एवं CIF धनराशि हस्तांतरित कर महिलाओं सशक्तिकरण और रोजगार की नई मजबूती प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जालौन को औद्योगिक, कृषि एवं निवेश के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की लगातार कार्य कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरिडोर, फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल टाउनशिप, डाटा सेंटर क्लस्टर और MSME आधारित उद्योगों के माध्यम से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे पलायन पर प्रभावी रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल टाउनशिप और डाटा सेंटर क्लस्टर जैसी परियोजनाएं लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगी। अब सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंच रहा है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। इस अवसर पर जनपद के प्रभारी मंत्री संजय सिंह गंगवार, विधायक विनोद चतुर्वेदी, मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे मौजूद रहे। कोतवाली उरई पुलिस द्वारा जींद हरियाणा निवासी ब्रजेंद्र मोर का अपहरण और हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 50,000 रुपए के इनामी अभियुक्त और घटना में साजिश में शामिल

0: एक महिला को गिरफ्तार किया। इस बारे में पुलिस अधीक्षक जालौन ईशान सोनी ने बताया।
1: 4 मई 2026 को हरियाणा प्रांत के जींद जनपद के निवासी विजेंद्र मोर के अपहरण के संदर्भ में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। अज्ञात अभियुक्त के नाम प्रकाश में आए। अभियुक्तों के विरुद्ध 50,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। इसमें एक अभियुक्त मोहित मलिक व गिरफ्तार किया गया है और एक महिला सपना उसको भी गिरफ्तार किया गया। 120 का मूल्य मनाया गया।
0: प्रदेश के हर ग्रामीण घर तक नल में जल पहुंचाने के लक्ष्य में जुटी राज्य सरकार अब परियोजनाओं को पूरा कर मिशन मोड में ग्राम पंचायतों को हैंडओवर करने में जुट गई है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव ने कदौरा विकासखंड के चमारी गांव में जल अर्पण कार्यक्रम कर ग्रामीण वासियों को नल से जल पहुंचाने वाली इस योजना की कमान सौंपी। बताया कि केन वेतवा लिंक परियोजना से किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। किसान 3-3 फसलें ले सकते हैं।
2: जालौन जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश सिंघल का।
3: यूपी के हाथरस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सलेमपुर औद्योगिक क्षेत्र में 548 करोड़ की 143 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकास तब होता है जब सुरक्षा का बेहतर माहौल होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हो रहे चौमुखी विकास का जिक्र करते हुए हाथरस के नए इंडस्ट्रियल एरिया में तेजी से आ रहे लोगों का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इससे यहाँ रोजगार की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। आलू किसानों की समस्याओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्रियल एरिया में आलू प्रोसेसिंग केंद्र भी लगेगा जिससे क्षेत्र में किसानों को उनकी उपज का सीधा लाभ मिलेगा और कोल्ड स्टोरेज की समस्या का समाधान भी होगा। उन्होंने कोसी कला में बने एक प्रोसेसिंग केंद्र का जिक्र किया और कहा कि आलू की अच्छी फसल के बीज के लिए आगरा में इंटरनेशनल सेंटर स्वीकार हुआ है और वाराणसी में इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट की स्थापना हो रही है। इससे किसानों का अच्छा उत्पादन होगा, लागत कम हो जाएगी और मुनाफा बढ़ जाएगा। जिलाधिकारी अतुल वस ने अवगत कराया है कि प्रदेश सरकार के कुपोषण मुक्त उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से संभव अभियान 2026 का आयोजन जुलाई 2026 से सितंबर 2026 तक किया जा रहा है। अभियान के सफल एवं प्रभावी संचालन के लिए शासन द्वारा विस्तृत संयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि अभियान का संचालन बाल विकास एवं पुष्ट आहार विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा पंचायती राज विभाग के संयुक्त समन्वय में किया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी को जनपद स्तर पर अभियान का नोडल अधिकारी नामित किया गया है जो संबंधित विभागों के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए अभियान की समस्त गतिविधियों का समयबद्ध एवं सफल संचालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने संबंधित विभाग अधिकारियों को एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे अभियान के दौरान निर्धारित दायित्वों का गंभीरता एवं उत्तरदायित्व के साथ निर्वहन करें तथा आपसी समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करें जिससे जनपद को कुपोषण मुक्त बनाने के लक्ष्य को साकार किया जा सके। जिलाधिकारी अतुल बस ने जनपद के मध्य स्थलों की सूची को अंतिम रूप देने के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ कलेक्टर सभागार में बैठक कर विस्तृत चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मध्य स्थलों के संभाजन एवं प्रवर्तन से संबंधित प्राप्त शिकायतें एवं सुझावों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रस्ताव वित्त सभी मध्य स्थलों का संबंधित उप जिलाधिकारी एक तहसीलदार द्वारा भौतिक सत्यापन कराया जा चुका है। सत्यापन के दौरान प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों का अनुसार परीक्षण एवं निस्तारण करने के उपरांत मध्य स्थलों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके पश्चात मध्य स्थलों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यह संपूर्ण प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण पारदर्शिता निष्पक्षता एवं सुगमता के साथ संपन्न की जा रही है। श्रावण मास के अवसर पर तहसील समाधान दिवस के पश्चात जिलाधिकारी अतुल बस ने पुलिस अधीक्षक चंद्रजीव नाथ सिन्हा के साथ अलीगढ़ आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांवड़ यात्रा व्यवस्था को स्थलीय निरीक्षण कर पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मार्ग पर आवश्यक स्थानों पर चेक पॉइंट स्थापित करने तथा भारी वाहनों को गए डायवर्जन को और अधिक प्रभावित

भी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए ताकि कांवड़ यात्रा पूर्णतः दुर्घटना रहित यह सुचारू रूप से संचालित हो सके। तहसील शासनी में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए मंडलायुक्त अलीगढ़ मंडल संगीता सिंह ने जिलाधिकारी अतुल बसवा पुलिस अधीक्षक चिरंजीविनाथ सिन्हा के साथ जन सुनवाई करते हुए फरियादियों की शिकायतों एवं समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता

0: और संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता पूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबो हवा। विषय है समुद्र भी प्रदूषण की चपेट में। आलेख और वाचन है श्री अशोक गुप्ता का।

विशालकाय समुद्र जैव विविधता का विशाल भंडार तो है ही, किंतु साथ ही खाद्य, ऊर्जा व खनिज पदार्थों का भी असीमित स्रोत है। समुद्र में इतनी प्रचुर मात्रा में लोहा, मैंगनीज, तांबा, निकल, कोबाल्ट, चांदी, सोना, प्लेटिनम व यूरेनियम इत्यादि है कि उनका इस्तेमाल कई शताब्दियों तक करने पर भी ये समाप्त नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त समुद्र में पेट्रोलियम व गैस उत्पादों की तो असीमित मात्रा छुपी हुई है। मत्स्य उद्योग व सीपी उद्योग तो समुद्र पर ही निर्भर है। समुद्र में सूक्ष्मतम जीव जो प्लैंकटोन व फाइटोप्लैंकटोन से लेकर विशालकाय व्हेल तक निवास करते हैं। 100 से भी अधिक देशों की अर्थव्यवस्था समुद्र पर ही निर्भर है। समुद्र से हमें मछली, मोलस्क, क्रस्टेशियन जैसे खाद्य जीवों के अलावा गुआनो जैसे फास्फोरस युक्त उर्वरक भी प्राप्त होते हैं। समुद्र पृथ्वी के जलवायु का नियंत्रक और नियामक भी है। समुद्र हमें यात्रा एवं परिवहन हेतु मार्ग भी उपलब्ध करवाता है। इतना विशाल एवं महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी आज समुद्र बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिकीकरण एवं उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण प्रदूषण की चपेट में आने से नहीं बच सका है और निरंतर प्रदूषण की गिरफ्त में आ रहा है। समुद्र प्राकृतिक रूप से भी प्रदूषित होता रहा है, क्योंकि यह सर्वविदित है कि सभी छोटे बड़े शहरों व महानगरों में स्थित नदियां अंततः समुद्र में ही मिलती है और अपने साथ लाए हुए प्रदूषित पदार्थों को समुद्र में समाहित कर देती है। समुद्र में ज्वालामुखी से निकले लावा, पेट्रोलियम कुओं से रिसने वाला तेल, पवन के माध्यम से आने वाला पीड़कनाशी एवं रेडियोएक्टिव पदार्थ, अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक किरणों से बने रेडियो आइसोटोप इत्यादि घटनाएं समुद्र को भी प्राकृतिक रूप से प्रदूषित करती है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव काफी कम होता है। किंतु वर्तमान में जिन मानव जनित कारणों से समुद्र अधिक प्रदूषित हो रहा है, उन कारणों में प्रमुख हैं घरेलू गंदगी व सीवेज का तथा औद्योगिक बहिस्रावों का नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुंचना, पीड़कनाशियों व कीटनाशियों में मौजूद अनअपघटनीय भारी धातुओं का समुद्र में प्रवेश, समुद्र में नाभिकीय विस्फोट करना तथा नाभिकीय कचरे को समुद्र में फेंकना, तेलवाहक जहाजों से तेल का रिसाव, तटवर्ती क्षेत्रों में बढ़ती मानवीय गतिविधियां इत्यादि। अरब सागर, भूमध्य सागर व बंगाल की खाड़ी सर्वाधिक प्रदूषित समुद्र हैं। हमारे देश में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोचीन, तिरुअनंतपुरम, विशाखापट्टनम, गोवा इत्यादि बड़े शहर तथा द्वारिका, सोमनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम इत्यादि तीर्थस्थल समुद्र के किनारे ही स्थित हैं, जहां की मानवीय एवं औद्योगिक गतिविधियों के कारण समुद्र धीरे धीरे कचरागर बनते जा रहे हैं। अकेले मुंबई शहर से प्रतिदिन 40 करोड़ लीटर घरेलू सीवेज तथा 20 करोड़ लीटर औद्योगिक बहिस्राव समुद्र में छोड़े जाते हैं। इस सीवेज में तथा बहिस्राव में मानव स्वास्थ्य के लिए तथा समुद्री जीवों के लिए हानिकारक करोड़ों बैक्टीरिया पाए जाते हैं। भारी धातु युक्त पीड़कनाशी व कीटनाशी खेतों व नदियों से होते हुए समुद्र में पहुंच जाते हैं तथा खाद्य श्रृंखला के माध्यम से एक छोटे से जीव से होते हुए बड़े जीवों में पहुंचकर जैविक आवर्धन प्रदर्शित करते हुए उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। सुदूर अंटार्कटिक महासागर में पेंगुइन के शरीर में डीडीटी का मिलना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। नाभिकीय विस्फोट व न्यूक्लियर फॉल आउट के अलावा रेडियोएक्टिव कचरे को समुद्र में फेंकना आम बात है, जिससे समुद्री जीवों व मनुष्य में कई आनुवंशिक बीमारियां उत्पन्न हो रही है। रेड टाइड्स जैसी घटना के कारण समुद्र का पानी लाल हो रहा है तथा समुद्री वनस्पतियां व जीव विषैले व खाने के अयोग्य होते जा रहे हैं।

0: समुद्र में पेट्रोलियम के रिसाव से समुद्री जल में ऑक्सीजन की भी कमी होती जा रही है और जल का BOD बढ़ रहा है। अभी भी समय रहते हम समुद्र को प्रदूषण की चपेट में आने से नहीं बचा पाए तो प्रकृति जो अपना विकराल रूप दिखाएगी उसके लिए हमें तैयार रहना होगा।
1: कार्यक्रम आबो हवा में अभी आप सुन रहे थे समुद्र भी प्रदूषण की चपेट में, इस विषय पर आलेख। आलेख और वाचन था श्री अशोक गुप्ता का।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं चंद गैर फिल्मी गजलें। कलाकार हैं सुनील गोस्वामी।

0: इसरार अहमद की गाई इस गजल के साथ ही ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए ये सूचना।
2: ध्यान दें, अक्सर खेतों में काम करते समय या अंधेरे में सर्पदंश यानी सांप के काटने का खतरा बना रहता है। थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी से हम अपनी और अपनों की जान बचा सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ जरूरी सुरक्षा उपाय। सांप से बचाव के लिए क्या करें? खेतों में काम करते समय हमेशा सावधानी बरतें। हो सके तो नंगे पैर न रहें और जूते या बूट का प्रयोग जरूर करें। रात के समय या अंधेरे में बाहर निकलते वक्त अपने साथ टॉर्च और एक लाठी हमेशा रखें। लाठी की आहट से सांप दूर भाग जाते हैं। लकड़ी गोईठा यानी उपले या भूसे के ढेर में बिना देखे सीधा हाथ कभी न डालें। अपने जूते, बिस्तर, कपड़े या बैग का इस्तेमाल करने से पहले उन्हें अच्छी तरह झाड़ लें और चेक कर लें। अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें और बड़ी झाड़ियों की चटाई करते रहें ताकि वहां सांप न छिप सकें। अगर किसी को सांप काट ले तो तुरंत ये कदम उठाएं। सबसे पहले सांप काटे हुए व्यक्ति का हौसला बढ़ाएं, उसे बिल्कुल न घबराने दें। पीड़ित को सोने न दें, उससे लगातार बात करते रहें। ध्यान रहे, जिस अंग पर सांप ने काटा है उसे बिल्कुल न हिलाएं डुलाएं, उसे एक जगह स्थिर रखें। अपनी मर्जी से पीड़ित व्यक्ति को खाने या पीने के लिए कोई भी दवा न दें। सबसे जरूरी बात, ओझा या झाड़ फूंक के चक्कर में पड़कर अपना कीमती समय बिल्कुल बर्बाद न करें। बिना देरी किए पीड़ित को तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी अस्पताल लेकर जाएं। याद रखें, सही समय पर सही इलाज ही जान बचा सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
1: अभी आपने ये सूचना सुनी। हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।
0: आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम।

0: Amore mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

ग्रेट गैम्बलर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना आशा भोसले, शरद कुमार और अमिताभ बच्चन की मिली जुली आवाजों में। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने।

आया सावन झूमके। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत। आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वरों में अभी आप सुन रहे थे बेमिसाल फिल्म का ये गाना। लिखा था गुलशन बावरा ने और धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

0: गुलजार के लिखे इस गाने की धुन बनाई थी मदन मोहन ने, स्वर था भूपेंद्र सिंह का, फिल्म का नाम था मौसम। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।
1: लाख कस्में दी, लालच दिए, पर जाने वाले

0: थोड़ी सी बेवफाई। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत। आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत को लिखा था गुलजार ने और धुन बनाई थी खय्याम ने।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। एक आवश्यक सूचना सुनिए।
2: जनमानस से अपील, बाढ़ के मुश्किल समय में आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। बाढ़ के दौरान कुछ सावधानियां अपनाकर हम बड़े खतरों और बीमारियों से बच सकते हैं। आइए जानते हैं इस दौरान क्या करें और क्या ना करें। स्वास्थ्य और सफाई का ध्यान रखें, हमेशा पानी उबालकर ही पिएं और दूषित पानी से पूरी तरह बचें। अपने हाथों को साफ रखें और किसी भी खुले घाव को हमेशा ढक कर रखें ताकि इन्फेक्शन न हो। मच्छरों से बचाव के लिए सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें। गंदगी से बीमारियां फैलती हैं, इसीलिए कचरे का सही निपटान करें और कूड़ेदान का ही इस्तेमाल करें। अपना और अपने पालतू पशुओं का टीकाकरण समय पर सुनिश्चित

0: कराएं, सुरक्षा के कड़े नियम अपनाएं, पानी में डूबे या खुले हुए बिजली के तारों को भूलकर भी न छुएं, बाढ़ के पानी में नंगे पैर बिल्कुल न निकले और बच्चों को भी नंगे पैर बाहर न जाने दें। अगर आपको पानी की गहराई का अंदाजा न हो तो उसे पार करने की कोशिश बिल्कुल न करें। यदि पार करना बेहद जरूरी हो तो गहराई नापने के लिए अपने साथ एक मजबूत डंडा जरूर रखें। ध्यान रहे, बाढ़ के पानी के संपर्क में आया हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ या चारा तुरंत फेंक दें। इसे न तो खुद खाएं और न ही पशुओं को खिलाएं। इससे गंभीर महामारियां फैल सकती हैं। आपातकालीन तैयारी और प्रशासन का सहयोग। अगर आपके पास नाव है तो पहले ही उसकी मरम्मत करवाकर तैयार रखें। आपात स्थिति के लिए अपनी आपदा सहायता किट हमेशा तैयार रखें। इसमें अपना जरूरी सामान, अहम कागजात और गहने सुरक्षित रख लें। यदि आपको घर खाली करना पड़े तो जाने से पहले अपने घर की बिजली का मेन स्विच जरूर बंद कर दें और फ्यूज प्लग निकाल दें। बचाव कार्य और विस्थापन के समय स्थानीय प्रशासन का पूरा सहयोग करें। और सबसे जरूरी बात, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और बिल्कुल न घबराएं। प्रशासन हर कदम पर आपके साथ है।
1: अभी आप सुन रहे थे ये आवश्यक सूचना। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर।
2: हमारे केंद्र से इस समय श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
3: एक मूड, एक कैफियत गीत का चेहरा होता है, हम जिंदा रहते हैं, बादलों से ढक जाता है।

अभी आपने सुना नमकीन फिल्म का ये गाना आशा भोसले के स्वर में गुलजार के बोल थे और धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं रोटी फिल्म से।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म रोटी में। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने। आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

रोटी कपड़ा और मकान। अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत। आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की, शब्द रचना थी संतोष आनंद की और संगीत रचना थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं स्वामी फिल्म से, गाया है लता मंगेशकर ने।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति है संजय सारस्वत की।
1: हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार साहब,
1: कौन बोल रहे हैं आप?
0: मैं साहब ग्राम स्पाट से ज्ञान सिंह बोल रहा हूँ साहब। नमस्कार। ठीक
1: क्या हाल है आपका ज्ञान सिंह जी?
0: है सर, आप बताओ, आपकी टीम ठीक है सब?
1: हाँ, सब लोग अच्छे हैं। दुआएं
0: चलिए
1: हैं
0: सर,
1: आप लोगों की।
0: दुआएं तो साहब ऊपर वाले की हैं।
1: क्या
0: काम
1: काम चल रहा है?
0: साहब कुछ नहीं है, अब तो करता ही रहता हूँ मैं। हाँ
1: अच्छा
0: जी, तबीयत गड़बड़ होती है जी, तो करता ही रहता हूँ सर।
1: अच्छा अच्छा हमारा कार्यक्रम सुनते हैं।
0: हाँ काफी दिन से सुन रहा हूँ साहब, पर अभी एक महीना में जाके नंबर लगाया
1: आज बताइए क्या फरमाइश रहेगी आपके कार्यक्रम में?
0: है। आज की फरमाइश साहब ये है कि प्रेम नगर का गाना है, जा जा तू अब याद ना। और साहब ऐसा है जी कि मेरा एक मित्र है याद
1: जी
0: नाम,
1: जी
0: उसके लिए अब पढ़ कर रहा हूँ ये गाना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों के लिए सुनवाते हैं ये गीत। बहुत बहुत
0: धन्यवाद साहब मेरा
1: धन्यवाद।
0: कॉल लेने के लिए। नमस्कार साहब।
1: नमस्कार नमस्कार।

0: हेलो, आप असलानी।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार सर, राधे राधे। महिपाल
1: कौन बोल रहे हैं आप?
0: सिंह बोल रहा हूँ सर, नंगला देवी सिंह से।
1: स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
0: और बताइए सर, सब आकाशवाणी टीम कुशल मंगल
1: सब आनंद में हैं। आप बताइए, आपके घर परिवार में सब अच्छे हैं?
0: है? सब आप लोगों की कृपा है सर, ठीक है।
1: महिपाल जी, क्या काम चल रहा है इस समय?
0: काम सर खेती बाड़ी का ही चल रहा है, धान है, धैंसा है
1: अच्छा, आज बताइए क्या फरमाइश है आपके कार्यक्रम में?
0: सर। सावन चल रहा है, सावन का ही कोई बढ़िया गीत सुना दीजिए अपनी पसंद का आप।
1: सुनवाते हैं महिपाल जी आपकी पसंद का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर आपके लिए। राधे राधे।
1: राधे राधे।

0: हेलो,
1: हाँ भैया जी, नमस्कार।
0: नमस्कार
1: योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं
0: जी। योगेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: जी। शुक्रिया।
0: क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया, भी अच्छे हैं
0: आनंद है सब कुछ
1: जी, सब आनंद मंगल है।
0: जी? मौसम का क्या हाल है? बारिश हो रही है क्या?
1: नहीं हो रहा है भैया, बारिश का बहुत कमी है
0: ओहो, कई कई जगह बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं कहीं हो ही नहीं रही है। हमारे यहाँ भी
1: जी।
0: यही हाल है।
1: जी,
0: आज बताइए क्या फरमाइश रहेगी कार्यक्रम में।
1: राष्ट्रीय पर्व नजदीक है भैया, तो हमें आप गाना सुनवा देंगे, फिल्म बॉर्डर से कोई भी प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल, सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना। शुक्रिया आपका
1: धन्यवाद।
0: बहुत बहुत।

0: मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र सामरिया गांव थैरावर तहसील कुमेर जिला डीग राजस्थान। सारस्वत जी नमस्कार।
1: नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और कुशल मंगल हैं?
1: सब आनंद है, प्रभु की कृपा है।
0: हाँ
1: आप बताइए, आपका क्या हाल है?
0: बिल्कुल ठीक है जी। बरसात हुई है, बहुत अच्छी और ठीक है।
1: अच्छा, बरसात हुई आपके यहाँ?
0: हमारे यहाँ तो काफी बरसात हुई है साहब, ठंड भी हुई है बरसात।
1: यहाँ तो बूंद भी नहीं पड़ रही है हमारे यहाँ तो।
0: नहीं, यहाँ तो काफी बरसात हुई है साहब,
1: अच्छा
0: चार
1: जी,
0: पांच छह सात 4 दिन काफी बरसात हुई है साहब।
1: चलिए।
0: और आप सभी को साहब स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, बधाई। भारत
1: जी
0: माता की जय, वंदे मातरम। और हमारा आकाशवाणी मथुरा इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी अग्रिम शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की, बहुत सारी। आज क्या
0: और
1: पसंद रहेगी कार्यक्रम में सर?
0: पूरा पश्चिम से सुनवाइए साहब। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।
1: सुनवाते हैं आपको भारत की बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद सारस्वत जी, नमस्कार।
1: नमस्कार। हेलो।
2: स्वागत करो साथियों, आई बरखा रानी है, काबिले तारीफ मथुरा आकाशवाणी है। इन पंक्तियों के साथ मैं आपका नियमित श्रोता ब्रज रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह, ग्राम नगला राणा तिहोरा मथुरा से ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में आदरणीय उद्घोषक महोदय आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ।
1: चौधरी साहब, हम भी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
2: जी धन्यवाद सर।
1: क्या हाल चाल है?
2: एकदम खैरियत है सर। आप बताएं हमारी समस्त आकाशवाणी टीम कैसी है?
1: सब बढ़िया है, सुचारू रूप से सब काम चल रहे हैं, कार्यक्रम पेश हो रहे हैं, आप सुन ही रहे होंगे।
2: कार्यक्रमों की क्वालिटी एकदम बेहतरीन मिल रही है सर, और आपकी मेहनत परिश्रम सार्थक प्राइस के लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।
1: जी, शुक्रिया। आप लोग जब सुन के ऐसी तारीफें करते हैं तो हमारी मेहनत वसूल हो जाती है सर।
2: सर 40-42 साल हो गए रेडियो के सफर में साथ चलते हुए, अभी तक नहीं थके, अब भी जवान हैं।
1: हमारी
2: जी
1: कामना
2: बिल्कुल।
1: है आप ऐसे ही स्वस्थ बने रहें, सुनते रहें हमें, हमसे बातें करते रहें, और आज कार्यक्रम में अपनी फरमाइश बता दें।
2: महोदय समस्त आकाशवाणी टीम को यानी आकाशवाणी परिवार को और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई।
1: हमारी तरफ से भी स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं आप स्वीकार कीजिए।
2: महोदय गाना है फिल्म पूरब और पश्चिम से महेंद्र कपूर साहब और उनके साथियों ने गाया है रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ।
1: जी बिल्कुल, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये देशभक्ति गीत। बहुत बहुत आभार आपका फोन करने के लिए।
2: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारी कॉल शामिल करने के लिए। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: नमस्कार
0: आदरणीय सारस्वत जी को सादर सप्रेम प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। परिचय दे दीजिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र राजू लवानिया खंदौली से बोल रहा हूँ सारस्वत जी। ठीक
1: कैसे हैं लवानिया साहब?
0: है सर, कट रहा है वक्त ईश्वर भरोसे पे। थोड़ी आंखों में प्रॉब्लम है और डॉक्टर की दवाई चल रही है लेकिन कोई फायदा मिलता दिख नहीं रहा है।
1: अच्छा,
0: जी।
1: ये तो तकलीफ की बात बताई आपने आज।
0: जी सर, बहुत परेशान हूँ सर आंखों से। वैसे ही तो आंखों में कुछ है नहीं, दिखाई तो देता नहीं। अब ये प्रॉब्लम और होने लग गई है तो बहुत ज्यादा दर्द रहता है, कड़कड़ाहट रहती है और पानी। बहुत दवाई चल रही है सर, किसी डॉक्टर की कोई दवाई काम नहीं कर रही है। खैर ये तो संसार है, शरीर है, चलता रहता है, दुख सुख का जोड़ा है।
1: नहीं, आराम मिलेगा, हमारी यही कामना है, आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे पहले तो आकाशवाणी मथुरा परिवार को और सभी श्रोताओं को, खास करके हमारे सैनिक भाइयों को और देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
1: बिल्कुल सर, आपको भी अग्रिम शुभकामनाएं स्वाधीनता दिवस की।
0: आपसे सर गुजारिश रहेगी, किशोर कुमार की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत सा देशभक्ति गीत है,
1: जी
0: देखो वीर जवानों अपने

0: ये वाला गीत सर आप सुना सकते हैं, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी।
1: बिल्कुल सुनाएंगे सर आपकी पसंद का गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी कामना के साथ आपकी आंखों में जल्दी से आराम हो, स्वस्थ हो जाएं आप।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सारा सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे संजय सारस्वत। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है एक विशेष कार्यक्रम जिसका शीर्षक है अंगदान महादान।

श्रोताओ, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं बहुत ही संवेदनशील विषय है। वह विषय है अंगदान, जो केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि किसी दूसरे इंसान के जीवन में नई उम्मीद देने के माध्यम बन सकता है और किसी को नया जीवन भी दे सकता है। हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन अनमोल है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के बाद भी हमारा शरीर का कोई अंग किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन की नई शुरुआत का कारण बन सकता है? यही विचार अंगदान को इतना महत्वपूर्ण बनाता है। अंगदान का अर्थ है अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु के बाद या कुछ परिस्थितियों में जीवन काल में अपने स्वस्थ अंगों का या ऊतकों को चिकित्सकीय नियमों के अंतर्गत किसी जरूरतमंद व्यक्ति के प्रत्यारोपण के लिए दान करना। श्रोताओं, कई लोगों के लिए अंग प्रत्यारोपण जीवन बचाने का महत्वपूर्ण उपचार हो सकता है। हृदय, यकृत, गुर्दे और फेफड़ों जैसे अंगों के साथ साथ कुछ ऊतक भी प्रत्यारोपण के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, लेकिन अंगदान को लेकर हमारे समाज में कई तरह की गलतफहमियां भी हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अंगदान करने के बाद शरीर का अंतिम संस्कार ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। श्रोताओं, यह एक भ्रम है। चिकित्सकीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद शरीर को सम्मानपूर्वक परिवार को सौंपा जाता है और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जा सकती है। एक और गलत धारणा यह भी है कि अंगदान केवल बहुत कम लोगों के लिए संभव है। वास्तव में अंगदान की पात्रता कई चिकित्सकीय और कानूनी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, इसलिए सही जानकारी के लिए अधिकृत चिकित्सीय संस्थानों से जानकारी लेना जरूरी है। अंगदान केवल अंग देने का नाम नहीं, यह मानवता, संवेदना और किसी अनजान व्यक्ति के प्रति करुणा का उदाहरण भी है।

0: श्रोताओ, हमारा जीवन हमारे लिए अनमोल है और हमारी संवेदना किसी दूसरे के लिए उम्मीद बन सकती हैं। तो आइए आज हम यह संकल्प लें कि अंगदान के बारे में स्वयं सही जानकारी प्राप्त करेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनवा देते हैं एक भेंट वार्ता, जिसका शीर्षक वही है जिसे आप अभी सुन रहे थे, अंगदान महादान। जानकारी दे रहे हैं रोटेरियन लाल गोयल और इनसे बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: श्रोताओ, भारतीय संस्कृति में दान का बहुत महत्व है। चाहे हम अन्न का दान करें, चाहे हम वस्तुओं का दान करें, चाहे जीवों का भी दान है, जैसे गाय का दान करते हैं, ऐसे ही अब जो समय की आवश्यकता है उसमें अंग दान भी एक महत्वपूर्ण सोसाइटी का हिस्सा हो गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जीवन के किसी पड़ाव पर स्वास्थ्य कारणों से अंगों की भी आवश्यकता होती है, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो प्राकृतिक रूप में अंग हैं वो ऐसे ही बाजार में नहीं मिलते और ले भी नहीं सकते, उसकी कुछ लीगल लिमिटेशंस हैं। तो अंगदान क्या है, कैसे किया जा सकता है, कौन कर सकते हैं, उसकी क्या फॉर्मेलिटीज हैं, उसके आगे पीछे की जो रेगुलेशंस हैं वो क्या है, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन है बहुत आवश्यक देश के लिए भी, समाज के लिए भी और वर्तमान परिस्थितियों में व्यक्ति के लिए भी। इस सारे संदर्भ में बातचीत और जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं रोटेरियन श्री लाल गोयल साहब। आप शहर के वरिष्ठ नागरिक हैं और इस क्रम से बहुत नजदीकी से जुड़े हुए हैं, तो उनके पास इस संदर्भ में व्यक्तिगत अनुभव भी है और लीगल अनुभव भी है। तो लाल साहब, मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: जी। तो अंगदान सुनने में लगता है कि हाँ, अंगों का दान कर सकते हैं हम, लेकिन वास्तव में इसके पीछे का आशय क्यों महत्वपूर्ण है, क्या आवश्यकता है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि व्यक्ति एक समझ पाए कि हाँ, इस विधा के पीछे या इसकी आवश्यकता क्यों है।
2: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आज मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे
1: जी
2: अंगदान के बारे में बात करने की एक प्रयास किया।
1: जी,
2: अंगदान से पहले हमें समझना चाहिए कि किस तरह के दान होते हैं, क्योंकि तीन तरह के दान मेन होते हैं इससे संबंधित। एक है अंगदान, दूसरा है टिश्यू डोनेशन अवयव दान, और तीसरा है देहदान। देहदान के बारे में तो काफी लोगों को पता भी है कि जिस वक्त किसी की मृत्यु हो जाती है और तो उसकी देह या तो जलाई जाती है या दफनाई जाती है, लेकिन जो देहदान होता है उसमें अगर उसके घर वालों को कोई एतराज नहीं हो और वो उनकी भी सहमति होती है तो मेडिकल कॉलेज में देह का दान किया जाता है और उससे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो उससे अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं एनाटॉमी में और उसमें रिसर्च होती है। तो इसलिए देहदान इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उससे डॉक्टर्स को सहूलियत मिलती है, तो ये तो देहदान है।
1: मतलब जो डॉक्टर समाज में पढ़ करके आ रहे हैं, हमको स्वस्थ रखने में, समाज को स्वस्थ रखने में जिनका योगदान है, उनकी पढ़ाई के लिए देहदान आवश्यक है।
2: देहदान आवश्यक है।

0: बॉडी का पूरा एनालिसिस करके वो जान पाते हैं कि हाँ व्यक्ति की बॉडी कैसी है, उसको कैसे संचालन होता है, फिजियोलॉजी क्या है, इसलिए वो देह पर ही काम करके सीख करके आते हैं। जी
1: दूसरा है अवयवदान, टिश्यू डोनेशन। जी टिश्यू जो होते हैं जैसे आंख, आंख का जो कॉर्निया होता है
0: जी,
1: त्वचा, बोन्स, हड्डियां, ये जो टेंडम्स, हार्ट वॉल्स वगैरह, ये सब जो होते हैं ये हमारे टिश्यूज में आते हैं
0: जी।
1: इनसे जिंदगी की एक जिसे कहते हैं इम्प्रूवाइज हो जाती है, सुधर जाती है। जैसे मैं यहाँ पे एक उदाहरण दूं कि एक व्यक्ति अगर अंधा है तो वो अगर उसकी उम्र 80 साल है वो 80 साल तक जिंदा रहेगा, लेकिन वो अंधेरे में रहेगा। लेकिन अगर उसको आई कॉर्निया का ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो वो उसकी जिंदगी रहेगी तो 80 साल ही, लेकिन वो प्रकाश में रहेगी। तो इससे एक इम्प्रूवमेंट हो जाता है।
0: हाँ।
1: या हड्डियों के दान से जो हड्डियों में लोग टेढ़ा चलते हैं या कोई उन्हें हड्डी से संबंधित रोग होते हैं वो सुधर सकते हैं, लेकिन उम्र वही रहेगी। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अंगदान।
0: जी
1: अंग क्या होते हैं पहले हमें वो समझना है।
0: जी जी
1: जो लाइफ सेविंग अंग हैं, जो हमारे जीवन रक्षक अंग हैं, जिन्हें नोटो ने, नोटो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, नोटो। ये नोटो भारत सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। उनके अंतर्गत में 5 रीजनल हैं ट्रांसप्लांट सेंटर, रोटो रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, और उनके अंतर्गत सोटो आता है जो हर स्टेट की कैपिटल पे है, जैसे अपना उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है।
0: जी जी
1: रीजनल हमारा चंडीगढ़ में है और नोटो हमारा दिल्ली
0: में है। जी
1: इनके द्वारा इन्होंने बताए हैं कि ये अंग जो हैं लाइफ सेविंग हैं, उनमें हार्ट है, हृदय, किडनीज हैं, लंग्स हैं, पैंक्रियाज है, लिवर है और इंटेस्टाइन है।
0: जी जी
1: ये हमारे अंग जो हैं, अगर ये अंग खराब हो जाते हैं तो उस व्यक्ति की मौत निश्चित हो जाती है, समय का वो रहता है। सिर्फ किडनी एक ऐसी चीज है जो डायलिसिस पे जाता है पेशेंट, लेकिन वो भी अमूमन 2.5 साल 5 साल, ज्यादा से ज्यादा बहुत ही चला तो वो 7 साल तक जीवित रह पाता है, नहीं तो उसकी भी मौत आती है। अदरवाइज कोई भी अंग अगर फेल होता है तो जब तक उसमें अंग का प्रत्यारोपण नहीं होगा, ट्रांसप्लांटेशन नहीं होगा, वो पेशेंट नहीं सर्वाइव करेगा,
0: लाइफ नहीं है उसके नहीं होता है। तो ये 6 अंग आपने बताए, इसमें मैं बता दूं, एक हार्ट यानी हृदय हो गया, आपकी किडनी हो गई,
1: वो 2 होती हैं।
0: जी जी
1: तो एक व्यक्ति को एक किडनी दी जाती है,
0: जा
1: तो 2 लोगों की इससे जान बचती है। हार्ट एक ही होता है, एक ही की बचेगी।
0: पेनक्रियाज हो गया, लंग्स हो गया, इंटेस्टाइन हो गई
1: और लिवर हो गया,
0: और लिवर हो गया।
1: अच्छा अब इसमें क्या है कि जैसे हमारे 2 लंग्स हैं तो 2 लोगों की जान बचती है, 2 किडनी है 2 लोगों की जान बचती है, हार्ट एक है एक की बचेगी, पैंक्रियाज एक बचेगी और इंटेस्टाइन से एक की बचती है। पहले लीवर का 1 को दिया जाता था, एक ही होता है, लेकिन अब नई रिसर्च से लीवर को 2 पार्ट में करते हैं, जो बड़ा पार्ट है वो एडल्ट को जाता है, वयस्क आदमी को, और जो छोटा पार्ट है वो बच्चों को जाता है। तो पहले 8 व्यक्तियों की जिंदगी बचती थी, अब 9 की बचने लगी।
0: क्या बात।
1: अब आप सोचिए, हम भगवान नहीं है, लेकिन भगवान ने हमें वो तासीर दी है, वो हमें पावर दी है कि हम 9 लोगों को नई जिंदगी दे सकते हैं।
0: यानी जीवन देने का काम ईश्वर का है, लेकिन ईश्वर के व्याप पे हम 9 लोगों की लाइफ बचा सकते हैं।
1: और इसमें डॉक्टर भी जहां फेल हो जाते हैं, क्योंकि देखिए डॉक्टर बचा सकता है, लेकिन उसको अगर हार्ट ही नहीं है उसके पास तो वो दवाइयों से या सर्जरी से नहीं कर सकता जब तक उसे हार्ट ना मिले, वो तो रॉ मटेरियल है। तो इसलिए अंगदान बहुत महत्वपूर्ण है।
0: जी महत्वपूर्ण है, इसकी आवश्यकता है और इससे बहुत बड़ा फायदा भी हो रहा है, इतना तो मेरी समझ में आ गया आपकी बातचीत से। लेकिन अब इसकी एक प्रोसेस है, एक व्यक्ति जो अनायास चला गया या कुछ समय जिया और उस जाने वाला, ये कई बार पता लग जाता है, तो वो तो चला जाता है, लेकिन उसके अंगदान क्या वो पहले करके जाएगा तभी होंगे या उसके परिवार की, तो एक प्रोसेस जो होती है वो किस तरह एक व्यक्ति, मतलब इस कार्यक्रम को हम सोसाइटी में आगे बढ़ाएं, इस पर अवेयरनेस लाएं और जागरूकता लाएं और ये महत्वपूर्ण है इसको समझ करके लोग आगे आए, इसके लिए क्या कुछ जो लीगल और लिखापढ़त वाली कार्यवाही, इस पर भी थोड़ा सा बताइए।
1: देखिए पहले तो हमें ये समझना है कि भारतवर्ष में क्यों इम्पोर्टेंट।
0: जी
1: भारतवर्ष में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ करीब 5 लाख व्यक्ति हर साल मौत

0: ग्रसित हो रहे हैं अंग ना मिलने की वजह से।
1: जी जी जी
0: उसे हम दूसरे रूप में देखें तो करीब 1500 व्यक्ति रोज, और या यूं कहें कि हर मिनट एक व्यक्ति मौत ग्रसित हो रहा है अंग ना मिलने की वजह से। अब कारण क्या है? अब प्रश्न ये भी आता है कि भारत ही क्यों, बाकी देशों का क्या हाल है? तो मैं एक आंकड़ा दूंगा कि पिछले वर्ष 2024 में ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, वहां पे 422 लोगों की मौत हुई अंग ना मिलने की वजह से एक वर्ष में। लेकिन क्योंकि उनकी पॉपुलेशन हमसे बहुत कम है तो हम उसको अगर उस फैक्टर को लेते हैं तो करीब 20 गुना वो हमसे पॉपुलेशन में कम है। लेकिन अगर हम 20 को 422 से गुणा करते हैं वो 10,000 भी नहीं आते, और हमारे यहाँ 5 लाख से 5 लाख
1: बड़ी संख्या
0: तो
1: है।
0: कई कारण होंगे, ये मैंने आपको एक आंकड़ा दिया। इसी तरह हम अमेरिका की बात करें, वहां पिछले 2024 में करीब 6,700 लोगों की मौत हुई। अमेरिका भी भारतवर्ष से जनसंख्या में 4 गुना कम है, तो 4 से भी गुणा करें वो भी 30,000 का आंकड़ा नहीं पार कर पाते, और हम 5 लाख से ऊपर हैं। तो इसके कई कारण हैं, लेकिन पहले एक चीज समझनी चाहिए कि अंग कौन दे सकता है। जिसकी मृत्यु नॉर्मल होती है वो अंग नहीं दे सकता।
1: जी जी,
0: जिस वक्त हार्ट काम बंद कर देगा तो फिर उसके अंग
1: दान देने का
0: अंग खत्म हो जाते हैं। तो अंगों को दान दिया जा सकता है जब उसकी मस्तिष्क मृत्यु हो, ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ ये होता है कि जब हमारे ब्रेन में या मस्तिष्क में ऑक्सीजन जाना बंद कर देता है तो वो आदमी की मस्तिष्क मृत्यु या ब्रेन डेथ हो जाती है। अब किसकी होती है? तो दो तरह से होती है मस्तिष्क मृत्यु। एक तो होती है एक्यूट इलनेस, कोई गंभीर बीमारी, जैसे दमा, एस्थमा। जब एस्थमा का एक्यूट उसके ऊपर दौरा पड़ता है,
1: जी जी,
0: तो आपने देखा होगा, श्रोताओं को भी पता होगा कि कई बार वो हवा के लिए तड़पता है क्योंकि दौरे में,
1: जी जी,
0: क्यों उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही दिमाग में। अगर उसका तत्कालीन मेडिकल उसको एड नहीं मिलेगी तो वो उसकी भी ब्रेन डेथ हो सकती है। लेकिन अगर मिल जाती है तो बच जाता है। या ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक्स, तो वो उन चीजों से आदमियों को बचना चाहिए। दूसरा, ये भी संख्या है, लेकिन जो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा संख्या है वो है हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट। 2024 का आंकड़ा जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सरफेस एंड रोड ट्रांसपोर्ट का है, गडकरी जी का,
1: जी,
0: कि करीब 1,80,000 लोगों की मौत हुई
1: रोड एक्सीडेंट में। जी,
0: उसमें से अगर उन सबकी जांचें हो पाती, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो करीब 50% लोग ऐसे होते हैं जब एक्सीडेंट होता है तो उनके मस्तिष्क की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप देखें कि जब मोटरसाइकिल, स्कूटर या दो पहिए पे कोई चलता है तो उसे हेलमेट का कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो ऊपर का सर है, हेड है, वो बहुत स्ट्रांग है, नारियल की तरह, कोकोनट की तरह, लेकिन जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही डेलिकेट होता है,
1: छोटे से धक्के से भी वो प्रभावित होता है।
0: अगर उसको जरा भी जोर से चोट लगेगी तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को कभी सर पे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये जो बीच में हमारे होता है। अब एक कारण ये है, ऐसे ही कार में या जो फोर व्हीलर्स हैं उसमें सीट बेल्ट कंपलसरी की जाती है, क्योंकि जब भी एक्सीडेंट होगा सबसे पहले आदमी का सर आगे जाके टकराएगा, अगर वो सीट बेल्ट में तो सर नहीं टकराएगा। हेलमेट इसलिए जरूरी है कि जब भी एक दो पहिए का एक्सीडेंट होगा सबसे पहले जो वो सड़क पे गिरेगा वो सर है, और वो सबसे पहले डेथ होगी। तो ये हुआ ब्रेन डेथ। सिर्फ इनके अच्छा, जब ब्रेन डेथ होता है तो वो अस्पताल में जाता है, अस्पताल में वेंटिलेटर पे रखा जाता है। मैं सोचता हूं हमारे सभी श्रोता वेंटिलेटर से काफी परिचित होंगे कोविड की वजह से। वेंटिलेटर का काम है कि आपको ऑक्सीजन फोर्सिबली आपको बॉडी में रखना, जिससे कि आपके बाकी अंग काम करते रहें, जिसमें हार्ट का काम मेन होता है कि वो पंप करता है और ब्लड भेजता है, सब जगह ऑक्सीजन जाती है। तो वही लोग, क्योंकि उनके बाकी सब अंग सुरक्षित हैं, तो खाली वही लोग अंगदान कर सकते हैं।
1: जी जी,
0: ये तो है अंगों का। अवयव जो टिश्यू डोनेशन है वो दोनों अवस्थाओं में होता है, ब्रेन डेथ हो या नेचुरल
1: डेथ हो।
0: टाइम फ्रेम होता है, जैसे आई कॉर्निया 4 घंटे पहले था, फिर 6 घंटे हुआ, अब 10 से 12 घंटे तक कॉर्निया डोनेशन होता है। पहले आई कॉर्निया में एक व्यक्ति से 2 लोग देख सकते थे, क्योंकि 2 कॉर्निया जाते थे। फिर रिसर्च एडवांस हुई, चार लोग देखने लगे। अब जो लेटेस्ट आई है वो छह लोग

0: देखते हैं, वो लोग उसकी स्लाइस कर देते हैं कॉर्निया को, तो एक व्यक्ति की मौत से 6 लोगों को नई रोशनी मिलती है,
1: दुनिया देखने की शक्ति।
0: आज आप सोचिए कि आज कल जाना सबको है, मौत नश्वर है, लेकिन अगर हम जा रहे हैं और हमारे बाद भी हमारी आंखें 6 लोगों को देख रही हैं, तो इससे बड़ा क्या चीज हो सकती है? तो ये है जब नेचुरल डेथ है, और मैंने बताया ब्रेन डेथ में ये है। अब प्रश्न आता है कि ब्रेन डेथ कौन डिक्लेयर करेगा, क्योंकि कई बार हम लोग पढ़ते हैं व्हाट्सएप पे भी और उस पे भी कि ब्रेन डेथ डॉक्टर लोग या अस्पताल अपना पैसा बनाने के लिए करते हैं। ये सब गलत धारणा है। गवर्नमेंट ने बहुत इस पे स्ट्रिक्ट कानून आए। 1994 से पहले भारतवर्ष में कोई कानून नहीं था, लेकिन 1994 में भारत की संसद ने, इंडियन पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, थोआ एक्ट कहलाता है वो। उसने सारे कायदे कानून बनाए, लॉ फ्रेम किए कि किस अवस्था में, जो आपका प्रश्न था कि कौन दे सकता है, कैसे, तो किस अवस्था में ब्रेन डेथ होगा, किसको दिए जाएंगे, और कुछ अंग ऐसे हैं जो जीवित अवस्था में भी दिए जा सकते हैं। तो पहले हम जीवित अवस्था का बता दें कि जीवित अवस्था में पहले सिर्फ किडनी दी जाती थी, क्योंकि हमें भगवान ने 2 किडनी दी है।
1: जी जी जी।
0: लेकिन मेडिकल साइंस एडवांस हुई, फिर हम जीवित अवस्था में लीवर देने लगे, पोर पार्ट ऑफ द लीवर, तो उसमें से 30% 40% 50% 60% लीवर देने लगे,
1: क्योंकि लीवर इटसेल्फ रिकवरी कर लेता है।
0: हाँ जी। ये एक आपने बहुत अच्छी बात बताई, लीवर में कुदरती एक हमारे करिश्मा है कि रिग्रो हो जाता है, दोबारा उग जाता है, जिसे कहते हैं हिंदी में, कि दोबारा वो पुनः अपनी अवस्था को ले लेता है, और वो 2 महीने में जो देने वाला है, करीब 1.5-2 महीने में उसका लीवर पूरा हो जाता है। जो लेने वाला है उसका भी 2-3 महीने में दोबारा पूरा हो जाता है,
1: जो छोटा सा पार्ट लगाया वो बढ़ के
0: पूरा बढ़ गया। तो आप देखिए, तो जो लोगों में अवधारणा है कि हम देंगे हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होता, बहुत अच्छी चीज है। अब फिर भी जब लॉ बना, वो लॉ क्यों बनाया गया कि जीवित अवस्था में कौन देगा और किसको मिलेगा, तो उन्होंने बनाया कि जीवित अवस्था में सिर्फ निकट परिवार का व्यक्ति ही दे सकता है। अब निकट परिवार की डेफिनेशन, तो उसमें दी उन्होंने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, पेरेंट्स, माँ बाप, स्पाउस, पति पत्नी, सिबलिंग्स, भाई बहन, चिल्ड्रंस, बेटा बेटी, एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, नाती नातिन, देवता देवती, पोता पोती, ये लोग ही
1: जो ब्लड के रिलेशन,
0: ब्लड है, क्लोज ब्लड रिलेशन, सिर्फ ये एक दूसरे को दे सकते हैं। अब उस वक्त भी ये प्रश्न आया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली में कोई नहीं है, या मैचिंग में प्रॉब्लम होती है। कई बार क्या होता है कि ब्लड उस जमाने में, क्योंकि मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, तो ब्लड ग्रुप मैच होना बड़ा कंपलसरी था, साइज की प्रॉब्लम आती थी, जैसे किसी बच्चे को किडनी चाहिए तो उसको एडल्ट की किडनी फिट नहीं होगी, या लिवर की प्रॉब्लम आती थी, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि फिर कोई आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दे, कि कोई बहुत ही किसी को प्यार करता हो या इज्जत करता हो, उसको भी मिसयूज ना हो, तो उसके लिए भी कायदा यह है कि गवर्नमेंट अपनी एक कमेटी बनाती है, वो कमेटी पूरा एग्जामिन करती है, क्योंकि अगर कोई भार वाला, आज आपको पता है कि सगे संबंधी या भाई बहन या भाई भाई भी एक दूसरे को परिवार का कोई संपत्ति नहीं देना चाहते,
1: तो अंग तो
0: बड़ी अंग तो बहुत बड़ी बात है, तो भार वाला क्यों देगा?
1: सही बात।
0: तो भार वाला, लेकिन क्या होता है, जैसे आपको पता हो श्री अरुण जेटली जी या श्रीमती सुषमा स्वराज जी, इन लोगों की इज्जत थी, लोग इन्हें प्यार करते थे, तो इन्हें लोगों ने बाहर से अपनी
1: डोनेट किया
0: किडनी दी
1: जी,
0: बिना किसी उसके। तो उसमें यह है कि आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन अलाउड है, और उसमें कोई भी मॉनेटरी पैसे का कोई लेन देन,
1: मतलब उसमें व्यापार नहीं आना चाहिए,
0: नहीं आना चाहिए।
1: इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि वो ये दे तो सकते, लेकिन इज्जत के लिए, परिवार के लिए, उसको हमें जीवन में महत्वपूर्ण है, सोसाइटी के लिए वो यूजफुल है, इसीलिए, लेकिन ये व्यापार
0: नहीं होना चाहिए। तो उसमें पूरी रोक लगा दी और इसकी भी कमेटी बना दी। अब आया प्रश्न कि ब्रेन डेथ कौन डिक्लेयर करेगा, क्योंकि क्या है, आपको पता है जैसे कि एक कोमा होता है और एक होता है ब्रेन डेथ, इसमें बहुत कम फर्क है, पर अंतर क्या है कि कोमा में व्यक्ति 10 साल 20 साल तक भी बेहोश रहेगा
1: लंबा,
0: लेकिन बिना किसी भार की सहायता के, उपकरणों की, कि उसे ना वेंटिलेटर की जरूरत है। अभी 4-5 महीने पहले एक सऊदी अरबिया के प्रिंस की डेथ हुई थी, वो 20 साल तक कोमा में था।
1: अभी इंडिया में दिल्ली का भी एक केस था, आपने सुना होगा, वो बच्चा जो कई साल

0: सालों तक जिंदा रहा बालकनी से गिर करके, और माँ बाप ने फिर अंततः जब ये आशा नहीं रही तो
1: सुप्रीम कोर्ट से,
0: सुप्रीम कोर्ट से उसकी इजाजत मिली और वो बड़ा केस
1: वो था इस पे वेंटिलेटर्स पे।
0: जी जी,
1: उसका ब्रेन डेथ था।
0: हाँ।
1: उसको वो नहीं चाहते थे कि वो उसको किया जाए, तो अब दिक्कत क्या है कि उसको डिसाइड कौन करेगा। तो इसके लिए वो कमेटी बनाते हैं चार लोगों की, वरिष्ठ डॉक्टरों की। उसमें एक न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन होना कंपलसरी होता है, बाकी फिजिशियन होते हैं, बाकी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। वो आके एग्जामिन करते हैं कि जैसे कोई रोड एक्सीडेंट वाला केस आता है और जो डॉक्टर ट्रीट करता है उसे लगता है कि ये ब्रेन डेथ है, इसको कोई भी पैरामीटर इसका नहीं बता रहा कि ये होश में आएगा। तो वो उस कमेटी को खबर करते हैं, वो कमेटी आती है, वो एग्जामिन करती है, और अगर उन्हें देखता है वो उसका वेंटिलेटर हटाते हैं। अब वेंटिलेटर हटा के कुछ मिनटों में ये देखते हैं कि इसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है या स्थिर है। अगर डाउन होना शुरू हो जाता है तो इमीडिएटली वेंटिलेटर लगा देते हैं, टेस्ट करते हैं, एपनिया टेस्ट वगैरह कहलाते हैं। उन टेस्टों से उन्हें पता चलता है कि अगर हम वेंटिलेटर हटा देंगे
0: तो ये
1: सर्वाइव नहीं करेगा, 5-10 मिनट में मर जाएगा। उस वक्त वो उसको फर्स्ट ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देते हैं पहला। फिर एज पर लॉ 6 घंटे का मिनिमम अंतराल होना चाहिए, उसके बाद वो कमेटी दोबारा आएगी, फिर एग्जामिन करेगी। अगर उस वक्त भी उन्हें लग रहा है कि इसको कोई भी चिन्ह ऐसे नहीं आ रहे हैं, कोई भी साइंस ऐसे नहीं है कि कहीं कभी भी रिकवर कर पाएगा, तब वो उसको फाइनल ब्रेन डेथ का सर्टिफिकेट देते हैं। जिस वक्त वो फाइनल ब्रेन डेथ का सर्टिफिकेट आ जाता है तो जो गवर्नमेंट के अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ऑर्गन डोनेशन के, वो फिर फैमिली में बात करते हैं। क्यों करते हैं बात? पूरे संसार में 2 सिस्टम चलते हैं, एक ऑप्टिन एक ऑप्ट आउट। ऑप्टिन सिस्टम ये है जो भारतवर्ष और यूएसए में है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का हो जाता है, व्यस्क हो जाता है, वो अपनी इच्छा अनुसार अपने अंगों को प्लेज कर सकता है कि मैं डोनेट करने के लिए इसका प्रत्यक्ष शपथ लेता हूं, प्लेज करता है। लेकिन 18 साल के बाद ही कर सकता है, यह है ऑप्टिन सिस्टम। लेकिन जिस वक्त व्यक्ति ब्रेन डेथ डिक्लेयर होता है तो वो बेहोश पड़ा है, तो इस ऑप्टिन सिस्टम में उसकी जो फाइनल उसको परमिशन देनी है कि इसके हम अंग निकालें नहीं निकालें, वो उसके निकट संबंधी परिवार वालों को देनी है। अगर उन्होंने उस वक्त मना कर दी तो वो अंग नहीं दिए जा सकते, भले ही उसने शपथ पत्र भरा हो, भले ही उसने अपनी विल में लिखा हो,
0: ओके,
1: कुछ भी किया हो।
0: हाँ, बहुत से लोग समय से पहले ही अपने जीवन काल में ही कह देते हैं,
1: वसीयतनामा भी बनाते हैं, हाँ, उसमें भी लिखते हैं, हाँ, वो इसमें नहीं काम करता है अभी तक।
0: मतलब हमारे देश में बाद में फिर परिवार के लोगों की सहमति
1: जरूरी है, इसलिए हम हर एक से कहते हैं कि जब भी आप फॉर्म भरें पहले अपने परिवार वालों से उसका जिक्र करें, उनसे बातें करें, और उन्हें भी अगर वो 18 वर्ष से ऊपर है उन्हें भी इसके लिए प्रोत्साहित करें कि वो भी आके अंग साथ में वो भी प्लेज करें, तो जिससे उन्हें पता है कि भाई अगर जे मेरा संबंधी गया है, मैंने भी प्लेज किया हुआ है, तो वो
0: बिल्कुल, क्योंकि उसके महत्व को समझेंगे, उसकी आवश्यकता को समझेंगे और उससे कितने लोगों का हित हो रहा है वो उसको समझेंगे, तो फिर नेचुरली उसमें आगे आएंगे,
1: आगे आएंगे। और इतना बड़ा दान कि आप सोचिए 9 लोगों को नई जिंदगी मिल रही है, जो मैं पहले भी कहा कि हम भगवान नहीं है, तो आज हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्च में जाते हैं, वहां दान करते हैं, हम शिक्षा का दान करते हैं, हम पुस्तक दान करते हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अन्न दान करते हैं, लेकिन आप सोचिए कोई नई जिंदगी नहीं दे सकता, इसमें नई
0: ये बड़ा
1: तो इसीलिए अंग दान महादान कहलाता है। अब फिर क्या कारण है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तो ये तो हुआ जो जीवित, अच्छा जीवित अवस्था में जो मेडिकल रिसर्च जब बहुत एडवांस हुई, आज हम सिर्फ हार्ट को छोड़ के पैंक्रियास भी पार्ट दिया जा सकता है, इंटेस्टाइन का भी पार्ट दिया जा सकता है, लंग्स का भी पार्ट दिया जा सकता है, और किडनी में बता ही चुका हूं एक दे सकते हैं और उसका पार्ट देते हैं, तो हम सारे अंग दे सकते हैं, सिर्फ हार्ट नहीं दे सकते। वो अभी रिसर्च फाइनल नहीं हुई है, अभी तक नहीं आई है,
0: हार्ट तो एक कोई
1: जाएगा, तो वो सिर्फ ब्रेन डेथ के बाद होता है, जैसे मैं ब्रेन डेथ आपको बता चुका, और ये है जीवित अवस्था। अब प्रश्न है कि ऐसा फिर क्या कारण है कि भारतवर्ष में
0: ये चीज कम
1: कम क्यों कम, है कम, जबकि हम दानवीर कर्ण के देश से
0: दान हमारी संस्कृति में है, सब कुछ दान है, लेकिन यहाँ शायद फिर अवेयरनेस की कमी है।
1: बिल्कुल आपने सही बात कही कि हमारे यहाँ जागरूक

0: वास्ता नहीं है, लोगों को तथ्यों की जानकारी नहीं है। तो इसके हमने जो बताते हैं हम कि चार मुख्य कारण है अंगदान। सबसे पहला है जागरूकता। तो इसके लिए जो हमने अपनी संस्था बनाई, मैंने एक संस्था बनाई है रोटरी क्लब ऑफ ऑर्गन डोनेशन इंटरनेशनल, जो रोटरी इंटरनेशनल के अंतर्गत है, और उसमें हमारा क्लब है, और उस क्लब में हमारा सिर्फ एक मकसद होता है अंगदान की जागरूकता देना। और वो हम जगह जगह जाके, जहां भी हम जाते हैं, जहां भी मौका मिलता है, वहां हम जागरूकता बताते हैं, लोगों को समझाते हैं, और ये भी बताते हैं कि आप फॉर्म भरने से पहले आप अपने परिवार वालों
1: की सहमति
0: लीजिए, उन्हें बताइए कि आप फॉर्म भर रहे हैं। और इसका फॉर्म भरना बहुत आसान है। अगर आज कोई भी फॉर्म भरना चाहता है और उसके परिवार वालों ने सहमति दी है, तो आप अपना जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, उस पर आप जाइए, उस पर आप नोटो टाइप करिए, और उसमें आपको नोटो की साइट आ जाएगी,
1: NOTO,
0: उस पे नोटो की साइट पे आपको एक QR कोड आएगा या आधार कार्ड वो नंबर मांगेगा। अगर आपका फोन रजिस्टर्ड है आधार कार्ड से, तो QR कोड आएगा, उसको जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो दो तिहाई फॉर्म भरा हुआ आ जाएगा, उसमें आपका नाम सब कुछ लिखा हुआ आएगा। सिर्फ आपको उसमें भरना है कि आपका कौन निकट संबंधी जिसको सूचित किया जाए, और जो डिसीजन भी ले
1: उस समय,
0: और आप कौन कौन से अंग देना चाहते हैं, वो भी आपको भारत सरकार आपको देती है। कि आप कहते हो कि मैं तो सिर्फ किडनी दूंगा, या मैं टिश्यू देना चाहता हूं, मैं ऑर्गन नहीं, मैं सिर्फ आंख देना चाहता हूं, वो भी आपकी चॉइस है। और जैसे ही आप उसे सबमिट करेंगे, जैसे रेलवे का टिकट और हवाई जहाज का टिकट आपके मोबाइल पे आ जाता है, ऐसे ही उसका एक डोनर कार्ड, दान का जो कार्ड है वो आ जाएगा। लेकिन महत्वता तभी है उसकी
1: जब आप अपने परिवार को बताया,
0: परिवार वाले एग्री,
1: क्योंकि वो उनकी असहमति उस समय रही, आप तो नहीं होंगे, लेकिन आपका बताया हुआ वो जो सहमति है वो काम करेगी, तो ही आप डोनेट।
0: जैसे मैं गत 10 वर्षों से इस कार्य में दिन रात लगा हुआ हूँ, मैंने भारतवर्ष में, विदेशों में भी, कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट संस्थान नहीं है जहां पे, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, एटॉमिक प्लांट है, जैसे तारापुर एटॉमिक प्लांट है, बहुत सारे एटॉमिक प्लांट्स हैं, इसरो है, सब जगह, इवन आपका जो चेन्नई का दूरदर्शन है, उन्होंने कहा दूरदर्शन पे तो प्रोग्राम आप देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जितना भी हमारा स्टाफ है, जितने एम्प्लॉइज हैं, आप सब उनको भी अवगत कराएं, क्योंकि ये जो अंगदान है ये हर व्यक्ति से संबंधित है, इसमें कोई संस्था नहीं है, व्यक्तिगत संबंध है। तो एक ये, तो एक तो जागरूकता, तो इसके लिए मैं सबसे अपील करूंगा और आपके श्रोताओं से खासकर करूंगा कि आप लोग इसके लिए जागरूक हों, और कोई भी प्रश्न है वो आप प्रश्न अपने रेडियो स्टेशन को ग्रसित करें, तो ये लोग जब भी मौका मिलेगा, जो भी इसके एक्सपर्ट्स आते हैं उन्हें वो बताएंगे, या जब भी मुझसे भी पूछेंगे उसका आपको जवाब मिलेगा। लेकिन अंधकार में ना रहें, क्योंकि इससे बड़ा दान कोई नहीं।
1: आपने काफी बता दिया है कि क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपकी सहमति और आपका जो बताया हुआ वो है वो काम करेगा।
0: दूसरा कारण है जी इंफ्रास्ट्रक्चर। भारतवर्ष में नोटों के आंकड़े के हिसाब से करीब 15-16% जिला मुख्यालय ऐसे हैं जहां पे अंगों का प्रत्यारोपण, जिसे हम इंग्लिश में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, या अंगों का निकालने का, जिसे रिट्रीवल कहते हैं, उसकी सुविधा है। तो अब आप सोचिए कि जब सुविधा निकालने की नहीं होगी, और वो व्यक्ति वहां पे उसका अगर ब्रेन डेथ होता है डिक्लेयर, तो पहले तो ब्रेन डेड डिक्लेयर नहीं होगा, क्यों, वहां कमेटी नहीं होगी। अगर वो डिक्लेयर भी हो गया तो हम अंग नहीं निकाल सकते। तो आज भारतवर्ष में बहुत सारे अंग सब वेस्ट हो रहे हैं, व्यर्थ जा रहे हैं,
1: क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर।
0: अब मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो हमारे यहाँ 75 जिला मुख्यालय हैं, उसमें से 7 या 8 जिला मुख्यालयों में सुविधाएं हैं। आज हम मथुरा में बात कर रहे हैं, आप मथुरा छोड़िए आगरा तक में नहीं है। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, कहीं भी ये सुविधा नहीं।
1: बहुत बड़ा एरिया,
0: ये बहुत बड़ा एरिया है।
1: तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरी सबसे बड़ी समस्या,
0: सबसे बड़ी समस्या है। इसमें काफी गवर्नमेंट भी कर रही है, और अभी इस बार उन्होंने डिक्लेयर भी किया है। क्योंकि क्या हो रहा है, जहां तक जागरूकता की बात है, अगर आप 99वां एपिसोड, जो 99 वाला संस्करण था मन की बात का, उसको अगर आप दोबारा सुने, तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत जोर देके अंगों के ऑर्गन डोनेशन के लिए कहा। उसके बाद भी कई बार ऑर्गन डोनेशन पे रिपीटेड बोल,

0: क्योंकि वो समझते हैं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, और ये इंपॉर्टेंस पर्सनल है, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है, ये हम सबकी समस्या है। तो ये
1: मानव के लिए, मानव के द्वारा
0: मानवता का एक बहुत बड़ा, तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है रुपया कॉस्ट। अभी भारतवर्ष में करीब 800 सेंटर हैं पूरे भारतवर्ष में जहां ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, उनमें से करीब 650 से 675 सेंटर ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में, मुश्किल से 100-125 सेंटर
1: गवर्नमेंट सेक्टर,
0: उसमें भी ज्यादातर सेंटर सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट करती हैं या लिवर कर पाते हैं, बाकी वो सब रेफर करते हैं प्राइवेट को। प्राइवेट में किडनी जो सबसे सस्ते में ट्रांसप्लांट होती है उसके करीब कॉस्ट 10 लाख रुपए आती है। इसके अलावा करीब 10,000 से 25,000 रुपए महीना जिसको किडनी लगती है उसे जीवन पर्यंत दवाइयां खानी है हर महीने। तो आप सोचिए कि एक बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन को भूल जाइए, आप मीडियम क्लास साधारण आदमी भी, मैं कहता हूं साधारण, ये तो मतलब मैं किडनी की बात कर रहा हूं,
1: जी जी अन्य अंगों
0: का। अब आप लीवर पे आइए, लीवर करीब 20 से 25 लाख रुपए खर्चाता है, हार्ट 25 से 50 लाख खर्चाता है, लंग्स करीब 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का खर्चाता है। आप मध्यम वर्ग भी नहीं अफोर्ड कर सकता। पहले इंश्योरेंस कंपनी इसमें कुछ पैसा नहीं देती थी, अब बहुत जोर लगाया हम लोगों ने, काफी सामाजिक संस्थाओं ने, अब वो 1 लाख रुपया देती है, अब वो ऊंट के मुंह में जीरा है।
1: जीरा बिल्कुल सही।
0: तो ये कारण ये है। लेकिन मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं कि मैं जब कोविड टाइम था, मैं उस वक्त मैंगलोरु में था साउथ इंडिया में, तो वहां की एक लोकल चैनल ने मुझे कहा कि क्योंकि सब लोग घर में रहते हैं तो आप एक कोई प्रोग्राम ऐसा बनाइए कि 1-1.5 घंटे लोगों को उससे घर में अच्छी कोई चीज, नई चीज पता चले।
1: जी, जी, जी।
0: तो मैं 1.5 घंटे का रोज लाइव टेलीकास्ट करता था, उसमें ऑर्गन डोनेशन पे और भी सब्जेक्ट्स लेता था। तो एक हमारे रेगुलर पैनलिस्ट थे डॉक्टर सीवी आनंद बोस आईएएस, जो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ लेबर एडवाइजर थे, बाद में वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर बने, अभी उन्होंने 2-3 महीने पहले ही त्याग पत्र दिया है। वो मेरे हर मंगलवार को प्रोग्राम में आते थे गेस्ट बन के। तो एक बार वो बोले कि आप जो बार बार पैसे की बात करते हैं, अब हमने आयुष्मान भारत में स्कीम में 5 लाख की लिमिट बनाई है। तो मैंने कहा देखिए आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इस 5 लाख से भी कुछ नहीं होगा,
1: कुछ नहीं हो रहा।
0: जब तक 10 लाख ना हो या आप गवर्नमेंट में हॉस्पिटल्स में फ्री करा दो,
1: फ्री करा दो सही बात,
0: तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अभी गवर्नमेंट में, तो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा ठीक है आप इसकी छोटी सी क्लिपिंग हमें भेजिए इस प्रोग्राम की। तो मैंने करीब 5 मिनट की क्लिपिंग और भेजी, उन्होंने वो क्लिपिंग हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फॉरवर्ड की। और मुझे श्रोताओं आप सबको कहते हुए बहुत हर्ष होता है कि 2023 में दिसंबर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो लिमिट 5 लाख से बढ़ा के 15 लाख कर दी, और उसमें किडनी पूरी तरह फ्री हो गई और अब लीवर भी कवर होने लगा। तो कम से कम दो चीजों में बीपीएल वालों के लिए
1: जी, जी, जी,
0: ये बहुत बड़ी
1: सहूलियत।
0: लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य हमारा, फिर हम कहेंगे कि ये स्वास्थ्य हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, ये सेंट्रल का सब्जेक्ट नहीं है।
1: जी, जी।
0: तो इसमें बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने इम्प्लीमेंट करने में आनाकानी की। और ये जो स्कीम आई है वो है, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं श्रोताओं को कि कभी भी आप कोई बीपीएल पेशेंट के आप अक्रॉस आते हैं, ये पता चलता है तो आप बताइए, ये आयुष्मान भारत ABPMJY स्कीम है जिसमें 15 लाख की लिमिट है,
1: मतलब किडनी और
0: लीवर तो फ्री हो ही जाते हैं।
1: जी, जी।
0: अगर कोई और भी अंग है तो भी 15 लाख रुपए तक गवर्नमेंट
1: मिल सकता है,
0: मिल सकता है। अब हमने इसके बाद भी हमने बहुत जोर लगाया महाराष्ट्र में, मैं आजकल रहता हूं मुंबई में, तो 1.5 साल लगा वहां के, मैं आयुष्मान भारत के जो चेयरमैन है उनसे कई बार मीटिंग हुई। तो 4 नवंबर 2025 को मुझ पे फोन आता है सुबह कि आज आपको आयुष्मान भारत ऑफिस आना है, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। मैंने कि ऐसा क्या हो गया, बोले आप आइए तभी पता चलेगा। जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि हमारे वहां के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने वो लिमिट 5 लाख से अब 22 लाख कर दी, और उसमें किडनी लीवर टोटल फ्री हो गया। इसमें वो 20 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख तक दे रहे हैं बाकी के लिए भी। बाकी भी गवर्नमेंट कर रही है, तमिलनाडु ने कर रखा है, कुछ गवर्नमेंट अभी नहीं कर पा रही है, तो अभी हमारा प्रयास जारी है। ये

0: तो हुआ ऑर्गन डोनेशन के, अभी इसी वर्ष 2025 में, क्योंकि 3 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है हर वर्ष, पहले ये 13 तारीख को मनाते थे लेकिन अब उसको 2 साल से 3 अगस्त को कर दिया है। तो 2 अगस्त को एक प्रोग्राम आयोजित हुआ था जो नोटो ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दिल्ली में आयोजित किया था। उसमें हमारे आदरणीय मंत्री स्वास्थ्य श्री जेपी नड्डा जी ने डिक्लेयर किया कि अब जो भी गरीब है उसको 10,000 रुपया महीने का आर्थिक सहायता ट्रांसप्लांट पेशेंट को हर महीने दी जाएगी,
1: जो अब दवाओं
0: पे खर्चा होता है। क्योंकि बहुत बड़ा खर्चा था, लोग बाग करवाते नहीं थे ट्रांसप्लांट की, हम ट्रांसप्लांट कराएंगे, हमारा पैसा घर में खाने को नहीं होता है तो हम ये क्या करेंगे। तो देखिए गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, बाकी काम हम आपको करना है। तो ये तीसरा कारण। चौथा जो बहुत बड़ा कारण है भारतवर्ष में, वो है मिथ्या, जो हमारी गलत धारणाएं बनी हुई हैं, अवधारणाएं हैं, मिस कंसेप्शन
1: है। जी जी,
0: वो है दो तरह से है, एक है रिलीजियस और एक है कल्चरल।
1: जी,
0: कल्चरल है, जैसे कि एक अवधारणा ये है कि अगर मैंने आंख दे दी तो अगले जन्म में मैं अंधा पैदा होऊंगा। एक है कि डॉक्टर अगर उसे पता चले कि मैंने अपने ऑर्गन्स डोनेट का प्लेज भरा हुआ है तो मेरे ऑर्गन्स जानबूझ के निकाल लेंगे। ये दोनों अवधारण गलत है।
1: जी जी,
0: अगर हम ये कहते हैं कि आई डोनेशन के बाद अगर अगले जन्म में मैं अंधा पैदा होऊंगा तो उसका एक ही मैं कारण बता सकता हूं, दो बता सकता हूं, कि आज हम कहीं पैसे देते हैं दान में तो क्या हम अगली बार बिना पैसे के होंगे।
1: जी जी,
0: दूसरा कारण है कि जैसे आपको पता है जो वयस्क स्त्रियां हो जाती हैं, थोड़ा अवस्था वाली हो जाती हैं, प्रौढ़ 45-50 वर्ष की, उनको कई बार यूट्रस में प्रॉब्लम होती है तो उनके यूट्रस को रिमूव किया जाता है, हिस्टेक्टमी
1: निकाल दिया जाता है। जी,
0: कभी कोई नहीं पूछता कि क्या अगले जन्म में ये बिना यूट्रस के पैदा होंगे। तो ये बिल्कुल धारणा गलत है।
1: जी, मतलब ये ऐसी है जो बिना उसके ही है, इसका कोई कारण नहीं है,
0: बिल्कुल कोई कारण नहीं।
1: जी जी,
0: और ये तो हुई। और जहां तक डॉक्टर की बात है, डॉक्टर सेवा करने के लिए, डॉक्टर आपको नई जिंदगी देने के लिए है, और जैसा मैंने बताया कि ये सारा कंट्रोल गवर्नमेंट करती है, और वो जो अंग भी निकलते हैं वो सारे के सारे अंग जाते हैं, उसकी वेट लिस्ट होती है, क्योंकि भारतवर्ष में अंगों की डिमांड बहुत है। हमारे यहाँ करीब 5 लाख व्यक्ति हर वक्त वेट लिस्ट में है, उसमें से पिछले वर्ष करीब 20,000 लोगों को अंग मिले हैं।
1: बताइए, मतलब डिमांड एंड
0: सप्लाई में बहुत डिफरेंस है। इसलिए सारी कंट्रोल किसको अंग देना है वो कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, जो नोटो रोटो सोटो है वो वेट लिस्ट के हिसाब से। तो कई बार ये होता है कि सपोज दिल्ली में पेशेंट का ब्रेन डेड डिक्लेयर हुआ, उसका हार्ट, वो हार्ट जाना है मुंबई में वेट लिस्ट के हिसाब से। अब हार्ट की ये है कि वो उसे 4 घंटे के अंदर निकालने के बाद प्रत्यारोपण जरूरी है,
1: हो जाना चाहिए।
0: अब 4 घंटे में आपको पता है दिल्ली का ट्रैफिक कितना है कि वो एयरपोर्ट तक 2 घंटे में, तो 1.5 से 2 घंटे में पहुंचेगा। बॉम्बे में, मुंबई में भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, और प्लस 2 घंटे कम से कम फ्लाइट को 1.5 से 2 घंटा लगता है,
1: उस समय वो मिल जाए फ्लाइट।
0: तो उसके लिए भी सरकार ने कायदे कानून बनाए हैं कि एक ग्रीन कॉरिडोर बनता है। अब ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है, जैसे आपने रोड पे लाइट्स देखी हैं, जो हमारी ट्रैफिक लाइट होती है उसमें होता है रेड लाइट होती है, येलो होती है, ग्रीन होती है। तो ग्रीन लाइट पूरी लाइट वहां तक, अस्पताल से एयरपोर्ट तक सारी लाइट ग्रीन रहेंगी, पूरा ट्रैफिक कंट्रोल रहेगा। जैसे कोई, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जब चलते हैं या कोई भी मंत्री चलते हैं,
1: वो पूरा बना दिया जाता,
0: रोड खाली रहेगी, पुलिस की जीप उसे एस्कॉर्ट करेगी, उसका जो डिब्बे में हार्ट जा रहा है। तो ये करिए कि अगर सपोज अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली से हार्ट निकला और वो जाना है एयरपोर्ट, वैसे अमूमन 1.5 घंटा लगता है, वो डिस्टेंस ना हो, ज्यादा नहीं होता है, तो 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएगा, क्योंकि रोड बिल्कुल खाली रहेगी।
1: अच्छा, इसी तरह का बॉम्बे में भी मिलेगा,
0: ऐसा ही मुंबई में होगा। लेकिन उससे पहले वो लोग क्या करते हैं, जब वो रिट्रीव करते हैं, क्योंकि वेंटिलेटर पे तो व्यक्ति जिंदा है, तो वो जिस वक्त देख लेते हैं कि कौन सी फ्लाइट जा रही है, वो सूचित करते हैं एयरपोर्ट को, एयरपोर्ट वाले बताते हैं कि ये फ्लाइट 10:10 पे जाएगी, तो उसी हिसाब से वो टाइम गैप लेके निकलते हैं। तो जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, वहां पे एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट के जो उच्च अधिकारी हैं, सीआईएसएफ के उच्च अधिकारी हैं, वो उस डिब्बे को रिसीव करेंगे और उसकी

0: डिब्बे को एक्सरे में नहीं डाला जाता, उस लेकिन जो उसके संग एकम्पनिंग डॉक्टर है उसकी स्क्रीनिंग सबसे पहले होगी। जैसे आपने देखा होगा वहां लंबी क्यू होती है सिक्योरिटी में, वो सब हटा दिए जाएंगे, उन्हें सबसे पहले अलग से स्क्रीन करके सीधा हवाई जहाज में, जब हवाई जहाज का दरवाजा बंद होने वाला होता है तब पहुंचते हैं। और जैसे ही वो बैठेंगे, अभी उसके बाद भी एक पेच होता है कि हवाई जहाज मुंबई दिल्ली या बड़े शहरों में 10-10, 15-15 हवाई जहाज आगे होते हैं कतार में, तो उसमें आधा घंटा जाता है, कई बार एक एक घंटा। उस वक्त भी इस प्लेन को टॉप प्रायोरिटी होगी कि सबसे पहले इसको टेक ऑफ
1: कराना है।
0: अब जब ये मुंबई पहुंचेगा, लॉ ये कहता है, कायदा ये कहता है कि वहां कई बार एक एक घंटे तक हवाई जहाज ऊपर घूमता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री का भी हवाई जहाज उस वक्त हवा में है, हमारे महामहिम राष्ट्रपति का भी हवाई जहाज हवा में है, उनको रोक के पहले इसको लैंड कराया जाएगा। और वहां जैसे ही वो उतरेगा, अंदर टर्मैक पे, मतलब अंदर ही वहां पर एम्बुलेंस तैयार होगी, दरवाजा खुलते ही सबसे पहले वो निकलेंगे, वहीं से एम्बुलेंस, फिर वही ग्रीन कॉरिडोर बनके वो जाएगी। इस पूरे प्रोसेस में करीब 3 घंटे में हाज दिल्ली से मुंबई पहुंचता है, वहां डॉक्टर की टीम तैयार होती है, 4 घंटे में प्रत्यार्पण हो जाता है। ऐसा बहुत होता है, अमूमन होता रहता है, और इसकी वजह से बहुत लोगों की नई जिंदगियां बची हैं, बहुतों की जिंदगियां बची हैं। तो देखिए ये काम इस तरह बहुत,
1: मतलब लीगल वे पे इतना रोड मैप बना हुआ है कि इतनी सपोर्ट आपको मिल सकती है। इसमें यहां हमारी विलिंग आती है कि हम कम से कम देने के लिए तैयार हों।
0: अब आते हैं हम धार्मिक पे, जो दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष में करीब 5-6 धर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हिंदू धर्म है, 80% हमारी जनसंख्या हिंदुओं की है। फिर इस्लाम है, करीब 15%, 5% में क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, जैन हैं और बौद्ध हैं। मैं उल्टे ढंग से चलता हूं। बौद्ध धर्म की हम बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारे भारतवर्ष के बहुत नजदीकी देश है श्रीलंका। श्रीलंका में सबसे ज्यादा आई डोनेट होती है। कारण है कि बौद्ध धर्म कहता है कि अगर आपने आईज का डोनेशन किया तो आपको बौद्ध धर्म में सबसे ऊंचा स्थान मिलेगा। श्रीलंका में इतना डोनेशन होता है कि उनके यहां सरप्लस आई कॉर्निया है, वो भारत और पूरे विश्व को एक्सपोर्ट करते हैं।
1: जी जी जी।
0: तो इसका मतलब बौद्ध धर्म इसके अगेंस्ट नहीं है।
1: नहीं है जी।
0: उसके बाद हम दूसरा धर्म आता है जैन धर्म। मेरी पत्नी जैन है तो उनके, और आपको पता है पत्नी की सबको सुननी पड़ती है, तो मैं उनकी वजह से मैं बहुत जैन के धर्म वाधिकारियों से मिला, सबसे बातें भी की। वो लोग इसको बहुत प्रचारित और प्रसारित करते हैं, और उसी वजह से अगर आप भारतवर्ष में देखें, जैन जो ज्यादातर भौतियात है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में, और वहां के जो जैनी हैं वो लोग बहुत प्रोत्साहित रहते हैं अंगदान में। तो जैन धर्म इसके कहीं भी अगेंस्ट
1: नहीं है अंगदान के।
0: जी
1: जी जी।
0: फिर इसके बाद आता है सिखिज्म। आज उनके मुकाबले दान में कोई आगे नहीं है, क्योंकि उनका कहा जाता है कि जहां स्वार्थ है वहां भगवान नहीं है, और जहां भगवान है वहां स्वार्थ नहीं।
1: जी, इसलिए देना
0: वो आपने कोविड के टाइम में देखा होगा कि दिल्ली की सड़कों पे सरदारों ने वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, खाना, दवाइयां, अपनी जान की परवाह किए बिना सबको प्रोवाइड
1: सेवा
0: की, तो उनके यहां भी। और इसका एक कारण मैं ये भी दे सकता हूं कि आज जो रीजनल वो बनाया गया, ऑफिस बनाया गया सोट रोड, वो चंडीगढ़ में बनाया गया, जबकि यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है लखनऊ की जगह। तो सरदारों में भी नहीं है। अब आप आइए क्रिश्चियन में।
1: जी जी।
0: मैंने आपको 2 कंट्रीज के उदाहरण दिए, एक दिया मैंने उदाहरण यूके का और एक यूएसए का, दोनों क्रिश्चियन बहुतियात देश हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन इसके अलावा भी एक मैं एक और बताऊं कि अगर बाइबल में आप पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है लव दाई नेबर, इसका मतलब है कि अपने पड़ोसी से वो ही प्यार करो जैसा आप अपने से प्यार करते हैं। और ये बाइबल में साफ लिखा हुआ है, इसलिए जो क्रिश्चियंस हैं वो हमेशा इसको प्रोत्साहित करते हैं ऑर्गन डोनेशन को।
1: इसीलिए मतलब क्रिश्चियनिटी में भी कोई रुकावट नहीं है,
0: कोई रुकावट नहीं
1: जी,
0: है
1: जी, जी।
0: और इसलिए जो ये अवधारणा है कि और लोग नहीं करते या कम करते हैं वो गलत है। इसलिए हमें

0: सबको इसमें आगे बढ़ना चाहिए। अब हम आते हैं इस्लाम पे।
1: जी,
0: व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहती है कि मुसलमान अंग नहीं देते, इनके यहां ये बहुत ही गलत माना जाता है। ये गलत है। मैं इसमें दो कारण बताऊंगा। कुरान शरीफ में साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई किसी की जिंदगी बचाता है तो जैसे उसने सारे मैनकाइंड की, एक पूरे समाज की जिंदगी बचाई है। ये कुरान शरीफ में लिखा है। तो आज अगर आप कहते हैं तो कुरान शरीफ जो मुल्ला मौलवी हैं उनसे तो ऊपर है। इसका एक आपको मैं उदाहरण भी दूंगा। सऊदी अरबिया भारतवर्ष के पास में ही है, मतलब थोड़ा दूर है, और सबको पता है सऊदी अरबिया एक इस्लामिक कंट्री है। वहां पे अंग देने की जो दर है प्रति 10 लाख पर मिलियन वो 4 है, 4%। भारतवर्ष में वो दर है 0.65।
1: तो यहां से वो काफी
0: बहुत आगे है। तो अगर इस्लाम में मना होता
1: तो नहीं हो पाता,
0: नहीं होता,
1: और कम से कम सऊदी अरेबिया में तो नहीं होता।
0: तो ये भी गलत है। अब हम आते हैं
1: हिंदूज।
0: सबसे प्रथम जो मैं एक ही बात हर एक से पूछता हूं कि आप जब कोई भी नया काम करते हैं तो आप किस भगवान की पूजा सबसे पहले करते हैं, किसका नाम पहले लेते हैं, किसका लेते हैं?
1: गणेश जी का।
0: गणेश जी का। अगर हम हिंदू हैं और अगर हम भगवान गणेश में विश्वास रखते हैं तो हमें ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में विश्वास रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है कि गणेश जी का सर एक हाथी के सर से ट्रांसप्लांट हुआ था, रिप्लेस हुआ था, और करा किसने था? भगवान शंकर ने। तो इसका मतलब भगवान शिव और भगवान गणेश ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट को चाहते थे, मतलब कभी उसके अगेंस्ट।
1: वो इस विधा के जनक हैं।
0: जनक हैं। तो इसको अगर कोई कहता है तो उसको गलत है। अब क्योंकि आज ये कार्यक्रम भगवान श्री कृष्ण की धरा पे हो रहा है ब्रजभूमि में, और मैं पैदा यही हुआ, पला भी यही, अब मुंबई में निवास है मेरा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को जो लोग मानते हैं तो गीता में चैप्टर 2 वर्स 22 अध्याय 2 और 22वां जो है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हिंदी में, मैं उसका वो कर रहा हूं
1: जी जी,
0: कि जिस तरह शरीर पुराने कपड़ों का त्याग करता है उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को त्यागती है। तो क्या हम पुराने कपड़ों को जलाते हैं या दफनाते हैं? ना उन्हें जलाते हैं ना दफनाते हैं। हम क्या करते हैं? उन पुराने कपड़ों को जो जरूरतमंद है
1: उसको
0: दान कर देते हैं, उसे दे देते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि जब आप पुराने शरीर के कपड़ों को त्यागते हो उसी तरह आत्मा अपने पुराने शरीर को त्यागती है, तो आप उसे जलाते और दफनाते क्यों हो? आप उसको, अगर वो नॉर्मल डेथ हुई है तो उसको मेडिकल कॉलेज को दो, जिससे कि वो वहां के डॉक्टर पढ़ के हम आप सबकी सेवा करें, हमारे बच्चों को नई जिंदगी दें। नहीं तो अगर ब्रेन डेथ है या तो, अगर नॉर्मल है तो टिश्यू डोनेशन दीजिए कि एक व्यक्ति की आंख से 6 लोगों को नई रोशनियां मिलती हैं, कितनी बड़ी बात है। और नहीं तो अंग दीजिए, 9 लोगों को नई जिंदगी मिलती
1: जी,
0: है
1: जी, जी।
0: तो भगवान श्री कृष्ण
1: जी, और वैसे भी हम भारतीय संस्कृति में रहे दूसरे के लिए तो दधीच,
0: हाँ वो भी मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अभी और एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हम तो भगवान राम को मानते हैं। तो अगर भगवान राम को आप मानते हैं तो देखिए भगवान राम ने क्या कहा था। आज रामायण जो बनी पूरी वो क्यों बनी थी? कि उनके पिता ने कोई वचन दिए थे,
1: वचन दीजिए,
0: और उन्होंने उन वचनों को अपने लड़के को बताया, भगवान राम को बताया, महाराज दशरथ ने अपने पिता के वचनों को रखने के लिए,
1: पूरा करने के लिए
0: उन्होंने कहा था कि ये सत्य है, मेरे पिता के वचन सत्य है, इन्हें मैं पूरा कर रहा हूं। तब जब अगर किसी ने प्लेज किया है और अगर उसकी डेथ होती है, ब्रेन डेथ होती है, अगर आप उसके पुत्र हैं या भाई हैं या बेटी हैं या पत्नी हैं या पति हैं, उसके वचनों को आप भी रखें, क्योंकि भगवान राम ने। और एक और बात बताऊंगा कि जिस वक्त हमारा युद्ध हो रहा था, रावण से जाने वाले थे भगवान राम, तो उन्हें किसी ने बताया कि देखो आप युद्ध में रावण को नहीं हरा पाओगे क्योंकि उस पे माता का आशीर्वाद है। तो उन्होंने कहा क्या करना है? बोले आपको माता को प्रसन्न करना है। दुर्गा माता को, तो उन्होंने वहीं पर ही समुद्र के किनारे दुर्गा माता पे व्रत रखे।

0: थे नौ दुर्गे,
1: हम्म,
0: वो रोज 108 कमल के फूल चढ़ाते थे, नीले कमल के फूल। आखिरी दिन 107 नीले कमल के फूल मिले, तो भगवान राम ने 108 फूल करने के लिए अपनी आंख निकाल के चढ़ाई, क्योंकि भगवान राम को एक नाम और कहा जाता है कमल नयन।
1: कमल नयन
0: वो इसलिए कहा जाता है कि उनकी आंखें नीली थी और कमल के समान बड़ी आंखें थी। अब माता उनकी इस त्याग से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने विजयी भव का उन्हें आशीर्वाद दिया। तो भगवान राम भी अगेंस्ट नहीं थे। तो हमारे यहां भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान गणपति, कोई भी भगवान अगेंस्ट नहीं है। अब जो आपने दधी जी की बात की, आज पता है जिन्होंने मॉरल साइंस पढ़ी हो कि जब सुर असुरों में भयानक युद्ध हो रहा था और जब बताया गया कि कोई दानवीर अपने

0: भयानक युद्ध हो रहा था और जब बताया गया कि कोई दानवीर अपनी अस्थियों का अपनी हड्डियों का दान अपनी स्वेच्छा से करेगा, वो उससे जब व्रज बनेगा, उससे एक वेपन बनेगा, उससे उसको हराया जा सकता है। तो भगवान इंद्र, देवता इंद्र अपने सब देवताओं को लेके, पता चला कि महर्षि दधीची ऐसे हैं जो हर चीज दान दे देते हैं, वो उनके आश्रम में गए। उन्होंने कहा कि महर्षि जी ऐसे ऐसे एक बहुत बड़ी विपदा आ गई है। बोले हाँ मुझे पता है, क्या चाहिए आपको? बोले आप अपने अगर अपनी अस्थियों का अपनी
1: दान दे दे।
0: उन्होंने सहज ध्यान स्वेच्छा से दिया, उससे उन्होंने पूरी मानवता को बचाया। तो आप बताएं इससे बड़ा दान क्या होता?
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए जो ये गलत फहमियां हैं कि धर्म हमारा ऐसा कहता है, ऐसा नहीं है। और क्योंकि हम ब्रज में बात कर रहे हैं और आज आपको पता है कि हमारे वृंदावन में जो इस वक्त सबसे बड़े महात्मा हैं प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने पूरा इसी के बारे में बोला है कि ऑर्गन डोनेशन जरूर करना चाहिए, अंगदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि अंगदान से किसी को जिंदगी मिल रही है। आपका जो शरीर है वो तो जल के खाक हो जाएगा, वो तो जल जाएगा, अंगों को क्यों जलाते हो अगर उनसे किसी को नई जिंदगी मिले?
1: जी
0: तो
1: जी।
0: ये कारण है
1: जी,
0: अब
1: जी।
0: आपका प्रश्न एक आ सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा रोटरी
1: जी जी चलते चलते मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी जो संस्था है वो इसमें किस तरह से काम कर रही है, तो संक्षेप में ये भी थोड़ा सा।
0: पहले कार्य तो सबसे पहले जागरूकता, उसके लिए हमने बहुत काम किया और कर रहे हैं। ऑर्गन डोनेशन वॉरियर, उसमें बिना पैसे के घर बैठे ऑनलाइन हम लोगों को इसके बारे में बताएंगे, 5 सेशन देंगे फ्री, बिल्कुल मुफ्त होंगे। सिर्फ आपको एक फॉर्म भरना होगा, उसमें आपको आप एडल्ट होने चाहिए, 18 साल से ऊपर होने चाहिए, और अगर आपकी इच्छा है तो हम आपको 5 लेसन देंगे जिसमें बताया जाएगा, जैसे आज मैंने इतना विस्तार में बताया कि क्यों जरूरत है, क्या क्या गलतियां हैं और पब्लिकली इसे कैसे बोला जाना चाहिए, वो सब बताएंगे। और अगर आपने वो सुन लिया और समझ लिया तो उससे 2 फायदे हैं। आप जब जूम पे होगा, घर पे होगा या ऑफिस में होगा, तो और लोग जो बैठे हैं उन्हें भी सब उसकी जानकारी हो जाएगी। दूसरा, एक बार आपको पता चल जाएगा तो आप अपने घर वालों को बता सकते हैं, आप वॉरियर बन जाएंगे, हम उसका सर्टिफिकेट भी देंगे। फिर आप अपने घर में, घर के बाद अपने समाज में, आप अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों में जागरूकता करेंगे। ये हमारा प्रयास है। हमारा प्रयास ये है कि इस तरह हम 1,00,000 लोगों को जोड़ें, जिससे वो 10-10 लोगों को भी अगर अवगत करा
1: जी,
0: दें।
1: जी, जी,
0: जैसे आज हम आप क्या करा रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि कितने आपके श्रोता हैं जो इससे सुनेंगे, समझेंगे और वो आगे भी इसको बढ़ाएंगे।
1: जी जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोता बंधु, आप थे रोटेरियन लाल गोयल साहब, ब्रजवासी हैं, मुंबई में रहते हैं और बड़े विस्तार से अंगदान क्या होता है, देहदान क्या होता है, टिश्यू दान क्या होता है, समाज के लिए क्यों उपयोगी है, क्या आवश्यकता है और करने से क्या मिलेगा। निश्चित तौर पे कुछ मिले ना मिले, लेकिन देने का सुख आप जरूर प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सभ्यता कहती है, हमारी संस्कृति कहती है, हमारा धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि देने से बड़ा सुख कुछ नहीं है, दान से बड़ा कुछ नहीं है। तो आप इस सब में, क्योंकि जाने के बाद तो कुछ नहीं रहा, तो जाने के बाद का सुख भी आप अंग दान करके, देह दान करके, टिश्यू दान करके आप ले सकते हैं। गोयल साहब, आप आए, इतनी विस्तार से और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ आपने बांटी, इसके लिए आप का धन्यवाद। और ये शुभकामनाएं कि इस नेक काम को आप जो समाज में लेकर जा रहे हैं, समाज का भी सहयोग मिलेगा, हमारे श्रोताओं का भी मिलेगा, और जब कभी फिर मिलेंगे आपके साथ तो इस विषय पर फिर से बात करेंगे कुछ नए अनुभव और नई प्रगति के साथ। अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, अंगदान महादान। जानकारी दे रहे थे रोटेरियन लाल गोयल और इनसे बातचीत कर रहे थे ओपी सिंह। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज की कलाकार हैं सुंदरी कुमारी और सखियां। आज हम आपको मल्हार सुनवा रहे हैं।

0: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी।
1: दूसरा कोई मैच है क्या?
2: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
1: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
3: पर बैंकिंग में नहीं।
4: वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
3: सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
6: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
7: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं ब्रज लोकगीत कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं सुंदरी कुमारी और सखियां। ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मल्हार, तो आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला मल्हार।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ. भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है.
1: आराम से मैडम.
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है. नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
3: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर. हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं ब्रज लोकगीत कार्यक्रम के अंतर्गत मल्हारों का, और आज की कलाकार हैं सुंदरी कुमारी और सखियां. और आइए अब आपको सुनवा देते हैं इन्हीं के स्वर में गाए हुए मल्हार.

इसी ब्रजलोक गीत के साथ ब्रजलोक गीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज की कलाकार थीं सुंदरी कुमारी और सखियां। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। अपराह्न के 1 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और इन खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी की जाएगी। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिन में लोकसभा की 19 बैठकें हुईं। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुईं। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों

0: के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्यवाही में बार बार बाधा आई। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद में बार बार व्यवधान डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है और उन पर लोकतांत्रिक तथा संसदीय परंपराओं का अनादर करने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में आकाशवाणी से बात करते हुए सुश्री पटेल ने कहा कि विपक्ष का यह व्यवहार पूरे देश ने देखा है।
1: इन लोगों की लोकतंत्र में संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी। इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है, हंगामा करना है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति इस समय उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति का संबोधन।
2: इन कलाओं में समुदाय की स्मृति और सामूहिक चेतना सहज रूप से व्यक्त होती है। यही कारण है कि लोक कला भारत की सांस्कृतिक पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। मैं स्वयं ऐसे परिवेश से आती हूँ जहाँ बहुत से गीत ऐसे होते हैं जो लिखे नहीं जाते, केवल गाए जाते हैं। बहुत सी ऐसी कथाएं होती है जो पुस्तकों में नहीं मिलेंगे, ये लोगों की स्मृति में ही रहती है। बहुत से नृत्य किसी मंच पर नहीं जन्म लेते हैं, ये उत्सवों और आम जीवन के बीच जन्म लेते हैं। देवी और स्वजनों, भारतीय संस्कृति के अनेक गंभीर उद्यताओं ने कला की व्यापक परिधि की बात की है। संगीत और चित्रकला से लेकर बुनाई, पाक कला, अश्व कला तक अनेक दक्षता को कला के व्यापक संस्कार में स्थान मिला है।
0: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
3: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 45 अंक गिरकर 77,922 पर, जबकि निफ्टी 59 अंक की गिरावट के साथ 24,377 पर कारोबार कर रहा था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रेंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। अभी लेते हैं एक छोटा सा व्यावसायिक अंतराल।
5: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
6: आराम से मैडम।
5: क्या
6: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
7: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

0: महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा योग और व्यायाम का महत्व। इसके अलावा चर्चा होगी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना विषय पर। इसी कार्यक्रम में महिलाएं सुनेंगी वार्ता, भारतीय महिला परिधान में साड़ी का महत्व जानकारी देंगी पूजा। इसी कार्यक्रम में आप जान सकेंगी कुछ घरेलू टिप्स और आनंद ले सकेंगी फिल्म संगीत का। श्रोता फिल्म संगीत सुनेंगे अपराह्न 1:45 पर और एनसीईआरटी एवं सीआईईटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का समय रहेगा उमंग का अपराह्न 2:30 पर। आज हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 4:00 कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के साथ, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी आप सुन सकेंगे संध्या 5:30 पर। आज इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा युवाओं को लक्ष्य से दूर करता नशा। इसके अलावा आज की बात होगी गरीबों के लिए स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार योजना विषय पर। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे मार्गदर्शन प्रबंधन के क्षेत्र में करियर वार्ता। वार्ताकार होंगे प्रोफेसर विकास त्रिपाठी और इनसे बातचीत करेंगे नौलखा सिंह। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम देश हमारो तीर्थ स्थल उज्जैन आप सुनेंगे संध्या 6:15 पर। वार्ताकार होंगे हरिनारायण मिश्रा। फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम संध्या बंदन का समय रहेगा संध्या 6:30 पर। कार्यक्रम किसानवाणी आप सुनेंगे संध्या 6:50 पर, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी का समय रहेगा संध्या 7:31 पर। संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात्रि 8:00, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर और कार्यक्रम न्यूज एट 9 का समय रहेगा रात्रि 9:00। चित्रपट संगीत सुहाने तराने सुना जा सकेगा रात्रि 9:15 पर। कार्यक्रम कंट्री वाइट आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। इनसाइट आप सुनेंगे रात्रि 9:45 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप सुन सकेंगे रात्रि 10:00। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कामोद मिश्रा का ठुमरी कजरी गायन रात्रि 10:30 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। अभी लेते हैं एक छोटा सा व्यावसायिक अंतराल।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है समवेत स्वरों में देशभक्ति परक रचना।

अभी आप सुन रहे थे समवेद स्वरों में देशभक्ति पर रचना। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है महिलाओं के लिए कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मीनू अग्रवाल।

FM 102.2 MHz पर आप सुन रही हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मीनू अग्रवाल। कहते हैं ये जिंदगी बस पल तो पल है, जिसमें ना तो आज और ना ही कल है। जी लो इस जिंदगी का हर पल इस तरह जैसे बस यही जिंदगी का सबसे हसी पल है। जी, हंसना हंसाना मुस्कुराना यही तो जिंदगी है। और आज के समय को देखें तो हर किसी की जिंदगी कहीं ना कहीं तनाव से भरी हुई है। इसलिए खुश रहना एक ऐसी टॉनिक है जिससे बड़ी से बड़ी परेशानियां और तनाव दूर हो सकता है। और यदि हमें खुश रहना है तो स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही होगा, जो आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में बहुत जरूरी है। माना काम इतने होते हैं कि समय ही नहीं मिलता, लेकिन कैसे भी समय निकालना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य की दशा उस घड़ी के समान होती है। यदि ठीक तरह से रखी जाए तो काफी सालों तक काम दे सकती है, और यदि लापरवाही बरती जाए तो जल्दी बिगड़ भी सकती है। जिंदगी को बदल जाने में कभी भी वक्त नहीं लगता, कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। यह हमारा मतलब अपने स्वास्थ्य को लेकर ही है, जिसे व्यायाम या योग से ठीक किया जा सकता है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। जैसे हम धन को सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही हमें अपने आप को स्वस्थ रखना होगा। जैसे जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही स्वस्थ रहने के लिए योग व व्यायाम की जरूरत होती है। इसलिए किसी भी तरह का आलस ना करके एक टाइम फिक्स कर लें। सबसे पहले थोड़ी देर वॉक करें, और फिर आपको जो भी योग व एक्सरसाइज ठीक लगे खुली जगह में सुबह के टाइम करें, जिससे ताजी हवा तो मिलेगी ही, साथ में दिमाग तरोताजा रहेगा। योग आदि से मांसपेशियां तो स्वस्थ रहती ही हैं, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है। और आज के टाइम में जो इतनी बीमारियां हो रही हैं, जैसे थायराइड, बीपी, डायबिटीज, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल आदि से बचे रहेंगे। काम तो रोज के हैं, कैसे भी थोड़ा सा टाइम निकालकर योग व व्यायाम जरूर करें। घर का बना पौष्टिक भोजन ही लें। कुछ बातों को ध्यान में रखें, जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में स्वच्छता का पूरा पूरा ध्यान रखें। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। योग व व्यायाम करते समय हमेशा ढीले व आरामदायक कपड़े ही पहनें। समय निश्चित रखें। योग व व्यायाम की शुरुआत हमेशा छोटे व सरल तरीके से ही करें, क्योंकि हम सभी के शरीर की बनावट अलग अलग होती है। बस इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखकर करें व्यायाम योग और रहें हमेशा निरोग। तो ये तो थी हमारी चर्चा। अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, कुछ इस तरह। जिंदगी लहर थी आप साहिल हुए, जिंदगी लहर थी आप साहिल हुए, ना जाने कैसे हम आपके प्यार के काबिल हुए। ना भुला देना उन हसीन लम्हों को, ना भुला देना उन हसीन लम्हों को, जब आप हमारी छोटी सी दुनिया में शामिल हुए।

0: वैसे तो हमारे देश में परिधानों को लेकर एक क्रेज सा रहता है। माना आज के आधुनिक युग में ज्यादातर महिलाएं सलवार सूट, जींस आदि पहनना पसंद करती हैं, लेकिन जब बात साड़ी की हो तो उसकी बराबरी कोई भी परिधान नहीं कर सकता। ये केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की प्राचीन सभ्यता, परंपरा और नारी की गरिमा का प्रतीक है, जो पीढ़ियों से सहेजा गया है। और क्या क्या महत्व है महिला परिधान साड़ी के, इसकी अधिक जानकारी हमें देंगी पूजा इस पहनावा वार्ता के माध्यम से। तो सुनते हैं ये वार्ता।
1: बहनों, साड़ी भारतीय उपमहाद्वीप में स्त्रियों को प्रमुख बाह्य पहनावा है। भारत में इसे प्राचीन समय से ही स्त्रियों द्वारा विशेष रूप से पसंद किया जाता रहा है। यह हमारे विरासत की निशानी है। यह किसी भी नारी

की सादगी और शालीनता की परिचायक भी होती है। साड़ियों में जो कसीदाकारी की जाती है उसका अपना एक इतिहास है। यह इतिहास 3,500 साल पुराना है। गांव के गांव पीढ़ियों से इस काम में जुटे हैं। इसे बनाने में बहुत वक्त लगता है। काम करने की बुनकरों की अपनी एक शैली है और उसी शैली के तहत डिजाइन बनाई जाती है। जिन देशों में यह

आती है। जिन देशों में यह शैली पहुंची, वहां की कला में साम्यता दिखाई देने लगती है। भले ही इन साड़ियों को पहनने वाली स्त्रियां धर्म और आस्था पर अपनी अलग राय रखती हों, किंतु साड़ियों में उकेरी गई कला आस्था का प्रमाण अवश्य देती है। यजुर्वेद में सबसे पहले साड़ी शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की संहिता के अनुसार यज्ञ या हवन के समय पत्नी को इसे पहनने का विधान है, और विधान के इसी क्रम से ही यह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनती चली गई। कालांतर से निरंतर इस पर कई प्रयोग हुए हैं। पौराणिक ग्रंथ महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग है, जब क्रोध में आकर दुर्योधन ने द्युत क्रीड़ा में द्रौपदी को जीतकर उसकी अस्मिता को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने साड़ी की लंबाई बढ़ाकर उसकी रक्षा की। इस कथा के माध्यम से यह संकेत भी दिया गया है कि यह केवल पहनावा ही नहीं है, बल्कि यह एक आत्म कवच भी है। दूसरी शताब्दी ईस्वी सन पूर्व की मूर्तियों में पुरुषों और स्त्रियों के शरीर के ऊपरी भाग को अनावृत दर्शाया गया है। ये कमर के इर्द गिर्द साड़ी इस प्रकार लपेटे हुए हैं कि पैरों के बीच सामने वाले भाग में चुन्नटें बन जाती हैं। इसमें 12वीं सदी तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। भारत के उत्तरी और मध्य भाग को जीतने के बाद मुस्लिमों ने जोर दिया कि शरीर को पूरी तरह से ढका जाए। हिंदू महिलाएं साड़ी को एक छोटे से अंग वस्त्र, जिसे सामान्यतः ब्लाउज तथा लहंगे, जिसे बोलचाल की भाषा में पेटीकोट कहते हैं, के साथ पहनती है, जिसमें इसको खोसकर कमर से पैर तक एक लंबा घेरा बना लिया जाता है। महाराष्ट्र में अक्सर 9 गज की साड़ी लांगदार बांधी जाती है। साड़ी में प्रयोग होने वाले रंगों के माध्यम से स्त्री अपने मन के भावों को व्यक्त करती है। क्योंकि साड़ी का धर्म के साथ विशेष जुड़ाव रहा है, इसलिए बहुत सारे धार्मिक संकेत चिन्ह और धार्मिक परंपरागत कला का समावेश इसमें होता रहा है। लोक कलाकार जिन्होंने समाज की रूढ़ियों की वजह से धर्म परिवर्तन किया था, उन्होंने कला का विस्तार करते हुए गंगा यमुना संस्कृति का प्रयोग साड़ियों को डिजाइन करते समय किया, और आज पीढ़ी दर पीढ़ी यह कला अपनी विरासत नई पीढ़ी को सौंपती हुई आगे बढ़ रही है। इसीलिए साड़ियों में हिंदू धर्म, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म का स्पष्ट भाव देखा जा सकता है। जिन जिन देशों में धर्मानुयायी गए, वहाँ की कला में कई धार्मिक चिन्ह दिखाई देने लगे। फिर चाहे इंडोनेशिया हो, पाकिस्तान हो या फिर श्रीलंका, कलाकारी का अद्भुत साम्य यहाँ देखने को मिलता है। इंडोनेशिया में जो साड़ियाँ बनाई जाती है उनके मोटिफ आध्यात्मिक हैं। आज भारत सहित अनेकों देशों में साड़ी महिलाओं द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से पहनी जाती है। इसको भिन्न भिन्न प्रकार से पहनने की कई शैलियाँ आज मौजूद है। ऐसा जरूरी नहीं है कि साड़ी पहनने के जिस प्रकार को सबसे अधिक पसंद किया जाता है उस प्रकार से ही हमें पहने। इसे पहनने के भी कई तरीके हैं। स्त्रियां अपनी लंबाई, कद काठी और मौके के अनुसार साड़ी पहनने का प्रकार चुन सकती है, जैसे फ्री पल्लू साड़ी, पिनअप साड़ी, उल्टा पल्लू, सीधा पल्लू, लहंगा शैली, मुमताज शैली और बंगाली शैली की साड़ियों को अपनी पसंद के अनुसार पहना जा सकता है। भौगोलिक स्थिति, पारंपरिक मूल्यों और रुचियों के अनुसार बाजारों में साड़ियों की असंख्य किस्में उपलब्ध है। अलग अलग शैली की साड़ियों में कांजीवरम, बनारसी, पटोला और हकोबा साड़ी मुख्य है। मध्य प्रदेश की चंदेरी, महेश्वरी, मधुबनी छपाई, असम की मूंगा रेशम, उड़ीसा की बोमकई, राजस्थान की बंदेज, गुजरात की गठोड़ा पटोला, बिहार की तसर काटा, छत्तीसगढ़ी कोसा रेशम, दिल्ली की रेशमी साड़ियाँ, झारखंडी कोसा रेशम, महाराष्ट्र की पैथानी, तमिलनाडु की कांजीवरम, बनारसी साड़ियाँ, उत्तर प्रदेश की तांची, जामदानी, जामवर एवं पश्चिम बंगाल की बालूचरी एवं कांटा टंगेल आदि प्रसिद्ध साड़ियाँ हैं। बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी एक विशेष प्रकार की साड़ी है, जिसे विवाह आदि शुभ अवसर पर हिंदू स्त्रियाँ पहनती हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली, बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर और संत रविदास नगर जिले में बनारसी साड़ियां बनाई जाती है। इसका कच्चा माल बनारस से आता है। महाराष्ट्रीयन साड़ी, यह साड़ी मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में पहनी जाती है। महाराष्ट्र का पैठण सर इसके लिए प्रसिद्ध है। इसको बनाने की प्रेरणा अजंता की गुफा में की गई चित्रकारी से मिलती है।
पैटर्न डिजाइन सह प्रदर्शनी केंद्र इस साड़ी के लिए बहुत

0: प्रसिद्ध है, जहाँ रेडीमेड साड़ियाँ मिलती है और ऑर्डर पर भी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। पटोला साड़ी, पटोला साड़ी स्त्रियों द्वारा धारण की जाने वाली प्रमुख साड़ियों में से एक है। यह मुख्य रूप से हथकरघे से बनी होती है, यह दोनों ओर से बनाई जाती है। पटोला साड़ी में बहुत ही महीन काम किया जाता है। पूर्णतः रेशम से बनी इस साड़ी को वेजिटेबल डाई या कलर डाई किया जाता है। डबल इकट पटोला साड़ी के रूप में जानी जाने वाली बुनकरों की यह कला अब लुप्त होने के कगार पर है। महेश्वरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी मध्य प्रदेश के महेश्वर में स्त्रियों द्वारा प्रमुख रूप से पहनी जाती है। पहले केवल सूतिया साड़ियां ही बनाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार आता गया और उच्च गुणवत्ता वाली रेशमी साड़ियां आदि भी बनाई जाने लगी। गुजरात एवं भारत के अन्य शहरों से बुनकरों के परिवारों को उन्होंने यहाँ लाकर बसाया तथा उन्हें घर, व्यापार आदि की सुविधाएं प्रदान की। चंदेरी साड़ी, चंदेरी की विश्व प्रसिद्ध चंदेरी साड़ियां आज भी हथकरघे पर बुनी जाती है। इन साड़ियों का अपना नाई एक समृद्धशाली इतिहास रहा है। पहले ये साड़ियाँ केवल राजघरानों की महिलाएं पहना करती थी, लेकिन अब यह आम लोगों तक भी पहुंच चुकी है। एक चंदेरी साड़ी को बनाने में साल भर का वक्त लगता है, इसलिए इसे बाहरी नजर से बचाने के लिए चंदेरी बनाने वाले कारीगर इसे बनाते समय हर मीटर पर काजल का टीका लगाते हैं। चंदेरी साड़ियों में पहले पुराने डिजाइन ही बनाए जाते थे, लेकिन अब इनकी डिजाइनों में भी नए नए प्रयोग हो रहे हैं। इनकी खासियत यह है कि ये दिखने में एलिगेंट तो होती है, साथ में बहुत हल्की भी होती है, इसीलिए महिलाएं इन्हें आसानी से पहन सकती हैं।
1: अभी आपने सुनी पहनावा क्रम में ये वार्ता, भारतीय महिला परिधान में साड़ी का महत्व, प्रस्तुत कर रही थी पूजा। और इस समय 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक। मौसम को देखो कितना हसीन है, मौसम को देखो कितना हसीन है, ठंडी हवाएं और भीगी ज़मीन है। याद आ रही हैं आपकी कुछ बातें, याद आ रही हैं आपकी कुछ बातें, आप भी याद कर रहे होंगे इतना यकीन है।

श्रोताओ, हम आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से समय समय पर दिवस, योजनाओं आदि से अवगत कराते रहते हैं। ऐसे ही आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, जो देश में छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने शुरुआत की। यदि कोई व्यक्ति अपने बिजनेस शुरू करना चाहता है या फिर अपने वर्तमान बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है तो वे बैंक से लोन लेकर आवेदन कर सकता है, लेकिन बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन होती है। इसके लिए गारंटी भी देनी पड़ती है, जिसके कारण ज़्यादातर लोग बैंक से लोन लेने में कतराते हैं। इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में और सुविधा में रखते हुए भारत सरकार ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना की शुरुआत की, जिससे लोगों को बहुत से लाभ होने लगे। जैसे मुद्रा स्कीम के तहत सामान्यतः बिना गारंटी के लोन प्रदान किए जाते हैं। मुद्रा योजना के तहत लोन प्रदान करने में किसी भी तरह की प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं की जाती है। मुद्रा लोन की पुनः भुगतान अवधि को 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए स्किल इंडिया योजना लागू करने के बाद प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सरकार ने उनमें कारोबार और रोजगार की भावना को विकसित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मुद्रा लोन योजना का ही शुभारम्भ किया, जिससे इच्छुक युवा अपना नया व्यवसाय शुरू कर सकें। यदि कोई भी भारतीय नागरिक मुद्रा लोन योजना का लाभ लेना चाहता है तो कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे सबसे पहले ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पास ही के किसी बैंक में जाकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए बैंक से संपर्क कर उनसे योजना का फॉर्म ले और फिर ऋण आवेदन फॉर्म को भरकर साथ में मांगे गए कागजातों को लगाएं और आपको जो भी व्यवसाय करना है उसका पूरा विवरण दें। इस प्रकार इन सभी प्रोसेस के बाद आपका ऋण मंजूर हो जाएगा, जिससे आप कहीं और से ना ऋण लेकर मुद्रा लोन योजना का पूरा पूरा लाभ उठा सकेंगे। तो ये तो थी हमारी चर्चा। अब सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत, ये मौसम भी कितना प्यारा है, ये मौसम भी कितना प्यारा है, करती ये हवाएं कुछ इशारा है, जरा समझो इनके जज्बातों को, जरा समझो इनके जज्बातों को, किसी चाहने वाले ने दिल से तुम्हें पुकारा है।

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
4: तो बहनों, अब हमारा जाने का समय हो गया है, घड़ी ने इशारा कर दिया है। तो चलते चलते बस इतना ही मैं कहूँगी, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो इसी के साथ मीनू अग्रवाल को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम निवेदित किया मीनू अग्रवाल ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। और आइए आप सुनिएगा फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। आप तक पहुंचा रहे हैं क्रिएचर फिल्म का, आवाज है अरिजीत सिंह की। इस गीत को लिखा है टॉनी कक्कर ने और इस गीत को संगीत से भी संवारा है टॉनी कक्कर ने।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल मोहम्मद अजीज की युगल आवाजों में आपकी यादें फिल्म का ये गीत। शब्द रचना समीर की थी और इस गीत को धुन से संवारा था नदीम श्रवण ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। जसपाल सिंह और कल्याण मित्रा और साथियों की आवाजें हैं। सावन को आने दो फिल्म का नाम है। इस गीत को लिखा है गुलजार गौहार कानपुरी ने और इस गीत को संगीत से संवारा है राजकमल ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। अपराह्न के 2 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले अंग्रेजी उसके बाद हिंदी में सुने जा सकेंगे, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया।
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 starred questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities.
1: श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में किसी समुदाय और धर्म का उल्लेख नहीं किया।
3: मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ।
1: सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी।
4: बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर वन। नंबर टू, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, ये उचित नहीं है।
1: संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी आयोजित की है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में कोयले का अधिकतम उत्पादन किया गया है।
5: भारत सरकार चाहते हैं मिनरल का रेट्स देश भर में एक स्थित हो। अभी अध्यक्ष जी, ये लोग नरेंद्र मोदी की सरकार को सिखाने का जरूरत नहीं है। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ नरेंद्र मोदी सरकार 12 साल से देश के हित के लिए काम किया है।
1: चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के तरुण चुघ ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह कानून खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज ने विधेयक का विरोध करते हुए आशंका व्यक्त की कि इसका संघवाद और खनिज समृद्ध राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाईवी सुब्बू रेड्डी ने खनिज संसाधनों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। ऑल इंडिया ना डीएमके के डॉ एम तम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार और बीआरएस के रवि चंद्र वड्डीराजू सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जब सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी तब विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विधायी कार्य के लिए है, लेकिन मानसून सत्र में लगातार नारे

0: बाजी और विरोध प्रदर्शनों ने सदन के कामकाज को प्रभावित किया।
1: ओपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है, क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ओपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष को लोकतंत्र या संसदीय परंपराओं में कोई विश्वास नहीं है।
2: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
3: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
4: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपया घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, आप उस पे एफआईआर करोगे? क्या न्याय है? राहुल गांधी क्या बोलते हो आप? क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: इस बीच झारखंड में विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: रांची में आंदोलनकारी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेरने की रणनीति संबंधी जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री आवास के निकट पूरे कांके रोड में ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा और रूट डायवर्जन को लेकर इस मार्ग पर आवागमन भी बाधित है। इधर भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों को जायज ठहराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की राशि और अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि के साथ साथ ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं।
6: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है। जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तो, हस्त कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्य के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
0: गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जागृत कर

0: रहा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
1: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है, आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है, ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक

0: में गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है, ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
1: स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में डेलावेयर राज्य के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने आदेश पर हस्ताक्षर कर सभी नागरिकों से भारत दिवस मनाने का आग्रह किया। इससे पहले न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और मैसाचुसेट्स ने ये आदेश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दालास प्रियेजा ने जबरदस्त भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। कोलंबिया में इस सप्ताह सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 265 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,494 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कोलंबिया में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत कोलंबिया को हर संभव देने के लिए तैयार है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मानसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
1: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: और पहंदा पलारी से नीतीश कुमार, ईशांत देवांगन, सावित्रीबाई देवांगन और तनुजाबाई देवांगन।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
0: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
1: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। स्वतंत्रता दिवस के इस पूर्व सप्ताह में सभी श्रोताओं का ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ कम चर्चित चेहरों के साथ साथ चर्चित चेहरों की भी।
0: इस क्रम में आज हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर जी के जीवन और उनके योगदान पर। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गाँव में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी लेखक, कवि, समाज सुधारक और राजनीतिक विचारक थे। उन्हें सामान्यतः वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है।
1: अब जानते हैं उनके बचपन के बारे में। बाल्यकाल से ही उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल थी। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की और बाद में वे कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन दिनों भारत अंग्रेजों का गुलाम था। बहुत से युवा देश आजादी के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे।
0: सावरकर जी ने भी लंदन में भारतीय युवाओं को संगठित किया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देने का प्रयास किया।
1: सावरकर जी ने इंग्लैंड में रहते हुए अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन को मजबूत किया और युवाओं का आह्वान किया कि देश की आजादी के लिए वे एकजुट हों और संघर्ष करें। इस दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिली।
0: श्रोताओं, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों और बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए सन 1910 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की कुख्यात सेल्यूलर जेल भेजा गया, जिसे काला पानी कहा जाता था।
1: जेल में उन्हें अत्यंत कठोर यातनाएं सहनी पड़ी। उनसे तेल का कूल्हू चलवाया जाता था, नारियल कुटवाए जाते थे और कठिन श्रम कराया जाता था। इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने लेखन और अध्ययन का कार्य नहीं छोड़ा।
0: सावरकर जी एक उत्कृष्ट लेखक और कवि थे। उन्होंने इतिहास, समाज, राजनीति और राष्ट्रवाद पर अनेक पुस्तकें लिखीं। उनकी रचनाओं में राष्ट्रप्रेम, आत्मबल और संगठन पर विशेष बल मिलता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सशक्त बनाया, लेकिन सामाजिक सुधारों पर भी उनका बहुत अधिक जोर रहा।
1: सावरकर ने जाति भेद और छुआछूत का विरोध किया। उनका मानना था कि समाज तभी मजबूत होगा जब सभी लोग समान सम्मान के साथ रहें। उन्होंने सामाजिक एकता और समरसता पर बहुत बल दिया।
0: श्रोता, उनके विचारों का भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनके समर्थक उन्हें प्रखर राष्ट्रवादी और दूरदर्शी विचारक मानते थे। 26 फरवरी 1966 को मुंबई में उनका निधन हुआ। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने इसे आत्मार्पण कहा और स्वेच्छा से भोजन और दवाओं का त्याग कर दिया।
1: वीर सावरकर भारतीय इतिहास के उन व्यक्तित्वों में से हैं जिनके जीवन में क्रांतिकारी संघर्ष, साहित्य, सामाजिक सुधार और राजनीतिक चिंतन का अनोखा संगम दिखाई देता है।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की। और आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
0: हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर आप अपना उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, एक्स, लिंक्डइन और फेसबुक पर भी आप CIT NCERT को फॉलो करके शैक्षिक गतिविधियों की ताज़ा जानकारी ले सकते हैं।
0: श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए।
1: और यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए, निर्देशों का पालन कीजिए, अपना विकल्प दीजिए और पाठ्य पुस्तकों को सुनिए। आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, तो आइए अब सुनते हैं आज के खास शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम स्वतंत्रता दिवस के पूर्व सप्ताह में चल रहे हैं, तो इसलिए हमारी प्रस्तुति विशेष रूप से आजादी पर ही केंद्रित रहेगी।
1: जी,
0: तो इस क्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद भगत सिंह के जीवन, उनके शौर्य, चिंतन और बलिदान के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और युवाओं तथा बच्चों को प्रेरित करता है कि वे पूर्ण समर्पण से देश की सेवा करें और आजादी के मूल्य को पहचानें।
2: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ आप बने हुए हैं। मैं हूँ रुचिका, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और वक्त हो गया है संगीत.com का। तो भाई, संगीत.com के ज़रिए हम आप तक कुछ खास गीत पहुँचाते

0: धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें, विचार भेजते रहें, ताकि हमें भी प्रेरणा मिलती रहे।
1: जी
0: आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि।

0: चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
1: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
0: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
2: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
3: कौन है?
4: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहां आंगन में बैठी क्या कर रही है?
3: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहां चले गए थे तुम?
4: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
3: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
4: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख,
3: ये इस शीशी में क्या है?
4: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
3: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
4: मैं इसकी पूजा किया करूंगा अमरो। ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़े।
3: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
4: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
0: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
2: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया।

0: पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
1: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
2: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
1: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुपरिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
3: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
0: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम भगत सिंह।
5: आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम।

0: बच्चों, सन 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से तो आप परिचित ही होंगे, लेकिन उससे भी 2 साल पहले यानी सन 1855 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक भीषण युद्ध हुआ था। ये युद्ध संथाल परगना और बीरभूम के आदिवासियों ने लड़ा था। अंग्रेजों के अत्याचारों से विवश होकर इन लोगों ने मारो या मरो का संकल्प लिया और अंग्रेजों से स्वतंत्र होने की ठान ली।
1: बहुत हो गया, अंग्रेजों के अत्याचार बहुत सह लिए।
2: हाँ बाबा, हम तो जैसे आदमी ही नहीं।
1: ये अंग्रेज हमें कायर और कमजोर समझते हैं, लेकिन अब हम
3: हाँ बाबा बताओ हमें क्या करना होगा।
1: आजादी। अब हमें स्वतंत्र होना है।
2: मगर बाबा, ये अंग्रेज लोग, इनके पास तो बहुत बड़ी फौज है, बड़े खतरनाक हथियार है इनके पास।
1: हमारे पास हथियार भले ही ना हो, मगर उन्हें कुचल डालने का

0: हौसला तो है, अरे हिम्मत तो है, बस इसके लिए त्याग और बलिदान चाहिए। हाँ, आजादी के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ती है मेरे बच्चों।
1: हाँ बाबा, हम ये कीमत जरूर चुकाएंगे, हम ये अत्याचार नहीं करेंगे।
2: हम तैयार हैं।
3: इस प्रकार युद्ध शुरू हुआ। संथाल आदिवासियों के पास हथियारों के नाम पर धनुष था और बाण थे, मगर इनका निशाना अचूक था। संथाल आदिवासी तो सदा से ही घने जंगलों में रहते थे, परंतु ब्रिटिश सेना का इन जंगलों में युद्ध करने का यह पहला अनुभव था, इसलिए अंग्रेजों को लड़ने में कठिनाई आ रही थी।
4: गॉड, इतने घने जंगलों में इन आदिवासियों से आमने सामने की लड़ाई लड़ना बहुत ही कठिन काम है।
5: यस सर,
4: हमें कोई और तरीका सोचना होगा।
5: सर, क्यों ना हम कुछ हाथियों को शराब पिलाकर इनकी बस्तियों में छोड़ दें?
4: गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है।
5: थैंक यू सर,
4: हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। नशे में पागल हाथी इन आदिवासियों को कुचल डालेंगे।
5: यस सर, हाथियों के सामने उनकी तीरंदाजी धरी रह जाएगी सर।
4: सिपाही।
5: यस सर।
4: हाथियों को शराब पिलाओ और फिर उन्हें इन आदिवासियों के घरों की तरफ दौड़ा दो।
5: यस सर।
6: भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भाग

0: अंग्रेजों की इस योजना ने आदिवासियों की कमर तोड़ दी, मगर नहीं टूटा तो उनका हौसला और भी मजबूत हो गया। भारत को आजाद कराने का उनका एक ही सपना उनकी आंखों में बस गया था। मुट्ठी भर मासूम आदिवासियों ने बस जैसे देश के लिए न्योछावर होने की ठान ही ली थी। आदिवासियों की टोह लगाते लगाते एक दिन अंग्रेजों की फौज एक गांव में जा पहुंची।
1: अरे जागो, अरे जागो, अरे जागो, अरे अरे दुश्मन आ गया, दुश्मन,
2: हम तैयार हैं बाबा।
1: अरे दुश्मन हमें पकड़ने आया।
2: अरे दुश्मन हमें नहीं पकड़ सकेगा।
1: अरे चलो चलो अपने अपने घरों में और लेकर दुश्मन की छाती पर तीर चलाना शुरू करो।
2: चलो चलो
3: चलो
2: चलो चलो चलो चलो।
0: गांव वालों ने आओ देखा ना ताओ सिपाहियों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। सिपाहियों ने गोलियों की भयानक बरसात कर दी। कई आदिवासी न्योछावर हो गए। मगर उस गांव में एक घर ऐसा था जहां से तीरों की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
4: सिपाहियों, इस घर को चारों तरफ से घेर लो और पूरे जोर से हमला करो।
5: यस सर।
0: जब बहुत देर तक गोलीबारी हो चुकी तो फौज के कप्तान ने उस घर के बाहर से आवाज लगाकर कहा,
4: सभी आदिवासी जो इस घर में छुपे हुए हैं

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम सारे जहां से अच्छा। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
1: जगबंधु
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 4 बजे हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी, कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 4 बजने को हैं। अब हमारी संध्याकालीन दूसरी सभा आरंभ होती है, कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के साथ, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: 102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो, और यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हो गया है आपका और हमारा फेवरेट शो, वीकली शो संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस खास एपिसोड के साथ हाजिर है शाहिद, और आज के हमारे खास मेहमान हैं मेजर मानिक एम जोली, सेना मेडल से सम्मानित रिटायर्ड ऑफिसर है, इंडियन आर्मी के वेटरन है, गोरखा राइफल्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस इनका एक्सपीरियंस है, फील्ड कमांडर, कॉर्बेट इनोवेटर एंड मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट, फाउंडर हैं नेत्रम डिफेंस रिव्यू के मेजर मानिक एम जॉली। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो पर संदेश टू सोल्जर्स में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शायद, बहुत अच्छा लगा आपसे आज फाइनली बात करके।
0: जी सर, हमें भी बहुत बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं, और सर आपने अपना समय निकाला, कीमती समय आपने निकाला है और आप आए हैं हमारे स्टूडियो में। सर बहुत बहुत आपका एक बार फिर से स्वागत हम करना चाहेंगे, और जैसा कि हमने आपको आपके बारे में सर थोड़ा सा बताया है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, लेकिन जो बातचीत अभी इंटरव्यू से पहले आपसे चल रही थी तो उसमें मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ पता लगी, और लग रहा है कि ये शो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सर हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरीके से ये शुरुआत होती है एक आर्मी ऑफिसर बनने की तरफ, जो एक एक यंग कैडेट जाता है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस होता है और क्या महसूस करता है, वो क्या जोश, वो जज्बा, वो नेशन और एक देश के लिए एक जज्बा होता है जब जाते हैं?
1: तो शायद सबके अपने अपने रीजंस होते हैं आर्मी ज्वाइन करने के, लेकिन एक कॉन्स्टेंट फिक्स रीजन सबका ये होता है कि हर फौजी का अपने देश के प्रति सर्विस करने का, माँ भारती के लिए सेवा करने का एक पक्का जज्बा फिक्स रहता है। बाकी सब एक्सक्यूज हैं, पर आप कभी भी ये नहीं पाएंगे कि एक फौजी इससे हट के जवाब दे कि हाँ मैं देश की सेवा नहीं करना चाहता था, कोई और कारण था।
0: जी
1: तो ये हमारा कांस्टेंट है। तो मैं भी बचपन में, मेरे नाना जी भी आर्मी में थे।
0: अच्छा।
1: तो मेरी माँ ने बचपन से ही मुझे यही कहा था तुमने फौज में ही जाना है,
0: यानी कि ऑलरेडी आपको जो है ग्राउंड बना हुआ मिल गया था, बस
1: तो,
0: आपने उस पर
1: या तो
0: अपना सफर शुरू किया।
1: यस, जैसे मैंने 6th, 7th, 8th क्लास के दौरान
0: जी
1: तैयारी शुरू करी एनडीए की, तो 12th खत्म होने से पहले मैंने एनडीए क्लियर कर लिया था। तो स्कूल के एकदम बाद फिर मैं एनडीए चला गया। मैं रोहतक का रहने वाला हूँ
0: जी,
1: तो वहाँ से मेरी क्लास से हम 5 गए थे, तो वो शहर में भी थोड़ा इट हैज़ दी वर्ल्ड रिकॉर्ड, रोहतक सिटी का रिकॉर्ड है मैक्सिमम ऑफिसर्स प्रोड्यूस करने का
0: हरियाणा में।
1: तो बस हमारे यहाँ काफ़ी ट्रेंड होता है आर्मी में जाने का, आर्मी नेवी एयरफोर्स मतलब।
0: जी सर, आपने मेजर मानिक एम जॉली हमारे साथ जो सेना मेडल से सम्मानित हैं सर, इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको सेना मेडल से सम्मानित किया गया और दूसरे अवार्ड भी आपको प्रदान किए गए हैं, साथ ही आपको पीएम मोदी का मिशन इनोवेशन नेशनल चैंपियन का भी अवार्ड दिया गया। उसके अलावा ऐसे बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं आपकी जिसमें आपके पूरे करियर में लगातार कुछ ना कुछ आप हासिल करते रहे अपनी डेडिकेशन से, अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से। उसके अलावा हम और भी और चीज़ें हैं जो हमें आपके बारे में पता लगी हैं, क्योंकि आप कमीशन हुए थे गोरखा रेजिमेंट में 1999 में, फिर उसके बाद आपने मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम किया और आपने करीब दस साल आपने वहां पर अपनी सर्विसेज प्रदान की, और काउंटर इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर।
1: जी।
0: तो ये बहुत ही एक ना वैरायटी वाला और बहुत ही अलग अलग तरह के आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं एक आर्मी ऑफिसर, फिर उसके बाद आपने जम्मू कश्मीर में काफी लंबा समय दिया है, सर्व किया है आपने, और जिस टाइम पर आप कमीशन हुए उस टाइम पर कारगिल वॉर का मेरे ख्याल से टाइम था।
1: बिल्कुल, हम जब कमीशन हुए 99 जून में, कारगिल वॉर चल रहा था।
0: अच्छा।
1: तो जब हमारी कमिशनिंग परेड थी हम सारे बहुत एक्साइटेड थे कि अब लड़ाई में जाने
0: हम भी जाएंगे। अच्छा।
1: मुझे याद है कि स्टार न्यूज ने एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट को भेजा था हमें इंटरव्यू करने के लिए।
0: ओके।
1: और जो जो लड़के इन्फेंट्री में गए थे, जो वहां पे लड़ाई के लिए जा रहे थे, यूनिट्स थी, तो उनका उन्होंने हमारा अलग से इंटरव्यू लिया था।
0: अच्छा।
1: कि आप लोग लड़ाई में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? तो हम सारों का एक ही जवाब था, बहुत एक्साइटेड है, जल्दी भेजिए। लेकिन जब तक हम कमीशन हुए एक्चुअली सीज फायर अनाउंस हो गया।
0: अच्छा।
1: तो ये हम अपना, ठीक है, देश के लिए युद्ध ना होना एक तरह का अच्छी, लेकिन पर्सनली आपस में ये है कि हम अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि मैं उस लड़ाई में लड़ने का मौका नहीं मिला।
0: मतलब एक फौजी है और वो चाहता है कि मैं किसी तरह से मैं लड़ाई का हिस्सा बनूं।
1: इससे बड़ा टेस्ट क्या है हमारे लिए कि लड़ाई में लड़ने का मौका मिले।
0: बिल्कुल।
1: तो वो यूं लगा लीजिए 2-3 हफ्ते से हम मिस कर गए थे।
0: अच्छा। और सर ये भी है कि उस कारगिल वॉर में जो लोग, जो फौजी

0: शामिल थे, उस वॉर का हिस्सा थे, जिसमें से काफ़ी सारे जो फौजी थे उनको शहादत भी हुई, तो वो आपके इमीडिएट सीनियर भी थे, मतलब आपसे उनकी अच्छी खासी जब आप ट्रेनिंग में थे तब उनसे मिलते थे, बातचीत होती थी।
1: बिल्कुल, बहुतों बहुतों को हम बहुत अच्छे से जानते थे, हमारा वो हमारे से एक या दो और सीनियर्स थे, काफ़ियों को हम NDA में मिले थे, कुछ को IMA में जानते थे, जो फेमस कैप्टन विजयन थापर थे
0: जी जी
1: वो मेरे साथ वाले कमरे में रहते थे, और मुझे याद है मैंने उनसे जब वो पास आउट होके जा रहे थे, वो 6 महीने पहले पास आउट हुए थे,
0: अच्छा,
1: तो मैंने उनसे, उन्होंने मेरी कैसेट ले रखी थी माइकल जैक्सन की,
0: अच्छा,
1: तो मैंने कहा सर कैसेट तो वापस कर जाओ, कहते अरे यार जब नेक्स्ट मिलेंगे तब दे देंगे, मतलब आज भी वो बात याद है। उसके बाद फिर तो हमें यही पता लगा कि उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया
0: जी,
1: सुमित रॉय, विक्रम बत्रा, ये सारे हमारे सीनियर्स थे,
0: अच्छा,
1: और मतलब देश इनके बारे जितनी बात करें उतनी कम है, इतनी यंग एज पर। आप किसी भी वॉर में देखिए, इंडियन आर्मी के यंग ऑफिसर्स की जो रेशो ऑफ सेक्रीफाइस है वो किसी भी देश से ऊपर मानी जाती है, क्योंकि जब हम लोग पहुंचते हैं
0: जी
1: तो सारे टैक्टिक्स एक तरफ, हम कहते हैं हम ही चार्ज करेंगे, आप हम अपने जवानों को सभी यही बोलते हैं मेरा पीछा मेरा, तो इसीलिए ये एक प्रिंसिपली हमारी आर्मी बहुत, ना केवल एथिकली, बहुत
0: एथिकली और साथ ही साथ
1: वेल स्ट्रक्चर्ड एंड प्लेस्ड, लेकिन उसका यह भी कारण है कि जितने यंग ऑफिसर्स जाते हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं होता तुम आगे चलो हम तुम्हारे हम कहते
0: हम आगे चलेंगे,
1: हम आगे चलेंगे तुम हमारे पीछे चलो।
0: क्या बात है, ये जज्बा तो सर काबिले तारीफ है। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां और यादगार किस्से हैं जो हम मेजर मानिक के साथ डिस्कस करेंगे आज के संदेश टू सोल्जर्स में। और साथ ही एक चीज और आपको मैं बता दूंगा कि जिसमें हम आगे बात करेंगे कि मेजर मानिक ऑथर भी हैं और इन्होंने एक किताब भी लिखी है। तो हमारे साथ है मेजर मानिक एम जॉली, इंडियन आर्मी से सेना मेडल से सम्मानित। आज के रहेगी बात जारी संदेश टू सोल्जर्स में।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद और मेरे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान मेजर मानिक एम जॉली, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन, गोरखा राइफल्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस फील्ड कमांडर, कॉर्पोरेट मिलिट्री इंटेलिजेंस, कॉर्पोरेट इनोवेटर, मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट, नेत्रम डिफेंस रिव्यू के फाउंडर हैं और साथ ही सेलिब्रेटेड ऑथर हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं, लीडरशिप कोच हैं और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में कश्मीर में इन्होंने ट्रूप्स को भी कमांड किया है। हम एक बार फिर स्वागत करेंगे मेजर मानिक जॉली का। सर बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर संदेश टू सोल्जर्स में।
1: थैंक यू सर। थैंक यू
0: सर। मैं आपके बारे में जब बात करना शुरू करता हूं तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है लेकिन उसके बारे में हम साथ साथ बात करते रहेंगे। पहले सर मैं आपके वो जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं उनके बारे में जानना चाहूंगा। आपको पहला सेवा मेडल से सम्मानित किया गया जो गैलेंट्री अवार्ड कहा जाता है आर्मी का, तो वो किस तरह से और किस उपलक्ष्य में आपको दिया गया?
1: ये मेरी नौकरी का पहला दूसरा साल ही था। मैं यंग कैप्टन था और कुपवाड़ा में हम लोग तैनात थे। मेरी गोरखा रेजिमेंट यूनिट का हिस्सा था मैं
0: जी।
1: तो मेरी जो यूनिट है फर्स्ट बटालियन फोर्थ गोरखा राइफल्स, तकरीबन 200 साल पुरानी हो जाएगी थोड़े दिन में।
0: ओके।
1: वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट्स। तो बहादुरी और ड्यूटी हमारे रग रग में तैयार किया जाता है। तो उसमें हमारी यूनिट ने इतना अच्छा परफॉर्म करा था, हमने 1.5 साल में तकरीबन 100 टेररिस्ट मारे थे।
0: ओके।
1: तो यूनिट को भी साइटेशन मिला था। तो हमने बहुत ऑपरेशंस करे, उनमें से एक ऑपरेशन में मुझे अवार्ड मिला था जिसमें टेररिस्ट ने हम पर हमला किया था जंगल में और उन्होंने हमारे भी एक सैनिक शहीद हो गया था। फिर उन टेररिस्ट को मार के अपने शहीद सैनिक की बॉडी वापस लाने के लिए मुझे सेना मेडल दिया गया था।
0: तो ये पूरा एक मिशन रहा होगा जिस तरीके से आपने बताया कि ये पूरा एक ऑपरेशन रहा होगा। हाँ तो सर वो तो बड़ा टफ और बड़ा ही खतरनाक रहा होगा, कुछ बताइए उसके बारे में।
1: देखिए जो ये ऑपरेशन है आज इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, मैं और यही बात आपके लिसनर्स को बताना चाहता हूँ
0: जी
1: कि हम सब अपने घर में बैठे हैं, FM सुन रहे हैं, बारिश का मौसम है, चाय पकौड़े खा रहे हैं
0: जी,
1: पर यही टफ और डेंजरस मिशन इस टाइम लाखों सैनिक कश्मीर के जंगलों में और नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में कर रहे हैं,
0: अभी भी कर रहे हैं अपनी
1: दिस वेरी मोमेंट एज वी आर स्पीकिंग, डेली करते हैं 365 दिन। तो एक सोल्जर की लाइफ किस सेकंड आपको जंगल में कहाँ टेररिस्ट मिल जाए कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कभी कभी आप महीनों सालों भटकते रहते हैं, आपका एनकाउंटर नहीं होता, कभी आपके एक महीने में 4 एनकाउंटर हो जाते हैं। तो इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी जीरो बट पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई। सो व्हाट हैपेंस, आप जाते हैं आपको एनकाउंटर हो गया, इसमें बड़ा चांस है आपने पहले उनको देख लिया, उन्होंने आपको पहले देख लिया, वो फायर करके भागना चाहेगा, वो रुक के लड़ना चाहेगा, बहुत

0: इतने ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं, वो ऊपर है आप नीचे हैं आप नीचे हैं, तो इतने फैक्टर डिसाइड करते हैं उस इन दैट वेरी मोमेंट कि व्हाट विल बी द आउटकम, कि
1: और
0: इस लड़ाई से कौन कैसे निकलेगा।
1: तो सर, जब मिशन पर निकलते हैं सोल्जर्स हमारे निकलते होंगे, तो वो ये पता होता होगा कि या तो मतलब जीत कर वापस आएंगे मार करके, या फिर
0: या शहीद हो,
1: शहीद हो करके।
0: ये फौज का प्रिंसिपल है हमारे यहाँ। देर इज नो रनर्स अप, यू नो, ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। इंडियन आर्मी में हमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है, विक्ट्री और
1: और डेथ।
0: सेक्रीफाइस। सो आप, अगर आपको कहा गया है, और कारगिल वॉर अगेन, फिर से जो हम पहले भी बात कर रहे थे, जो यंग
1: जी
0: ऑफिसर्स इतने
1: जी
0: सेक्रीफाइस हुए, क्योंकि ट्रेनिंग डे पहले दिन, हम 16 साल के होते हैं जब एनडीए ज्वाइन करते हैं,
1: अच्छा
0: उस दिन से लेकर जब तक 4 साल ट्रेनिंग है, कमीशन होते, एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि अपने देश के लिए, अपनी फौज के लिए, अपनी यूनिट के लिए, आपके ट्रेंच में जो साथी है, उस बड़ी के लिए लड़ाई लड़नी है।
1: उस बड़ी के लिए
0: तो आप उसके लिए लड़ते हो, वो आपके लड़ता है, ऐसी टीम बनती है।
1: क्या बात है सर, मतलब वो आपके लिए जान कुर्बान के लिए
0: या
1: तैयार है और आप
0: या
1: उसके लिए, एक दूसरे के लिए।
0: यही कॉन्फिडेंस है जो आर्मी लीडर्स को कॉर्पोरेट लीडर्स से इतना फर्क बनाता है, क्योंकि एक एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है।
1: जी
0: उस जवान को पता है मेरा जो ऑफिसर है कभी ऐसा ऑर्डर नहीं देगा कि मेरी जान खतरे में आए।
1: क्या बात है सर,
0: अगर
1: ये
0: अगर खतरा होगा तो खुद पहले जाएगा। और एक ऑफिसर को मालूम है कि जब तक मैं हूं, ये मेरे जवान मेरे से आगे लड़ने को तैयार है। तो जब ये इस तरह की,
1: ये
0: यू नो,
1: जो जज्बा है
0: हाँ जी, जज्बा रहता है, तो सब एक से बढ़कर
1: एक दूसरे के
0: एक
1: लिए,
0: दूसरे के
1: अपने
0: लिए
1: साथी के लिए, बड़ी के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं
0: बिल्कुल, और
1: सर,
0: कॉन्फिडेंस रहता है कि
1: कॉन्फिडेंस रहता
0: मुझे
1: है।
0: अपने सुपीरियर के ऑर्डर में पूरा फेथ है कि ये कभी ऐसा नहीं करेगा कि मेरी जान खतरे में। हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम दुश्मन को मारने के लिए लड़ रहे हैं। वो कहते हैं ना, गिविंग लाइफ फॉर योर कंट्री इज एन ऑनर, तो लेट दैट ऑनर बी ऑफ एनिमी।
1: क्या बात
0: ठीक
1: है,
0: है, वो,
1: क्या बात।
0: हाँ, तो हमारा काम है जीतना, दुश्मन को मारना। तो एक बहुत ही अलग लेवल की ट्रेनिंग और कैपेबिलिटी डेवलप करी जाती है आर्मी में,
1: जी
0: इसी कारण वो ऐसे ऑपरेट करती है। अगर आप उस ढर्रे को कहीं और अप्लाई करना चाहेंगे जहाँ पे लाइफ एंड डेथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर वो ऑपरेट वो नहीं एक सक्सेसफुल होता।
1: नहीं हो सकता सर, वही चीज है कि जैसे आपने कहा कि ट्रेनिंग कितनी टफ होती है एक आर्मी ऑफिसर की, लेकिन उस टफ ट्रेनिंग के बावजूद भी वो जो जज्बा है, शायद वो उससे भी ज्यादा भारी है उस पर, उस ट्रेनिंग पर वो जज्बा, कि वो जो अपने नेशन, अपने वतन के लिए, देश के लिए, अपने बड़ी के लिए, अपनी यूनिट के लिए।
0: देखिए, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। वही भी हम एनडीए जाए 16-17 साल, इट्स इसको बोलते हैं इम्प्रेशनेबल एज। 16-17 साल में आप दुनिया को समझना शुरू करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अब जो लोग कॉलेज जाते हैं, उनके चारों तरफ, फॉर एग्जाम्पल आज का देखते हैं, इंस्टाग्राम पे वायरल रील बनाना,
1: बिल्कुल सर, सोशल
0: स्टूडियो
1: मीडिया पूरा
0: मूवी हीरो,
1: पूरा एकदम।
0: यू नो, हमारे आसपास क्या होता था? हम जहाँ ट्रेनिंग करते थे वहाँ लिखा था, एक गोली एक दुश्मन। जो हमारे कमरों, किल डेथ बिफोर इट किल्स यू, आई विल डाई फॉर माई कंट्री। चारों तरफ आप
1: वो
0: ऐसे,
1: मोटिवेटेड
0: हाँ,
1: मतलब स्लोगन्स आपको मिल
0: या
1: रहे हैं।
0: आप ऐसे एनवायरनमेंट में होते हो कि दिन रात आप एक ही चीज सोचते हो कि मैं इस देश के लिए बना हूं, और अगर कभी जरूरत पड़ेगी,
1: तो मैं अपनी जान कुर्बान करूंगा
0: बिल्कुल विदाउट अ डाउट,
1: विदाउट अ डाउट।
0: ये
1: क्या
0: तो
1: बात है
0: इसमें कोई हेजिटेट नहीं करेगा कभी।
1: सर, बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं आपसे आगे भी करूंगा। अभी एनडीए के बारे में आपसे पूछूंगा कि
0: हाँ जी,
1: आपने उस ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या, जाहिर है वो वक्त बड़ा ही मेरे ख्याल यादगार होता है बडीज के साथ, और इंटरेस्टिंग भी, और कुछ शरारतें भी जरूर होती हैं उस जमाने में,
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो एज ऐसी
1: तो
0: होती है और टाइम ऐसा
1: और
0: होता
1: टाइम
0: है।
1: ऐसा होता है।
0: हाँ
1: तो हम अपने लिसनर्स को यहाँ बताना चाहेंगे कि आप हमें मैसेज करें, मैसेज बहुत सारे आ चुके हैं सर, मैं आपको बता दूं, और एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप हमें मैसेज करके हमारे आज के गेस्ट मेजर मानिक एम जॉली से सवाल कर सकते हैं। नंबर है 9868107070। सर, मैं सोचता हूं कि आगे बढ़ूं तो कुछ मैसेजेस तो मैं अभी ले लूं। ये असम से सर मैसेज आया है, गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, ये हितेंद्र दास हैं सर, आपको भी और हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए हितेंद्र। और उसके बाद मैसेज आया है, स्वतंत्रता दिवस का सब सोल्जर भाइयों का हमारा सल्यूट, हमारे भारत माँ की रक्षा सभी क्षेत्र में उनके बलिदान क्या श्रेष्ठ जीवन का संदेश है। कर्नाटका राज्य विजयपुर डिस्ट्रिक्ट आराकेरी गांव से, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, आरकेडी, पंडित चन्नप्पा सरवाड़ का सर ये मैसेज है।
0: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद आपको भी।
1: और सर ये मैसेज है, हाय, आई एम अजय अहिरवार फ्रॉम मध्य प्रदेश, क्लास 12 सर ये स्टूडेंट है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, वॉट थिंग्स शुड आई रिमेंबर ड्यूरिंग प्रिपेरेशन एंड फॉर SSB इंटरव्यू, मेनली SSB गाइडेड फॉर सिविलियन। और अजय अहिरवार सर मध्य प्रदेश है सर, इनको कुछ आप गाइड करना चाहेंगे।
0: तो शायद वैसे तो ट्रेनिंग के लिए मतलब बहुत लंबा होता है सर, पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो
1: जी

0: अक्सर लोग गलती करते हैं, वो ट्रेनिंग की प्रिपरेशन करके, इंटरव्यू की तैयारी करके कुछ और बन के दिखाना चाहते हैं, और वो पक्का रेसिपी टू फेलियर है।
1: अच्छा
0: आप इंटरव्यू में जैसे हैं 100% वैसे रहिए, और वो तो फिर इंटरव्यू पर है, वो आपको शेयर, दैट इज,
1: ठीक
0: उसको कोई
1: ठीक
0: गारंटी नहीं कर सकता, पर अगर आप कुछ और बनने की कोशिश करेंगे तो
1: जी
0: डेफिनेटली थ्रू नहीं होंगे। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को कायम रखें,
1: जी
0: इंटरव्यू की
1: जो आप
0: तैयारी में
1: हैं,
0: जो आप हैं।
1: क्या बात
0: अगर
1: है।
0: आपको पिक्चर पसंद है, आप बोलिए मुझे पिक्चर देखना पसंद है, ये मत
1: अच्छा
0: बोलिए
1: अच्छा
0: मुझे
1: अच्छा
0: बुक्स पढ़ना पसंद है, क्योंकि टेबल के उधर जो बैठे उसने बहुत
1: जी
0: बुक्स पढ़ी है, पकड़ लेगा आपको।
1: तो आपको जो आप हैं वही दिखाएं
0: बिल्कुल
1: वहां पर।
0: बिल्कुल
1: सर एक और मैसेज है, जय हिंद सर जी, जय हिंद मेजर साहब, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से मैसेज कर रहे हैं सर ये। और सर ये हैं
0: आपको
1: संदेश
0: भी जय हिंद।
1: जी, शो बहुत खूबसूरत शुरू है जी, दिल को छू लेने वाली बहुत खूबसूरत जानकारियां मिल रही हैं। शाहिद जी नमस्ते, मानिक सर नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। यश शिंदे हैं सर ये मुंबई से, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए, जय हिंद। और सर ये एक और मैसेज आ गया है, जय हिंद मेजर साहब, कारगिल वॉर तो हमने नहीं देखा है, मूवी में देखा, लेकिन आपके जरिए हम सुनते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। एडवांस 80th हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस, वंदे मातरम। रोहित मेहर हैं सर ये बुदापाली विजयपुर बारगढ़ ओडिशा से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, सबको जय हिंद।
1: और सर सभी लोग इस वक्त जो है देशभक्ति के जो ना उसमें सराबोर हैं, जुनून में, जोश में, क्योंकि 15 अगस्त बस अब परसों नजदीक ही है, और ये स्वतंत्रता दिवस जो हमें याद दिलाता है कि जो कुर्बानियां दी गई इस देश की आजादी के लिए, उन सबको हम याद करते हैं। तो यहां पर हम आगे बढ़ेंगे सर, हम बात करेंगे अब एनडीए की। आपने एनडीए में जब आप आए तो क्या माहौल था वहां पर, नया नया एक्सपीरियंस कैसा लगा एक 16 साल के जब मानिक वहां पर आ रहे थे तो?
0: हाँ जी बिल्कुल, बहुत देखिए, एक तो आप घर से पहली बार बाहर गए होते हैं, और घर से पहली बार बाहर जाके आप किसी रिजॉर्ट में रह रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन आप
1: अच्छा
0: बिल्कुल एक वन ऑफ द टफेस्ट मिलिट्री एकेडमी में चले गए,
1: जी
0: जहाँ पे डिसिप्लिन इज द हाईएस्ट।
1: बिल्कुल
0: आपका आपसे 6 महीने सीनियर वो आपके लिए भगवान की तरह है, वो जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: फिजिकली इट्स वेरी स्ट्रेनिंग। वैसे तो मैं स्पोर्ट्स में था, लेकिन
1: अच्छा
0: एनडीए का अलग लेवल होता है, तो शुरू में आपको रूटीन इज वेरी टाइट, फिजिकली इतना डिमांडिंग है,
1: जी
0: तो एक बार तो हर कोई हिल जाता है ना।
1: बिल्कुल, क्योंकि आपने जैसे कहा स्पोर्ट्स में तो आप थे, लेकिन वो स्पोर्ट्स अलग है जो हम स्कूल में करते हैं या
0: या
1: आपने,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जो आप एकेडमी में कर रहे हैं।
0: बट हमारे स्कूल में बाई चांस स्पोर्ट्स की अच्छी लेगेसी थी, तो मेरे को फिजिकली तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई परफॉर्म करने
1: जी
0: में, बट ये है कि शुरू में जाके, क्योंकि हम अपने घर पे रहे थे, कई बच्चे सैनिक स्कूल से आते हैं, उनको थोड़ी
1: जी
0: आदत होती है,
1: ओके
0: हम पहली बार घर से आए थे, मुझे याद है कि पहले 1-2 हफ्ते में घर की बहुत याद आती है, क्योंकि
1: जी
0: चारों तरफ हर कोई आपको खाने को दौड़ता है एनडीए में, और घर पे तो जो भी है आपको
1: बिल्कुल
0: सारी
1: जाहिर है
0: सहूलियत
1: प्यार
0: है,
1: से,
0: प्यार है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो मैं एक बार काफी दुखी बैठा था अपने रूम में, तो मेरे एक सीनियर आए, वो सीनियर मोस्ट थे, 6th टर्म में थे वो, तो क्या हुआ, मैं कहा सर घर की बहुत याद आ रही है, तो कहते चिट्ठी लिखो,
1: अच्छा
0: तो मैं आपको बस बता रहा हूँ बस सोच कैसे होती है, मैं कहा सर चिट्ठी तो लिख चुका, कहते इधर आओ, मुझे अपने रूम में लेके गए,
1: जी
0: अपना परफ्यूम निकाला अच्छा सा, मेरे पे स्प्रे करा, कहते बस अब खुश हो जाओ, यही खुशी है, तो वही तुम्हें ऑर्डर है खुश होने का, मैं ठीक है सर। तो और उसके आई थिंक, बट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वी हैड वाज, हमारे टाइम वहां पे मेजर साहब पिक्चर की शूटिंग हुई थी,
1: अच्छा मेजर साहब अमिताभ बच्चन
0: हाँ जी,
1: और अजय देवगन जी
0: तो उस थोड़े महीनों के लिए एकेडमी का में इतने फनी इंसिडेंट्स हुए थे, आई
1: अच्छा तो कई महीने वो शूट चला था।
0: थिंक दो तीन महीने तो चला था मेरे ख्याल से, तो
1: अच्छा
0: उसमें क्या हुआ कि 1-1.5 महीना तो चला था फॉर श्योर,
1: जी
0: अकेडमी ने मना कर दिया कि हम अपने कैडेट शूटिंग के लिए नहीं देंगे,
1: ओके
0: तो जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स थे वो बॉम्बे से यंगस्टर्स को लेके आए, उनको तो 150 चाहिए थे, उन्होंने हमारे जैसी यूनिफॉर्म पहनाई
1: ठीक है
0: और उनसे परेड वेरेड कराते थे और उनके शूटिंग वूटिंग के लिए यूज करते थे,
1: ठीक है
0: लेकिन अब अकेडमी में ऐसा हो गया जब भी आपको कोई सीनियर पकड़े इधर आओ, जूनियर यू, हम तो मुंबई से आया है तो शूटिंग वाला
1: अच्छा
0: है, तो काफी क्योस मचा हुआ था उन दिनों, थोड़ी देर में सब सॉर्ट आउट हो गया, और फिर एक दो सीन थे, जैसे क्रॉस कंट्री का सीन है जिसमें एक पहाड़ी के ऊपर वो दिखाते हैं अजय देवगन फर्स्ट आया,
1: अच्छा
0: तो उसमें उन्होंने हमारे कैडेट्स वगैरह को बुलाया था कि पीछे आप लोग भागना, लास्ट में ये आगे आके फर्स्ट आ जाएंगे,
1: ओके हीरो मतलब हीरो बन
0: हाँ
1: जाएंगे ठीक है
0: हमारे कैडेट थोड़ा दिल पे ले गए कि हमारे रहते कैसे फर्स्ट आ
1: अच्छा
0: जाएगा, वो आई थिंक 10-15 बार शूट करना पड़ा, हर बार हम आगे आ जाते थे कोई ना कोई, तो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत, इट वॉज वेरी फनी, तो
1: अच्छा
0: हम लोग आई मीन काफी क्लोजली शूट, मैं भी एक दो किसी शूट में हूँ भीड़ में कहीं पे दिख रहा हूँ इधर उधर,
1: अच्छा हम सर मैं मूवी देखूंगा आपको देखने के
0: हाँ
1: लिए
0: जी प्लीज, तो काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी और
1: जी
0: उसका एक

0: गाने भी एक्चुअली इस मूवी के गाने भी बहुत अच्छे थे सभी।
1: हाँ गाने सर बड़े सुंदर गाने थे, और सिंदूर सुंदर हीरोइन भी थी इसके अंदर,
0: या
1: सोनाली बेंद्रे।
0: बिल्कुल
1: तो सर
0: बिल्कुल
1: वहां पर गाने भी शूट हुए होंगे उसी एकेडमी में?
0: गाने शूटिंग हमने कभी देखे नहीं। आई थिंक
1: अच्छा
0: हमारे कुछ सीन्स वगैरह मैस के, पीटी ग्राउंड, क्रॉस कंट्री, मिलिट्री
1: ये हुए।
0: हॉस्पिटल, ये सब होते थे। लेकिन और सोनाली बेंद्रे तो पूरी एकेडमी की फेवरेट थी।
1: अच्छा
0: मतलब आप आई डोंट नो लेट 90s में,
1: जी जी
0: एंड
1: जी
0: स्टिल टुडे शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस
1: यस
0: में।
1: ऑफ कोर्स
0: और वो एक्टिंग एज अ पर्सन शी इज सो नाइस, जिनसे मिली भी सब इतनी तारीफ करते थे कि इतने अच्छे से बात करती हैं। तो पूरी एकेडमी बस सारी
1: दीवानी
0: दीवानी
1: थी।
0: थी, कहीं जहां बहुत ही देखने भाग जाते थे।
1: तो मैंने तो सर आपसे बात करते करते ना वो एक सॉन्ग भी निकाल लिया है, तो उसके बारे में बताइए सर कुछ, कोई किस्सा किसी शूट के दौरान आपके सामने आया हो, आपकी टीम

0: कुछ कोई किस्सा किसी शूट के दौरान आपके सामने आया हो, आपकी टीम के सामने आया हो?
1: हमें बस एक बार एक मिलिट्री हॉस्पिटल का वहां पे सीन है
0: अच्छा
1: मूवी में, तो जैसे ही होता था तो सारी एकेडमी में बात हो जाती, सोनाली बेंद्रे मिलिट्री हॉस्पिटल में आई है,
0: अच्छा
1: तो 1 घंटे में कई मेरी टांग दर्द हो रही है, मेरी हाथ दर्द हो रहा है, वहां पे पहुंच गए बहुत सारे रिपोर्ट करने, सबको वापस भगा दिया था, तो
0: अच्छा
1: सब चलता रहता था वहां पे।
0: जी, तो
1: हाँ
0: अजय देवगन की कभी कोई शूट आपके आसपास आपके सामने कभी हुआ, क्योंकि एकेडमी में ही शूट चल रहा था?
1: जी, वो ड्रिल ड्रिल में पीटी में कई बार आते थे, बट आई मीन मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, पर जो लेवल ऑफ फिटनेस, जो लेवल एनडीए कैडेट्स का होता है
0: बिल्कुल
1: वो फिल्मी हीरोज का नहीं होता, तो अक्सर मतलब थोड़ा सबड्यू करके, थोड़ा खर्च के उनसे करवाया जाता था
0: अच्छा,
1: ताकि फिल्मी इफेक्ट पूरा दिख जाए।
0: बिल्कुल
1: हाँ
0: रीटेक्स के साथ
1: हाँ
0: वो
1: जी,
0: सब ठीक से हो
1: पर मैं
0: जाए,
1: आपको ये बता रहा हूँ, हमें बहुत अच्छा महसूस होता था, मतलब एक तरह का कॉन्फिडेंस होता था
0: कॉन्फिडेंस
1: कि बॉलीवुड वो बनने की कोशिश कर रहा है जो हम हैं,
0: जो आप हैं,
1: जो एक कॉन्फिडेंस आता
0: बिल्कुल
1: है कि ये मतलब वो एक्टर्स हैं, ऑब्वियसली वो फौजी नहीं है, वो अंडर
0: बिल्कुल
1: ट्रेनिंग नहीं है, पर हमें बहुत कॉन्फिडेंस आता था देख के कि हमने जो अचीव किया है, जो हमारी पर्सनालिटीज हैं, जो हमारा फिटनेस है,
0: फिटनेस है।
1: वो लोग एज एन एक्टर बनने की कोशिश करते हैं टू मेक अ गुड मूवी, सो वो कॉन्फिडेंस आपके साथ सारी लाइफ रहता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो मेजर साहब, मैंने यहां पर ये उस फिल्म का जो आपके साथ यादों में जुड़ी हुई है,
1: बिल्कुल
0: मेजर साहब, उसका ये खूबसूरत ट्रैक निकाल लिया है और आपकी पसंद का भी है। मेजर मानिकम जौली हमारे साथ है, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन। आप बने रहे हमारे साथ संदेश सोल्जर्स में और मैसेज करते रहे।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। शाहिद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान मेजर मानिक एम जोली। इंडियन आर्मी वेटरन हैं, सेना मेडल से सम्मानित हैं और गोरखा राइफल और मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहे हैं। फील्ड कमांडर, कॉर्पोरेट इनोवेटर और मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट हैं। फाउंडर हैं नेत्रम डिफेंस रिव्यू के और सेलिब्रेटेड ऑथर भी हैं। टीवी पैनलिस्ट हैं, लीडरशिप कोच हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बार बार अगर बताना चाहूँ तो भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो मेजर साहब, हम बात कर रहे थे सर आपके एनडीए के दौर की, वो बड़े इंटरेस्टिंग किस्से आपने जो सुनाया और हमने गाना भी वो सुना, सोनाली बेंद्रे पर और अजय देवगन पर जो पिक्चराइज किया गया। हाँ। आपने उनको देखा कि वो शूट के दौरान क्या क्या वहाँ पर इंसिडेंट्स हुआ करते थे। तो मैं आगे बढ़ूँ, मैं सोच रहा हूँ कि पहले क्यों ना मैसेजेस ले लेता हूँ, क्योंकि हमारे लिसनर इंपॉर्टेंट हैं, वो इंतजार कर रहे होंगे हम उनके मैसेज पढ़ के सुनाएं। सर मनीष इदरीसी का मैसेज है रामपुर बिलासपुर से। नमस्कार सर जी, नमस्कार मेजर साहब।
1: नमस्कार, जय हिंद।
0: ये मैसेज है, जय हिंद टू सर, आई एम अजय अहिवार फ्रॉम मध्य प्रदेश। फिर से आया इनका मैसेज और क्लास 12 प्रिपेयर्ड कर रहे हैं ये। फिर से मैसेज आया और हमने आपको बताई दिया है, सर ने बताया कि किस तरीके से आप कर सकते हैं और कैसे प्रिपरेशन करनी है। अब ये मैसेज आया सर, संदेश टू सोल्जर्स, मेजर साहब जय हिंद, शो रोचक, ज्ञानवर्धक, लाभप्रद और सकारात्मक संदेश देने वाला है। मेजर साहब इस शो से लोग इंस्पायर्ड होंगे, देशभक्ति का जज्बा कायम रहेगा, ये कह रहे हैं।
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और ये कहते हैं कि मेरा मानना है कि हर दिल में देश प्रेम की आग सुलगती रहनी चाहिए। और ये एक आगे कुछ पंक्तियां लिखते हैं सर, अर्ज है चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें।
1: बहुत बढ़िया।
0: तो ये हैं सर एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से, जिन्होंने ये मैसेज किया है। और इसके अलावा मैसेज है विलेज बरकतपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, स्टेट यूपी, नेम चरुण कुमार, आप सभी आर्मी ऑफिसर्स को मेरा जय हिंद सर।
1: आपको भी जय हिंद।
0: और ये है सर, नमस्कार जी, होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, प्रोग्राम हमें अच्छा लग रहा है जी, खुशनसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं, करता हूं उन्हें सलाम ए वतन, सलाम ए वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।
1: भारत माता की जय, जय हिंद। बहुत अच्छा मैसेज साहब
0: जी। सर मैसेज और भी हैं, मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ के सुनाई दूं फिर आगे हम बातचीत करेंगे, बहुत सारे मैसेज हैं सर, ये बहुत लंबा एक मैसेज है। गुड आफ्टरनून टू यू बोथ सर, संदेश टू सोल्जर्स, अ नाइस प्रोग्राम, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सोल्जर्स एंड ऑल्सो योर पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स, थैंक यू शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक एक्सपीरियंस स्पेशली रिगार्डिंग कारगिल वॉर, रिगार्डिंग योर अचीवमेंट एंड मेडल्स विच आर डिजर्विंग ऑन द 15th ऑफ आवर कंट्री इंडिया सेलिब्रेटिंग 80th इंडिपेंडेंस डे, ऑन दिस ओकेशन आई विश ऑल इंडियंस हैप्पी 80th इंडिपेंडेंस डे, भारत माता की जय, अपना भारत महान है, वंदे मातरम, जय हिंद। फ्रॉम एम आर मधुसूदन, ये एम बी राजेश्वर, सन ऑफ एम बी राजेश्वर, दत्तर कॉलोनी नियर शिवालयम टेम्पल, सीता फल मंडी।

0: सिकंदराबाद तेलंगाना से सर ये मैसेज आया है,
1: थैंक यू।
0: काफी खूबसूरत और बड़ा लंबा मैसेज था ये, और ये है, जय हिंद सर, आपको और हमारे देश को समस्त जवान स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप हैं तो हम सुरक्षित हैं, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शबनम, बी के दत्त कॉलोनी, नई दिल्ली से।
1: धन्यवाद, आपको भी जय हिंद। और मैं बोलना चाहूँगा
0: जी,
1: कि ये सारे अच्छे मैसेजेस सुन के, चाहे मैं अभी रिटायर्ड हूँ या सर्विंग हो, किसी भी फौजी को बहुत अच्छा लगता है। जिसको बोलते हैं ना कि आपको पता है भाई, हमारे देश में इतना प्रेम और रिस्पेक्ट है फौजियों के लिए
0: बिल्कुल
1: कि
0: सर, बिल्कुल, इसमें
1: आप
0: कोई दो राय
1: अपनी
0: नहीं।
1: ड्यूटी करते हुए घबराते नहीं है। आपको पता है पीछे मेरा देश है।
0: पीछे मेरा देश है, देशवासी हैं सर, और देशवासी सर आपको सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, और सर हम आपके ऋणी हैं, क्योंकि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो हमारे देश के भीतर भी, देश की सीमाओं पर भी, देशवासियों की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनका जो डेडिकेशन है देश और देशवासियों के लिए, तो वो सैल्यूट है सर हमारे सोल्जर्स को, इसीलिए हमारा प्रोग्राम है संदेश टू सोल्जर्स। सर मैसेजेस में लगातार, अभी मैं सोचता हूँ रोक दूं, अभी
1: हाँ
0: बहुत सारे
1: जी,
0: मैसेजेस आए हैं, मैं आपसे सर आगे बातचीत बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सर आपसे हम जानने के, फिर आप जब गोरखा रेजिमेंट में आप हुए कमीशन 1999 में,
1: हाँ
0: तो
1: जी,
0: वो फिर जो सफर शुरू हुआ,
1: हाँ
0: अब
1: जी।
0: आप बताएं कि फिर जिस तरह से आपके फिर आगे आप जाते हैं फिर।
1: मैं तो फिर कमीशन कुपवाड़ा में था,
0: जी
1: कश्मीर में फॉरवर्ड एरिया है। वहाँ पे हमारा रोल या तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे, कारगिल के एकदम बाद था
0: अच्छा
1: तो सीज फायर तो नहीं था, तो दिन रात गोलाबारी होती रहती थी,
0: अच्छा
1: तो हम भी उन पर करते हैं, वो भी हम पर करते रहते हैं। उस टाइम ये क्रॉस बॉर्डर रेड बहुत होती है, उन्होंने काफ़ी
0: ओके
1: सोल्जर्स हमारे उसमें भी शहीद हुए। लेकिन जो था, मतलब वो एक सोल्जर के लिए, एज अ सोल्जर,
0: जी
1: एक एक्सपीरियंस था कि आप किसके लिए सोल्जर बने। अगर आपने लड़ाई नहीं देखी, अगर आपने गोलाबारी नहीं देखी, अगर आपने वो, तो इस हिसाब से फिर हम काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में चले गए,
0: जी
1: जहाँ पे हमने, मेरी यूनिट ने बहुत अच्छा करा, क्योंकि वो बहुत एक्टिव एरिया था,
0: अच्छा, मतलब
1: हम
0: सेंसिटिव एरिया था और
1: सेंसिटिव एरिया।
0: हमेशा कुछ ना कुछ हैपनिंग।
1: तो कुपवाड़ा बॉर्डर जो है, वहाँ से बहुत सारे लॉन्च पैड हैं जहाँ से पाकिस्तान टेररिस्ट अंदर भेजता रहता है,
0: ओके
1: तो इस कारण वो बहुत एक्टिव एरिया माना जाता है वहाँ पे।
0: और वहां
1: तो
0: पर आपकी पोस्टिंग थी।
1: हाँ जी, तो आम आदमी एक्चुअली अक्सर जब भी आप बात करते हो, जंगल में टेररिस्ट ढूंढ रहे थे, पहाड़ में ढूंढ रहे थे,
0: जी
1: उसका स्केल समझ नहीं पाता कि किस
0: जाहिर है,
1: स्केल पे हम बात कर रहे हैं, कि वो जंगल कितना बड़ा था।
0: अगर मैं इमेजिन भी करूं तब भी मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच
1: या
0: सकता।
1: यूँ लगा लीजिए, एक पूरा शहर जंगल है।
0: अच्छा
1: जिस शहर में आप लोग, आपके लिसनर रह रहे हैं,
0: जी
1: वो पूरा शहर जंगल है, और आप 100 लोग हैं, आप
0: अच्छा
1: कितना ढूंढेंगे? और उसमें पहाड़ियां भी हैं, क्लिफ भी हैं, बर्फ भी पड़ी हुई है 20-20 फुट।
0: 20-20 फुट,
1: 20 फुट तो एवरेज आफ्टर स्नोफॉल होती है, राइट?
0: अच्छा
1: और आप 9,000 फीट से आपका बेस शुरू होता है, 15-17 हज़ार फीट तक जा रहा है, आपको सारा पेट्रोल करना है। तो अक्सर आपने देखा होगा, फौजी से आप सब लोग पूछते हैं कैसा था ये था, वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक था, अच्छा था।
0: तो यानी कि वो जो
1: ओनली
0: ठीक था
1: रीजन
0: कह रहे
1: इज,
0: हैं वो।
1: ओनली रीजन इज, समझा पाना पॉसिबल नहीं है कि वो किस तरह का एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है।
0: सर मैं ये आपसे जरूर जानना चाहूंगा, वो आप बताइए प्लीज।
1: जी तो सी, जो माउंटेन्स हैं वहां पे, क्लिफ्स हैं
0: जी
1: और बर्फ पड़ी हुई है, एक पीछे की तरफ पूरा जंगल है, चलने की जगह नहीं है, स्नो स्टॉर्म आ जाता है, ब्लिजर्ड आ जाएगा,
0: अच्छा
1: उसके बाद ऊपर से टेररिस्ट है
0: जाहिर है,
1: जो
0: जो
1: वेट कर
0: सबसे
1: रहा है,
0: बड़ा
1: जो, हाँ, जो वेट कर रहा है कि आप
0: वो
1: उसको
0: वेट कर
1: पहले
0: रहा
1: दिख
0: है।
1: जाए।
0: जी
1: खाना आपको हफ्ते में एक बार हेलीकॉप्टर से आता है,
0: एक बार
1: हाँ, जो भी फ्रेश राशन वो आपको हफ्ते में एक बार मिल जाएगा, राइट? आपको अगर गर्म गर्म गर्म रहना है, ये 20-25 साल पुरानी बात है, तो उसमें केरोसिन का स्टोव यूज़ करना पड़ रहा
0: ओके
1: है, मॉडर्न इक्विपमेंट उस टाइम नहीं थे
0: जी
1: डेली आप, क्योंकि अनदर थिंग इज, ये कारगिल के एकदम बाद की बात है,
0: हाँ
1: तो इंडियन आर्मी ने, भारत सरकार ने डिसाइड करा कि कारगिल इसलिए हुआ था कि कुछ पहाड़ी हमने विंटर वैकेट करी थी तो पाकिस्तानी आकर बैठ गए थे,
0: ओके
1: तो अब हम कुछ भी विंटर वैकेट नहीं
0: नहीं
1: करेंगे।
0: करेंगे, हम वहां पर भी अपनी ड्यूटी रखेंगे।
1: तो नेचुरली प्रेशर इज ऑन आर्मी। अब वो पहाड़ियां जहां पर हम आज तक गए भी नहीं थे,
0: ओके
1: उनके ऊपर छोटे छोटे टुप्पे, हिल, रॉक, वहां पे जाके नई पोस्ट इस्टेब्लिश करना, रिसोर्सेज नहीं, क्योंकि आप अगर फौजी को ये भी बोल देंगे ना, चप्पल में जाओ फौज, बर्फ में जाके पोस्ट
0: जी
1: बना लो, वो चला जाएगा।
0: अच्छा,
1: हमें आदत में नहीं होता है बोलना कि ये कंप्लेंट करे कि ये नहीं है, वो नहीं
0: एक्सक्यूज
1: है,
0: कुछ नहीं।
1: या तो उस हिसाब से काफी डिफिकल्टी में सर्विस थी। और उस सारे में आपको अंदर आते हो टेररिस्ट को भी रोकना है, जो अंदर आ गए उनको भी ढूंढना है,
0: अच्छा
1: आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो वहां पे जो गांव है, लोग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप, वो आपके देशवासी हैं,
0: बेशक
1: आप नहीं
0: उनकी भी
1: चाहते,
0: हिफाजत।
1: हाँ, आपको ये नहीं चाहते वो सोचे फौज हमारे को तो परेशान कर रही है। तो इट इज अ वेरी हाई स्ट्रेस, वेरी स्ट्रेसफुल जॉब।

0: और एक ही चीज आपको कॉन्फिडेंस देती है, मैं बता रहा हूं ऑनेस्टली, ये इस तरह के मैसेजेस कि आपको बस
1: जहां से
0: ये,
1: हमारी बात शुरू हुई
0: हाँ
1: थी।
0: कि मैं आपको यही बस कि जो मैं कर रहा हूं इस देश में उसकी वैल्यू है, ये लोग उसको मानते हैं मैं क्या कर रहा हूं,
1: जी, उनको
0: और
1: कदर
0: उस
1: है इस बात की और उनको परवाह है कि भाई हमारा जो फौजी
0: मतलब
1: हमारा
0: मान
1: भाई
0: लीजिए
1: है।
0: बात है, सारे सरकारी डिपार्टमेंट दुनिया के एक तरफ, सारे लीडर ब्यूरोक्रेसी और
1: बिल्कुल,
0: फौजी एक तरफ,
1: फौजी एक
0: जो प्यार
1: तरफ।
0: हम फौज को मिलता है वो नहीं, और इसी कारण से
1: जी
0: आप कॉन्फिडेंटली देश सेवा में लगे रहते हैं।
1: बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये तो मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ, हम हर हफ्ते यहाँ पर संदेश टू सोल्जर्स में अपने जो हमारे आर्मी वेटरन्स हैं और जो सर्विस में भी हैं, फौजी आते हैं, तो उनसे मिलकर के वो जो देशभक्ति का जज्बा है ना सर, जो है ऑलरेडी, वो कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि वो बातें, वो उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइव एक्सपीरियंसेस, जो हम कभी ना महसूस कर सकते, हम कितना भी इमेजिन करने की कोशिश करें, जैसे कि आपने बताया अभी, वो हम कर ही नहीं सकते। और एक फौजी उसको एक्सप्लेन कर पाने में मतलब असमर्थ ही महसूस करेगा कि मैं कैसे बताऊं। तो ये एक अननोन सी एक जो डेडिकेशन हम महसूस करते हैं कि वो हमारे फौजियों की है, तो वो सिर्फ एक दिल से जज्बा ही हम जाहिर कर सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सर, इसी दौरान जैसे अब आप जब दूर होते हैं, घर से भी दूर होते हैं, और फिर ऐसी सिचुएशन में, ऐसी लोकेशंस पर, ऐसे हालात में होते हैं जहां पर जैसे आप, तो कितने टफ, तो फिर घर की भी याद आती होगी।
0: बहुत बिल्कुल। और ये दिस इज, वहां पे मोबाइल भी नहीं था,
1: और उस जमाने में
0: कभी
1: तो
0: महीनों महीनों में बात होती थी, मैं 10-15 दिन बाद चिट्ठी आती थी,
1: 10-15 दिन में
0: क्योंकि
1: एक
0: पहाड़
1: बार।
0: में वो एक खच्चर के ऊपर वो पोर्टल लेके आता था,
1: अच्छा।
0: चिट्ठी दूर से दिख जाता था, 2 किलोमीटर दूर से आ रहा है, और सारे एक्साइटेडली बैठे रहे कि मेरी भी चिट्ठी
1: मेरी
0: आई
1: भी
0: है,
1: चिट्ठी
0: मेरी।
1: आएगी।
0: तो जो आप फिल्मों में छोटा सा दिखाते हैं ना चिट्ठी का क्रेज, वो
1: जी
0: मजाक नहीं है एक्चुअली,
1: अच्छा,
0: आपको महीने में एक बार चिट्ठी आनी है आपकी, और आपको लगता है यार कहीं से परिवार से आपके दोस्तों से
1: दोस्तों
0: कुछ
1: से
0: खबर आए, तो लेटर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी वहां
1: क्या
0: पे।
1: बात
0: हाँ,
1: है, मतलब लेटर्स की हम आज
0: और
1: ये
0: 15 दिन से आप लिख रहे हो,
1: जी
0: आपको उसी डाक से वापस
1: वापस भी
0: भेजना है।
1: भेजना है।
0: या
1: ओके।
0: तो लेटर्स की बहुत वैल्यू। तो उस टाइम एक रेडियो कैसेट ये सब होता था,
1: अच्छा,
0: तो आपके पास कुछ कैसेट्स बाई चांस जो आपके साथ ऊपर चली
1: ऊपर
0: गई
1: चली गई,
0: वो नेचुरली या तो आपकी फेवरेट बन जाती थी क्योंकि
1: हाँ,
0: और कोई
1: सुनते
0: था
1: सुनते,
0: नहीं,
1: क्योंकि और कुछ है ही
0: या
1: नहीं।
0: रेडियो सुनते थे कभी अपना कभी पाकिस्तान का,
1: अच्छा,
0: दोनों कैच करते, तो बस कुछ गाने आपके फेवरेट बन जाते हैं, आप वो सुनते रहते हैं।
1: तो उसमें से कुछ बताइए सर।
0: तो एक उस टाइम मेरा फेवरेट बहुत अभी भी आज भी है, एक रुस्तम सर आपका पुराना गाना फिर तुम्हारी याद आई ए
1: अच्छा,
0: सनम, और उस गाने की एक्सटेंडेड वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो सोल्जर्स गाना गा रहे हैं,
1: ओके।
0: ये सेनापति जो है किले पे खड़ा है और नीचे
1: अच्छा,
0: उसके जवान गाना गा रहे हैं, और अपने
1: परिवार को
0: परिवार को याद करते हुए, गर्लफ्रेंड को, बीवी को याद करते हुए
1: क्या
0: गाना
1: बात
0: गा।
1: है।
0: तो द होल सेटिंग ऑफ द सॉन्ग इस तरह से है कि वो सिर्फ लव सॉन्ग नहीं है, इट इज
1: जी
0: लॉन्गिंग ऑफ सोल्जर्स, जो सोल्जर्स हैं
1: जी
0: वो उसको याद कर रहे हैं
1: उसको
0: जिसको
1: याद
0: मिस
1: कर
0: कर
1: रहा
0: रहे
1: है,
0: हैं।
1: क्या बात है।
0: अगर
1: तो मैंने सर ये आपके कहते कहते ही सॉन्ग निकाल लिया है।
0: जबरदस्त
1: मेजर मानिकम जॉली आज के संदेश सुन के हमारे खास मेहमान, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन, और मेजर मानिक की पसंद का ये ट्रैक आप भी एंजॉय करें हमारे साथ। बने रहें संदेश सोल्जर्स में, शाहिद आपके साथ।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आप सुन रहे हैं शाहिद की आवाज और मेरे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान मेजर मानिक एम जौली, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन। और ये गाना मेजर साहब की पसंद से हमने सुना सुरतम सौराब से। सर, यहाँ पर बातचीत का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो तो उतना शायद जोशीला नहीं था, लेकिन जिस जोश से हम आगे बढ़े हैं तो प्रोग्राम खत्म होने का समय आ गया और अभी मेरे पास बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए बची हुई हैं। तो मैं मैसेजेस जो ऑलरेडी काफी सारे इकट्ठे हो गए मैं उनको बाद में पढ़ूंगा, लेकिन मैं अभी आपसे ये जानना चाहूंगा मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी आपने एक काफी बड़ा समय दिया, एक बड़ा रोल प्ले करा, तो वो क्या था एक्सपीरियंस आपका, उसके बारे में बताइए।
1: तो शायद मिलिट्री इंटेलिजेंस में आप वॉलंटियर करते हैं कि मैं इसमें सर्विस करना चाहता हूँ, आपको 2 साल का प्रोबेशन रखते हैं वो।
0: अच्छा,
1: तो अराउंड 10-11 साल में MI में था, तो वहाँ पे मैं काउंटर इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट था।
0: अच्छा।
1: और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, काउंटर इंटेलिजेंस की हमारी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए।
0: ओके।
1: इंटेलिजेंस जैसे होती है उनकी खबर लें, तो अलग अलग डोमेन में, और नॉर्थ मेरा डोमेन था तो उसमें वही नौकरी करी मैंने ज़्यादा। काफ़ी ऑपरेशंस किए हमने, काफ़ी देश में जो जासूस घूम रहे हैं काफ़ी पकड़े हैं।
0: अच्छा।
1: तो इस तरह से मेन टास्क हमारा फिर ये होता है कि
0: कोई अगर इंट्रूडर है,
1: हाँ जी,
0: तो उसका पता लगाना और उसको पकड़ना।
1: या और हमारे जो बेसिकली कम्युनिकेशंस, इंटेलिजेंस का बेस इज कम्युनिकेशन।
0: ओके।
1: वहां से खबर आती रहे और यहां से खबर ना जाए। बाकी सारी दुनिया इसके अराउंड बनी हुई है। ये दो पिलर हैं। सो अपना अपना रोल सब प्ले करते हैं। तो उसमें मैंने मैंने स्पेशलाइजेशन थी मेरी कम्युनिकेशंस की, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की, जो अभी मैं पढ़ाता हूँ और फौज छोड़ने के बाद तब से वही करते हैं
0: जी। तो सर, इसमें जो जो साइबर सेल का भी जो रोल रहता है, वो भी आपने सेटअप किया, उसमें भी आप शामिल रहे।
1: तो 2001-2002 में जब नया

0: इंटरनेट आना शुरू हुआ था तो सबको समझ आया था कि इंटरनेट से कम्युनिकेशन अब होगा.
1: ओके, ये
0: उससे
1: वो
0: पहले
1: उस
0: तो
1: जमाने की बात
0: हाँ
1: है.
0: चिट्ठी फोन पे चल रहा था सारा
1: जी
0: काम.
1: जी जी
0: तो उस टाइम देश का आर्मी का रादर पहला साइबर सेल पुणे में मैंने सेटअप
1: पुणे में
0: करा
1: आपने.
0: था. मैंने एक दो कोर्स करे थे, स्पेशली कोर्स
1: अच्छा,
0: करवाए साइबर इन्वेस्टिगेशन के, एथिकल हैकिंग के. तो हमने समझा कि ये कैसे. तो उससे काफ़ी आर्मी है, आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भी चीज़ें टेक्नोलॉजी नई आती है पहले पकड़ने की कोशिश करती है
1: ओके.
0: ताकि हमें एक स्टेप आगे रहे. तो फिर हमने साइबर सेल, साइबर पॉलिसी, इस पर काफ़ी काम किया. तो
1: अच्छा,
0: वो आज तक चल रहा है और काफ़ी अब तो बहुत डेवलप्ड है, पूरी डोमेन है. तो
1: बिल्कुल,
0: उस टाइम तो नया नया था
1: नया नया था
0: सब.
1: तो
0: हाँ
1: जाहिर
0: जी
1: है टफ भी रहा होगा उस टाइम पर, उसको सब मतलब स्ट्रीमलाइन करना,
0: हाँ,
1: उसको एस्टेब्लिश
0: समझने में
1: करना,
0: टाइम लगता था कि
1: समझने में
0: ये
1: टाइम
0: कैसे
1: लगता था.
0: होता है,
1: जी
0: वैसे.
1: तो सर अभी ये सब चीज़ें तो हो गई हैं आपकी, लेकिन
0: ये वो वाला जमाना था शायद जब आप किसी से ईमेल मांगते थे, वो ईमेल के साथ पासवर्ड देता था. मैं सच
1: अच्छा
0: बता रहा हूँ. तो लोगों ने कहा पासवर्ड क्यों दे रखा था, फिर वो चेक कैसे करेगा.
1: अच्छा
0: मतलब लोग धीरे धीरे समझ आई लोगों
1: समझ
0: को.
1: आया
0: हाँ
1: कि
0: जी
1: भाई
0: हाँ
1: ये जो साइबर है ये किस तरह से काम
0: जी
1: करता
0: हाँ
1: है और
0: जी
1: इसमें कैसे सिक्योर रह सकते
0: हाँ
1: हैं.
0: जी
1: सर इन सब चीज़ों के साथ साथ आप जो हैं ऑथर भी हैं, आपने किताब लिखी है कुपवाड़ा कोड्स, और इसके बारे में जरूर बताइए. इतना सब आपने किया, आप एक डायरिंग आर्मी ऑफिसर, इंटेलिजेंस पर आपने काम किया, काउंटर टेररिज्म पर आपने काम किया, आपको सेना मेडल से और दूसरे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, आपको पीएम मोदी के मिशन इनोवेशन के नेशनल चैंपियन के तौर पर भी आपको सम्मानित किया गया, अब आप ऑथर भी बन गए.
0: हाँ जी. तो ये अभी मैंने 1 साल पहले लिखी थी. तो अब अपने सारे एक्सपीरियंसेस, कुछ ऑपरेशंस को इकट्ठा करके मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, गोरखा गैरिसन,
1: अच्छा,
0: जिसमें गोरखा यूनिट और कुछ इंटेलिजेंस वाले जम्मू कश्मीर में ISI और टेररिस्ट को ढूंढ रहे हैं.
1: अच्छा,
0: तो
1: तो ये एक
0: उसकी
1: स्टोरी है,
0: ये एक पूरी ये सीरीज
1: सीरीज
0: थी,
1: है.
0: ये फर्स्ट बुक थी उसकी, कुपवाड़ा कोड्स,
1: ओके,
0: जो कि पिछले साल आई थी और हार्पर कॉलेज के साथ है.
1: क्या बात है. तो
0: तो
1: सर क्या आप चाहेंगे कि इसको मतलब हम OTT प्लेटफॉर्म या कहीं पर देखें, इसको अगर आप पिक्चराइज किया जाए, इसको
0: हाँ जी,
1: फिक्शन.
0: इट इज अ वेरी गुड स्टोरी. आई होप किसी दिन इस पे कुछ बने.
1: जरूर
0: क्योंकि
1: सर जरूर,
0: हाँ
1: हमारी
0: जी
1: शुभकामनाएं, और हम जरूर चाहेंगे कि इस पर अच्छी आपके एक्सपीरियंसेस के साथ, जो इसमें एक्सपर्टीज के साथ जो आपने लिखी है ये, उसको जरूर पर्दे पर, छोटे पर्दे पर ही सही लेकिन उतारा जाए और हम उसको देख पाएं. सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, इतनी अच्छी आपने बातें करी, इतने अच्छे एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर करे, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने अपना समय निकाला, और 80वां देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो उसकी भी बहुत बहुत तमाम देशवासियों को, हमारे सुनने वालों को, और मेजर मानिक आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं.
0: बहुत बहुत धन्यवाद. आपको
1: सर
0: चाहे
1: जाते जाते, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जाते जाते मैं सर आपसे अब ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि कम से कम एक आपकी पसंद का गाना जरूर चलाऊं जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और आपके दिल से करीब है.
0: तो मैं आपको बताता हूं, जब NDA में थे है तो एक पिक्चर रिलीज हुई थी बॉर्डर,
1: बॉर्डर, जी बड़ी
0: तो
1: फेमस,
0: उसका गाना था संदेश आते हैं.
1: जी
0: संडे को दोपहर को हर कमरे में गाना चल रहा था.
1: अच्छा
0: और इस गाने आई डोंट थिंक फौजी लाइफ, फौजी इमोशंस को इस गाने से अच्छा कोई कैप्चर करता है.
1: क्या बात है
0: तो
1: सर.
0: मैं फर्स्टली आपको थैंक यू, आपके सभी लिसनर्स को जय हिंद.
1: सर लिसनर्स तो
0: और
1: हमारे अभी भी जुड़े हुए हैं और
0: हाँ
1: मैसेजेस आ रहे हैं.
0: हाँ जी और स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू सो मच सर आपके आने के लिए. यहां पर मेजर मानिक एम जॉली की पसंद का ये गाना हम छोड़ करके जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम सर को जाते जाते जो मैसेज, कुछ एक तो मैं कम से कम पढ़कर सुनाई दूं. सर हैट्स ऑफ ऑल योर एक्सपीरियंसेस शेयरिंग, विश वन लाइफ वी गेट अ चांस टू लिव 1% ऑफ योर लाइफ, प्लीज शेयर योर बुक फ्रॉम USA न्यू जर्सी. ये मैसेज आया है किसी का और इनका नाम मुझे नहीं पता लग पा रहा है, लेकिन इन्होंने सर बड़ा दिल से मैसेज
0: या
1: कराया आपको.
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट योर मैसेज. जय हिंद आपको भी.
1: और सर ये मैसेज है, सर कैन वी ज्वाइन सीक्रेट सर्विस थ्रू NDA और आफ्टर NDA, ये पूछ रहे हैं सर. समय हालांकि खत्म हो गया लेकिन मैं क्या करूं,
0: हाँ जी
1: मैसेज
0: हाँ जी
1: आया.
0: जरूर जरूर, आप फौज में जाइए और कुछ भी ज्वाइन करें.
1: और सर ये मैसेज है, हेलो सर, NDR एंड RJN मेजर सर, जय हिंद जय भारत सर. जैसे आप जैसे महानुभाव की बातें सुनकर यूथ बहुत इंस्पायर होते हैं, उनमें देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है, आप सदा स्वस्थ रहें. मिसेस धर्म भाटिया रोहतक से सर ये मैसेज आया है सर आपके शहर
0: अरे
1: से.
0: वाह, हमारे शहर से आए
1: जी
0: भाटिया जी, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद आपको भी.
1: और सर मेजर साहब को विजय कुमार त्रिचुरपल्ली की ओर से जय हिंद और स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं सर, विजय कुमार है.
0: आपको भी विजय जी, जय हिंद आपको भी.
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है. बहुत बहुत धन्यवाद मेजर एम जॉली हमारे साथ थे आज, वेटरन इंडियन आर्मी सेना मेडल से सम्मानित, और आप सुन रहे थे संदेश सोदश शाहिद के साथ.

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं और आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

अनुराधा पौडवाल को अभी आपने सुना फिल्म थी आजा सनम, गीत इंदिवर का था, संगीत दिया था अरुण पौडवाल ने।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी की शब्द रचना भी आपने सुनी। किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में फिल्म थी अंदाज़।

विरासत फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें थीं कुमार सानू और चित्रा की, बोल जावेद अख्तर के थे, धुन तैयार की थी अनु मलिक ने। फिल्म संगीत इस समय श्रोता सुन रहे हैं FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

सात नजर का मंगोर साथियों के गाए विजयपथ फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। और अब युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा स्नेह भरा नमस्कार। मित्रों, यदि युवाओं से पूछें कि आपका लक्ष्य क्या है, तो वो सबसे पहले कहेगा उसके जीवन में उसका कैरियर। और युवा मतलब है साथियों ऊर्जा, युवा मतलब देश का भविष्य, युवा मतलब वो जो देश को आगे ले जाए। लेकिन आज यही हमारी युवा अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, और वो कुल्हाड़ी है नशे की। नशा सबसे पहले आपका लक्ष्य चुराता है। जो लड़का डॉक्टर बनना चाहता था, वो क्लिनिक की जगह नशे के अड्डे पर पलता है। जो लड़की खिलाड़ी बनना चाहती थी, उसकी सांस फूलने लगती है। नशा आपकी याददाश्त खोता है, आपका आत्मविश्वास तोड़ता है, और आपके माँ बाप के सपनों को राख कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि युवा नशे में जाता क्यों है। जरा सा तनाव होने पर दोस्त कहते हैं एक बार ट्राई कर, तो लगता है सुकून मिल जाएगा। पर सच्चाई ये है साथियों कि 5 मिनट के झूठे सुकून देने वाला नशा आपके बदले में 50 साल की जिंदगी मांग लेता है। सोचिए, जिस मोबाइल को लेने के लिए आप 6 महीने पैसे जोड़ते हैं, वो नशे में 1 हफ्ते में उड़ जाता है। जिस कैरियर के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो एक सिगरेट से शुरू होकर ड्रग्स पे ख़त्म हो जाता है। तो इसका समाधान क्या है, और वो है 3 चीज़ें। नंबर 1, लक्ष्य। अपने साथ हमेशा अपने दीवार पर या अपने जहो जहन पर अपना सपना जो है, आपका जो लक्ष्य है, चाहे वो IAS बनना है, इंजीनियर बनना है, फौजी, टीचर, जो भी बनना है, जब भी ख्याल आए नशे का, तो उसकी इमेज को, अपने कैरियर की को सामने रखना है, और हिम्मत जटानी है कि दोस्तों को ना बोलें कि जब भी वो दबाव डालें, तो ना कहने की हिम्मत जरूर रहनी चाहिए। ना कहना कमजोरी नहीं, ताकत है। और उसके बाद 3री जो अहम है, जिसको अनुमन युवा नहीं अपनाता है, वो है यदि वो किसी दोस्त के साथ फंस गया है,

तो उसको बिना किसी हिचक के अपने घर में अपने टीचर से बात करनी चाहिए, और साथ ही हेल्पलाइन नंबर 144446 पर लेकर अपनी सलाह लेके अपने नशे को ख़त्म करना चाहिए। नशा आपको चार जोश तो जरूर दे देगा, पर आपके लक्ष्य आपको हजारों लोगों में पहचान दिलाएगा। नशा आपको कमरे में बंद कर देगा और लक्ष्य आपको स्टेज पर खड़ा करेगा, जहां आप दुनिया से आंख मिलाकर बात करेंगे। चॉइस आपकी है, या तो नशे के धुएं में अपना भविष्य उड़ा दें, या मेहनत की आग में अपना भविष्य बना लें। हम सब मिलकर संकल्प लें, ड्रग फ्री यूथ स्ट्रांग इंडिया, और अपने लक्ष्य को मजबूती से हासिल करें।

0: सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। एक आवश्यक सूचना सुनिए।
2: सावधानी अपनाएं, जीवन बचाएं। डूबने से बचाव के लिए आप सभी से एक विशेष अपील। आपकी जरा सी लापरवाही आपके और आपके परिवार के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए जल स्रोतों के पास

0: जाते समय इन जरूरी सुरक्षा उपायों का हमेशा पालन करें। सुरक्षा के लिए क्या करें? अगर आपको तैरना नहीं आता है तो नदी, नहर, नाले या तालाब में बिल्कुल न जाएं और अपने परिजनों को भी ऐसा करने से रोकें। बच्चों को पुलियां या ऊंचे टीलों से पानी में छलांग लगाकर नहाने से सख्ती से रोकें। केवल बेहद जरूरी होने पर ही पानी में उतरें और पानी की गहराई का हमेशा ध्यान रखें। क्षमता से ज्यादा भरी हुई यानी ओवरलोडेड नाव में बिल्कुल न बैठे। जब भी किसी नदी, पोखर या तालाब में सामूहिक रूप से स्नान करने जाएं, तो अपने साथ 10 से 15 मीटर लंबी एक मजबूत रस्सी, धोती या साड़ी जरूर रखें, ताकि आपात स्थिति में किसी डूबते व्यक्ति को बचाया जा सके। इन बातों की अनदेखी बिल्कुल न करें। नदियों, नहरों और जलाशयों के पास लिखे हुए चेतावनी बोर्ड की कभी अवहेलना न करें। छोटे बच्चों को घाटों और पानी के बिल्कुल पास न जाने दें। किसी के उकसावे में आकर या जोश में पानी में छलांग न लगाएं। नदियों और घाटों पर रीति रिवाजों और संस्कारों का निर्वहन करते समय विशेष सावधानी बरतें। नदी या तालाब में तैरते या नहाते समय कोई स्टंट न करें और खतरनाक तरीके से सेल्फी न लें। आपकी यह गलती जानलेवा हो सकती है। याद रखें, आपका जीवन आपके परिवार के लिए अनमोल है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
1: अभी आप सुन रहे थे ये आवश्यक सूचना। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर।
2: साथियों, बात हो रही थी हमारे युवाओं के कैरियर के विषय में। तो मित्रों, इसी विषय पर मार्गदर्शन के अंतर्गत जानकारी दिलवाते हैं। प्रबंधन के क्षेत्र में कैरियर, इस विषय पर प्रोफेसर विकास त्रिपाठी से बातचीत कर रहे हैं विजय सिंह नौलखा।
3: मार्गदर्शन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के अंदर हम आपको कैरियर से जुड़ी हुई पूरी बातें बताते हैं। तो आज इस कड़ी में जिस कैरियर का चुनाव हमने किया है वो है प्रबंधन, यानी मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप किस तरह से कैरियर बना सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं, व्यक्ति क्या चीज़ की डिमांड करता है ये कैरियर, और आगे बढ़ने के इसमें कितने सारे अवसर मौजूद हैं। इन सभी बातों की जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर विकास त्रिपाठी जी को, जो कि प्रोफेसर एंड हेड हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट GLA विश्वविद्यालय में। काफ़ी लंबे अरसे से विद्यार्थियों को शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं, साथ ही साथ उनका मार्गदर्शन भी करते आ रहे हैं और विषय से जुड़े हुए हैं। तो प्रोफेसर त्रिपाठी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
4: नमस्कार, नमस्कार विजय जी। नमस्कार श्रोताओं।
3: सबसे पहली बात जो आम हमारा जो श्रोता है या हमारा जो युवा साथी है वो ये जानना चाहेगा, कोई भी कैरियर अगर वो तलाश करता है, उसकी संभावनाओं पे विचार करता है, तो सबसे पहली बात ये आती है कि भाई इसका क्या स्कोप क्या है, कितने संभावनाएं मौजूद हैं आगे चल के अगर मैं ये कैरियर ऑप्ट करता हूँ। तो प्रबंधन के क्षेत्र यानी मैनेजमेंट का अगर कोई विद्यार्थी ये पढ़ना चाहता है, इसी में अपना करियर बनाना चाहता है, क्या स्कोप देखते हैं? देखिए, आजकल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ, हमारा देश भी काफ़ी तेज़ी से आर्थिक प्रगति करता आ रहा है। ग्लोबलाइजेशन के युग में हम रहते हैं, इंडस्ट्री हमारी दिनों दिन प्रगति करती जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र में भी अनेक संभावनाएं होंगी। तो किस तरह का भविष्य, किस तरह का स्कोप, किस तरह का फ्यूचर देखते हैं इस मैनेजमेंट का?
4: देखिए विजय जी, सन 1991 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को ये जिम्मा सौंपा कि देश को कैसे प्रगतिशील बनाया जाए, तो उन्होंने एक पॉलिसी लगाई जिसको हम लोग मैनेजमेंट की भाषा में एक LPG पॉलिसी कहते हैं
3: जी,
4: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन
3: जी।
4: उन्होंने उसको लागू किया और आप देखिए 1991 से लेके ये सन 2016 आ गया है, हम लोगों ने प्रगति के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उसकी मेन वजह ये थी कि हमने बाहर से प्राइवेट कंपनीज को बुलाया और उनको अपने यहाँ एस्टेब्लिश करवाया
3: जी,
4: लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हुई और विकास हुआ
3: जी।
4: अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि प्रबंधन की क्या भूमिका रही, प्रबंधन क्षेत्र की क्या भूमिका रही, तो मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप किसी भी घर में जाएं, उस घर में जो एक गृहिणी है, जो माँ है किसी बच्चे की, उस गृहिणी को अगर हम देखें तो उससे बड़ा कोई प्रबंधक होता ही नहीं है। हम उसको देखकर ये महसूस कर सकते हैं कि वो घर को कितने अच्छे से व्यवस्थित कर रही है। एक्चुअली वो जो भी कुछ कर रही है वही प्रबंधन है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब चूंकि

0: कि यहाँ कंपनीज आ रही हैं तो उनको ऐसे युवकों की आवश्यकता है, ऐसे विद्यार्थियों की, ऐसे स्टूडेंट्स की आवश्यकता है जो उनके कार्यों को व्यवस्थित रूप से चला सकें। इसी क्षेत्र में मेरे देखते देखते ऑलमोस्ट ट्रिपल का इजाफा हो चुका है नौकरियों में, कि प्रबंधन के क्षेत्र में नौकरियों की इतनी अपार संभावनाएं बढ़ गई हैं कि अब आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो कहेगा कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब को तो प्रेफर नहीं करता, मैं मैनेजर बनना चाहता हूं।
1: जी
0: जैसे ही ये टर्म आता है वैसे ही मैनेजमेंट के द्वार खुल जाते हैं कि अगर व्यक्ति के अंदर जरा सा भी विचार है कि वो एक प्रबंधन क्षेत्र में जाना चाहता है तो वो इस तरफ आगे बढ़ता है। इसके लिए कुछ एक नियम और कायदे यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा बनाए गए हैं कि अगर आप कहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, कैसे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें दो तरीकों में डिस्ट्रीब्यूट होता है ये पूरा प्रोसेस। एक
1: नहीं, ये चीज़ हम अभी पूछेंगे आपसे, लेकिन ये जो बात आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात बनाई कि जहाँ मैनेजर शब्द का प्रयोग होता है उसके बाद ये मैनेजमेंट का काम शुरू हो जाता है। तो देखिए, आपने जैसी आपकी बातचीत से जो मैं समझ पा रहा हूँ उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय, न सिर्फ अभी बल्कि आने वाले समय में, जैसे जैसे देश की तरक्की होगी, आर्थिक तरक्की की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, मैनेजर की भूमिका अहम रहने वाली है। उसके लिए एक अपार संभावनाओं वाला एक बड़ा क्षेत्र जो है वो खुला हुआ है, और आने वाले समय में न सिर्फ वो खुला हुआ है बल्कि आगे और बढ़ेगा।
0: बिल्कुल सही है।
1: तो यानी अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई स्टूडेंट इस ओर बढ़ना चाहता है तो प्रगति के सारे रास्ते उसके लिए ओपन है। अब बात यह आती है कि भाई ठीक है, अगर हम इस क्षेत्र को चुनते हैं, लेकिन सर होता क्या है कि व्यक्ति जब अपना कोई एक नया यंग लड़का या लड़की अगर किसी क्षेत्र में जाते हैं तो अमूमन वो अपने परिवार वालों से, अपने माता पिता से, अपने कोई नज़दीकी रिश्तेदार से जो वो कैरियर परसू कर रहा होता है उससे ही थोड़ा सा प्रेरित होते हैं, तब जाते हैं, पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, कभी कभी इंटरनेट का भी सहारा लेते हैं। तो हर एक मुख्तलिफ कैरियर कुछ उस कैंडिडेट के अंदर कुछ डिमांड करता है, तो वो कौन कौन से ऐसे गुण एक अभ्यर्थी अपने अंदर खुद झांक के देखे जिससे कि अगर वो ये कैरियर चुनता है तो अंत में जब वो पढ़ाई करके निकले तो एक अच्छा मैनेजर बन पाए। ऐसे खुद के अंतर मन में टटोलने के बाद ऐसे कौन से गुण ऐसे आप देखते हैं कि व्यक्ति को उस क्षेत्र में जाना चाहिए? रुचि तो प्रथम है ही, इसके अलावा और?
0: देखिए, जैसा आपने कहा, रुचि तो होनी ही चाहिए।
1: जी
0: उसके साथ साथ अगर वो बच्चा, वो स्टूडेंट अपने अंदर ये पाता है कि कुछ इनोवेटिव करने की उसके अंदर इच्छा है, कुछ नया करने की इच्छा है, चीजों को प्रबंधन, एक्चुअली देखिए प्रबंधन कोई ऐसी चीज नहीं है जो ग्रेजुएशन के बाद ही होगी या ग्रेजुएशन से पहले ही होगा, ऐसा उससे कुछ रिलेशन नहीं है। कोई भी बच्चा जब 12th क्लास में भी पढ़ता है तो अपने यहाँ फेयरवेल प्रोग्राम मान लीजिए ऑर्गेनाइज करता है, तो वो दो चार बच्चे मिलकर ही तो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो वहां पे
1: बिल्कुल
0: भी मैनेजमेंट करते हैं। जिस बच्चे की रुचि इस तरफ है वो इतना अच्छे से चीजों को मैनेज कर लेता है कि उसको आगे सफलता इस फील्ड में मिलनी ही है। एक दूसरा पॉइंट ये है कि आजकल कहा जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल जो है, अगर बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो उसकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर वो बच्चा एनालिटिकल रूप से स्ट्रांग है तो उसकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप ये देखिए, कोई भी टेस्ट होता है, जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, इनमें यही दो तीन चीजें पूछी जाती हैं। इनसे ये साबित होता है कि यही इसके प्री रिक्विजिट भी हैं। किसी भी मैनेजमेंट प्रोग्राम में एंट्री लेने के लिए जब आप टेस्ट देते हैं तो उसमें दो तीन बेसिक चीजें होती हैं। एक तो होता है आपसे पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस के बारे में, दूसरा पूछा जाता है कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है, तीसरी चीज आपसे पूछी जाती है आपका वर्बल कैसा है। तो ये तीन प्री रिक्विजिट हैं फंडामेंटल, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपकी इंग्लिश पे कंट्रोल कैसा है, भाषा पर कंट्रोल कैसा है, दूसरा आपका एनालिटिकल पावर, मैथमेटिकल पावर जो एप्टीट्यूड है वो कैसा है, और तीसरा आप समसामयिक विषयों पर आप कितना कंट्रोल रखते हैं। ये तीन चीजें हैं।
1: हाँ, तो देखिए ये बात जो बताई आपने त्रिपाठी जी, ये बहुत जरूरी है। हम किसी कैरियर की तरफ आकर्षित होते हैं, युवा मन क्या है कि बहुत कुछ करना चाहता है, थोड़े समय में बहुत सारी चीजें करना चाहता है, दूसरों को देख के प्रेरित होता है, उसकी सफलता को देख के वैसा ही सफल बनने की कोशिश करता है, लेकिन शायद वो कभी कभी अपने मन में नहीं झांकता कि मैं जिस चीज के लिए आगे आ रहा हूं क्या वो जो मूलभूत गुण है मेरे अंदर है या नहीं।
0: जी
1: आपने तीन चार चीजें बड़ी अच्छी बताई, उसमें एनालिसिस करने की पावर हो, एनालिटिकल पावर उसकी अच्छी हो, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, ज्यादातर पढ़ाई

0: अंग्रेजी भाषा में होती है और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां वो है वो अपना कार्य का जो जितना भी कार्यकलाप है वो सब अंग्रेजी भाषा में संपादित करती हैं। अतः अंग्रेजी भाषा पे कंट्रोल होना भी आवश्यक है, साथ ही साथ उसमें किसी भी चीज को मैनेज करने के ये जन्मजात गुण अगर थोड़े से भी दिखाई देते हैं बाद में उसको पॉलिश किया जा सकता है। ऐसी चार पांच क्वालिटीज व्यक्ति पहले खुद के अंतर मन में झांके और ये डिसाइड करे कि अगर मेरे अंदर है तो भविष्य में मैं एक अच्छा मैनेजर हो सकता हूँ।
1: बिल्कुल सही।
0: चलिए ये बात भी अगर कोई व्यक्ति तलाश लेता है इसके बाद आती है कि वो क्या पढ़े, कहाँ एडमिशन ले, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: यहाँ पर मैं एक वही जो सबसे पहले बात कर रहा था कि आपको ये देखना है कि आप किस लेवल पर जाना चाहते हैं। मान लीजिए आपने ट्वेल्थ पास किया है
0: जी
1: और आप मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो सबसे प्राइमरी कोर्स होगा मैनेजमेंट फील्ड का वो होगा बीबीए, जिसको हम कहते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन।
0: जी
1: इसी तरीके से अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, आप स्नातक हैं, तो आप एमबीए कोर्स में जा सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब बीबीए करने के लिए सबसे ऐसा कहीं कुछ नियम नहीं है कि आप ट्वेल्थ किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में ही हो। आप साइंस स्ट्रीम में हैं तो भी आप बीबीए कर सकते हैं, कॉमर्स हैं तो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा। अगर आप ट्वेल्थ कॉमर्स से हैं तो एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा,
0: वो सब्जेक्ट कुछ कुछ मैनेजमेंट
1: मैनेजमेंट से मिलता हुआ है सिर्फ इस वजह से। तो ये ऐसे ही एमबीए के लिए अगर हम बात करें तो आप बीएससी हो, आप बीए हो, आप बीटेक हो, तो वो आपके लिए ग्रेजुएट डिग्री है, आप वो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है जो आपको पूरी करनी है, उसके बाद आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं।
0: यानी दो प्रोग्राम्स हुए, एक बीबीए जो स्नातक स्तर का प्रोग्राम
1: जी,
0: है
1: जी,
0: एक एमबीए जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है
1: जी,
0: तो ये दो तरह से बताइए। अच्छा कुछ ऐसे संस्थानों के बारे में भी बताइए जिससे देखिए क्या है, हर जगह शायद हमारे इस ब्रज क्षेत्र में मथुरा के में भी एमबीए बहुत जगह हो रहा है, इसके अलावा भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कौन कौन से ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं जिनसे व्यक्ति कर ले, नामचीन संस्थान है, उसके बाद उनकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसे कुछ संस्थानों के बारे में जानकारी।
1: देखिए सबसे प्रतिष्ठित संस्थान जो एमबीए लेवल पर माना जाता है हमने समस्त भारत में, वो आईएम माना जाता है
0: जी,
1: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
0: जी।
1: पहले ये पांच ही हुआ करते थे लेकिन अब गवर्नमेंट की स्कीम्स की वजह से इनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, हर साल इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है, अब ये नियर अबाउट 16-21 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये टोटल इंडिया में हर स्टेट में वन आईएम का कंसेप्ट आ रहा है, वन आईएम वन आईटी एट एवरी स्टेट, ये गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, तो वो हर स्टेट में एक आईएम ओपन हो रहा है। इसके अलावा ये तो आईएम्स का बात है, इसके अलावा एमडीआई जैसे गुड़गांव है, एमडीआई जो है एक्सएलआरआई जमशेदपुर है, इसके अलावा जेवियर्स इंस्टीट्यूट है जो पुणे में भी है, ये बहुत नामचीन है। इनका ज्यादातर जो इनमें प्रवेश होता है वो इनका एक एग्जाम होता है कैट
0: जी, कॉमन एडमिशन टेस्ट,
1: उसके थ्रू ये एडमिशंस लेते हैं। अब थोड़ा टायर टू पे अगर हम आए तो टायर टू पे अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए दिल्ली बिजनेस स्कूल है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है
0: जी,
1: डीयू का है, आपका बिमटेक है, आपके बजाज है, जमुना लाल बजाज मुंबई में है, एसपी जैन है, नरसी मुंजी, मतलब देयर आर सेवरल इंस्टीट्यूट्स विच आर एट टायर टू। फिर उसके बाद अब चूंकि देखिए ये भी एडमिशन कैट के थ्रू भी लेते हैं और अपने खुद के भी एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं, लेकिन चूंकि इनमें सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं और हमारे यहाँ करने वाले जो बच्चे हैं जो इच्छुक विद्यार्थी उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो इनमें सबको अलॉटमेंट सीट्स का नहीं हो पाता है किसी वजह से, तो इसके बाद भी एक टायर थ्री जो अच्छी लेवल पर माना जाता है वो भी अवेलेबल है, उसमें भी आप अपने लोकल एरिया में भी ब्रज क्षेत्र में भी आप ढूंढ सकते हैं, आपको कुछ एक यूनिवर्सिटीज ऐसी मिल सकती हैं जहां पर आपको अच्छे से ये कोर्स करने का मौका मिल सकता है।
0: तो यानी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप अगर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकते हैं तो अच्छे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा भी लगभग लगभग हर जगह हर विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं इसके डिग्री कोर्सेज पोस्ट डिग्री कोर्सेज हैं तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं
1: जी
0: और अपना ये करियर परसू कर सकते हैं
1: जी।
0: अच्छा एक चीज और, डिग्री खत्म करने के बाद
1: जी
0: व्यक्ति को नौकरी मिलने की, देखिए क्या है कि जीवन यापन के लिए कोई व्यक्ति पढ़ता है, जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ उसे करना पड़ता है
1: जी।
0: बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं कि वो पढ़ाई लिखाई को ही नौकरी का जरिया मानते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई केवल एक नौकरी का जरिया नहीं है, बाकी और

0: भी उसके मुख्तलिफ
1: जी जी
0: इस्तेमाल भी हैं। इसके अलावा भी चूंकि वो पढ़ लिख के तैयार हो गया, एक पोस्ट ग्रेजुएट है, एमबीए कर चुका है, उसके बाद नौकरी की कितनी संभावना और कैसी संभावना देखते हैं आप?
1: देखिए, जैसा हम लोग पहले भी इस विषय पर डिस्कस, अभी हमने पहले प्रश्न में आपके उत्तर में मैंने कहा था कि मैनेजमेंट फील्ड में इस समय इतनी संभावनाएं हैं कि यदि व्यक्ति के अंदर वो गुण हैं जो उसको अच्छा मैनेजर बना सकते हैं तो उसको नौकरियों की तो कमी देखिए है ही नहीं आजकल के टाइम पर। और आप एक और बात समझिए, देखिए अब नौकरी केवल एक प्रश्न नहीं रह गया है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तमाम स्कीम्स देखिए, वो अब नौकरियों के साथ साथ एक टर्म एंटरप्रेन्योरशिप को और बढ़ावा दे रहे हैं।
0: जी,
1: मेक इन इंडिया कंसेप्ट मान लीजिए अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया, ये सारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं वो बच्चों के अंदर इंटरप्रेन्योरियल स्किल को जगाने के लिए है। जो अच्छा मैनेजर बन रहा है वो इंटरप्रेन्योरियल स्किल के साथ डेवलप हो तो वो नौकरी केवल ढूंढे नहीं, वो बल्कि दूसरों को नौकरी दे भी।
0: जी, ये बहुत अच्छी बात बताई त्रिपाठी जी आपने कि दो चीजें सामने आई कि पहली बात, अगर जो इच्छुक व्यक्ति हैं उनके नौकरी के अनेक अवसर मौजूद हैं, और उससे भी ज्यादा वाली बात जो सामने आती है वो ये कि उसको वो ट्रेन करते हैं, उसके कौशल का विकास करते हैं, उसको एक अच्छा मैनेजर बनाते हैं और इस ओर प्रेरित करते हैं कि वो खुद का एक धंधा, खुद का एक विकसित करे, इंटरप्राइज विकसित करे, और साथ ही साथ न सिर्फ खुद का रोजगार तलाशने में उसकी सहायता होगी बाकी वो बहुत सारे व्यक्तियों को रोजगार भी देगा। सरकार की भी मंशा यही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति अब उद्यमशीलता की तरफ बढ़े और न सिर्फ खुद अपनी रोजी रोटी कमाएं बल्कि अपने बहुत सारे जो दूसरे भाई बंधु हैं उनको भी नौकरी प्रदान करें। अच्छा त्रिपाठी जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, कई बार ऐसा देखने में आया कि व्यक्ति जो है ना वो ग्रेजुएशन लेवल पे बीटेक करके और उसके बाद एमबीए करता है, कोई कॉमर्स या बीकॉम करने के बाद फिर एमबीए करता है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या है जो कई लोग कहते हैं, ऐसा सुनने में भी आता है कि अगर आप बीटेक के बाद एमबीए करते हो तो क्या कि चांसेस कुछ कैरियर के ज्यादा बढ़ने के, ज्यादा नौकरी अच्छी मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन भी है क्या?
1: जी, कॉम्बिनेशन तो है लेकिन ऐसा है, देखिए एक्चुअली ये माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति ने बीटेक किया है तो उसकी एनालिटिकल पावर अच्छी हो गई होगी, नहीं रही होगी तो हो गई होगी, तभी उसने बीटेक कर पाया है। तो और एमबीए का एक प्री रिक्विजिट है कि वो एनालिटिकल होना चाहिए। तो जैसे ही एक बीटेक बच्चा एमबीए की तरफ बढ़ता है तो वो अपने एक संपूर्ण विकास के लिए, मतलब जिसको हम पहले से ये कह सकते हैं उसके अंदर एनालिटिकल पावर पहले से आ गई है, तो उसके साथ जब वो एमबीए में प्रवेश करता है तो उसको एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है।
0: जी,
1: इसीलिए आप देखिए कि कई जगहों पर अब बीटेक और एमबीए के इंटीग्रेटेड कोर्सेज प्लान कर दिए गए हैं, बी स्कूल्स ने लॉन्च किए हैं, इंजीनियरिंग स्कूल्स ने लॉन्च किए हैं कि भाई हम बीटेक एमबीए आपको कराएंगे। उसमें विद्यार्थी के लिए समय का भी फायदा होता है थोड़ा सा, उसको वो कर्टेल कर देते हैं, 6 साल का नया करके हो सकता है वो 5.5 ईयर का हो या 5 ईयर का प्रोग्राम हो, वो डिजाइन करती है यूनिवर्सिटी या पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेज है, बिजनेस स्कूल है, वो डिजाइन करता है। उससे उस बच्चे को फायदा प्लेसमेंट में भी होता है क्योंकि जो कंपनी एक मैं इस पे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने, 1 2 3 4 5 उस आर्टिकल का हेडिंग थी। एक्चुअली उसका कंसेप्ट बड़ा सीधा सा है कि कंपनीज का अब ट्रेंड है कि हायर वन, गिव सैलरी ऑफ 2, टेक वर्क ऑफ 3 एंड रिटायर हिम एट 45। सो इन दिस वे इट इज 1 2 3 4 5।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात आपने की। एक कारण ये भी हो सकता है त्रिपाठी जी कि चूंकि इंडस्ट्री के अंदर उन्हें एक प्रशिक्षित व्यक्ति, एक इंजीनियर की आवश्यकता होती है, अगर इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आपको मैनेजमेंट भी आपने किया हो तो वो दो व्यक्ति, जैसे आपने कहा कि एक इंजीनियर भी है साथ ही साथ वो अच्छा मैनेजर भी है, अगर दो व्यक्ति ही एक व्यक्ति में मिल जाएं, एक एम्प्लॉय में अगर उसे मिल जाते हैं तो नेचुरली वो उसको प्रेफर करेगा।
1: जी जी,
0: तो आज मेरे ख्याल से हमने जो बात की है, जो प्रबंधन का विषय लेने के इच्छुक हमारे विद्यार्थी हैं या प्लान कर रहे हैं वो, तो इससे उसको जरूर फायदा मिला होगा। ऐसी कोई बात त्रिपाठी जी जो हम न बता पाए हों और जरूरी है जो विद्यार्थी जाने?
1: देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, जैसा कि आपने पहले कहा था कि एमबीए हर जगह हो रहा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, विद्यार्थी को किसी भी इंस्टीट्यूट का, यूनिवर्सिटी का चयन करने से पहले उस इंस्टीट्यूट, उस यूनिवर्सिटी के क्रेडेंशियल को चेक कर लेना चाहिए।
0: जी,

0: उसके कोर्स स्ट्रक्चर को देख लेना चाहिए और उसके जो फैकल्टी है जो उसको पढ़ाएगी वहां पर उसके बारे में पता कर लेना चाहिए। और फाइनली उसको वहां की एम्प्लॉयबिलिटी वहां पर कितनी है, लोग कितनी कंपनीज आ रही हैं, विजिट कर रही हैं, उसका उनके यहाँ प्लेसमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको थोड़ा रियल बेसिस पर चेक कर लेना चाहिए।
1: प्रबंधन के क्षेत्र में कैरियर। प्रोफेसर विकास त्रिपाठी से अभी श्रोता सुन रहे थे विजय सिंह नौलखा की बातचीत। और अब आज का युवा कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। छह बजने को है, कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुईं। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी।
3: टोटल 12 बिल पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, जबकि बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलारूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार देश की समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और राष्ट्र के प्रति एकता और समर्पण का संदेश दिया। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया गया। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर गुरुद्वारा माता साहिब देवान जी मुगत की सीढ़ियों से उतरते समय एक सेवादार ने श्री बादल पर चाकू से हमला किया। श्री बादल की हालत खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरोमणि हमले की जांच के आदेश दिए हैं। ये पिछले 2 वर्षों में श्री बादल पर हुआ दूसरा हमला है। इससे पहले दिसंबर 2024 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के

0: पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा ए कायदा ए हिंद AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई थी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीत लिया है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन सीनियर भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है हमारे यहाँ से आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज संध्या 6:50 पर श्रोता सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किसान वाणी कार्यक्रम। संध्या 7:20 पर प्रादेशिक समाचार होंगे और ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

संसद समीक्षा प्रसारित की जाएगी आज रात 8 बजे। कंटिफाइड कार्यक्रम होगा रात 9:30 पर, रात्रि 9:45 पर इनसाइट प्रोग्राम का प्रसारण किया जाएगा और ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

देशकान का समय रहेगा आपसे कुछ देर बाद संध्या 6:10 रात्रि 8:15। साहित्य कार्यक्रम में दे समारोह में आज लेंगे श्रोता जानकारी तीर्थ स्थल उज्जैन के विषय में। वार्ताकार होंगे हरि नारायण मिश्रा। समय रहेगा आज संध्या 6:15 पर।

फिल्मी भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदनों का आज सायं 6:30 पर, शाम 7:31 पर श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा शाम सुहानी। एक ही फिल्म से कार्यक्रम का समय रहेगा आज रात 8:30 पर। चितपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने का समय रहेगा रात 9:15।

10 बजे श्रोता सुनेंगे रूपक ब्रज का रंगीला सावन, आलेख व प्रस्तुति डॉक्टर अशला नागर की होगी। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर आज श्रोता सुनेंगे कामोद मिश्रा की गाई ठुमरी। हिंदी समाचारों का समय रहेगा रात 8:45 और रात 11 बजे। अंग्रेजी समाचार होंगे रात 9 बजे और रात्रि 11:05 पर। हमारी दूसरी सभा का समापन होगा रात 11:10 पर। यह था आज का कार्यक्रम विवरण।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देशभक्ति पर एक रचना।

0: जी कपिल कुमार की इस शब्द रचना भी आपने सुनी समवेत स्वरों में।
1: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए एक आवश्यक सूचना।
5: नमस्कार,
4: मथुरा के
5: सभी निवासियों से एक बहुत ही जरूरी अपील। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार हो रही मानसूनी वर्षा के कारण सभी नदी, ताल, पोखरे, नाले, नहर तथा गड्ढे जलमग्न हो गए हैं। उक्त के दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति जलाशयों के समीप न जाए, क्योंकि समस्त जलाशयों के आसपास के स्थल दलदली तथा फिसलन वाले हो गए हैं और ऐसे में पैर फिसलने के कारण अथवा अन्य कारणों से पानी में डूबने की घटनाएं घटित होंगी। अतएव जनमानस से यह अपील किया जाता है कि नदी, ताल, पोखरे, नाले, नहर तथा गड्ढे जो जलमग्न हैं, के समीप न जाएं। अभिभावकों से अनुरोध है कि बच्चों का विशेष ध्यान रखें, बच्चों को जलाशयों में जल क्रीड़ा करने अथवा नहाने से रोकें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा जनहित में जारी।
4: अभी आप सुन रहे थे एक आवश्यक सूचना। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
0: वृत्त कार्यक्रम में आज देश समारोह में श्रोताओं को दिलवाते हैं जानकारी तीर्थ स्थल उज्जैन के विषय में। वार्ताकार हैं हरिनारायण मिश्रा।
6: हमारो देश भारत एक प्राचीन देश है। प्राचीन काल में यह आर्यावर्त के नाम से जानो जाए हतो, क्योंकि यहाँ सबसे पहले आर्य आकर बसे हते। याको नाम भारत महाप्रतापी राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के परम वीर पुत्र भरत के नाम पर रखो गयो है। हमारे देश के उत्तर में पर्वतराज हिमालय शोभायमान है, जो कि गंगा, जमुना, सतलज आदि नदी को उद्गम स्थल है। ये अपने अमृत तुल्य जलते हमारी भारत भूमि सिंचित करे हैं। यही कारण हमारे खेत फसल के रूप में सोना उगले हैं। इन नदी के किनारे बसे नगर वासीन को समस्त आवश्यकता ये मात्र स्वरूपणी नदी पूरी करे हैं। भारत भूमि को देव भूमि भी कहो जाए।

है। भारत भूमि के कण कण में देवता निवास कर रहे हैं, यही कारण याक को कण कण एक तीर्थ स्थान है। फिर भी कछु स्थान इनको विशेष महत्व है। इनके दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जावे हैं और भाग्योदय होवे है। हमारे देश में 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और या को मध्य भाग कहलावे है मध्य प्रदेश। या को विस्तार जमुना तट से गोदावरी तट तक फैलो भयो है। ये लगभग 3,08,000 वर्ग किलोमीटर में फैलो है। यहाँ चहुओर प्राकृतिक सुषमा फैली भई है। यहाँ ऊंची ऊंची विंध्याचल पर्वतमाला हैं एवं नर्मदा बेतवा शिप्रा व अन्य नदी तथा कलकल करते झरना मन को आकर्षित करे हैं। मध्य प्रदेश को प्राचीन नाम मालवा प्रदेश है। यहाँ के वन प्रदेश में जनजाति आज भी रह रहे हैं। यहाँ संथाल भील गौंड जनजाति निवास करे हैं। भारत के इतिहास में मध्य प्रदेश को गौरवपूर्ण स्थान रहे है। महाराजा अशोक के काल में मालवा मौर्य साम्राज्य को एक शक्तिशाली गढ़ मानो जाया। तो वैसे तो मध्य प्रदेश के बहुत से तीर्थ स्थल व शहर दर्शनीय हैं, किंतु जो स्थान उत्तर प्रदेश में बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी को है, वही स्थान मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को है। परम पवित्र शिप्रा नदी के तट पर बसो उज्जैन एक प्राचीन नगर है। अयोध्या मथुरा द्वारिका काशी कांची हरिद्वार आदि समस्त पुरियन में उज्जैन भी एक है। यहाँ भगवान शिव की पूजा महाकाल के रूप में करी जाए है। यहाँ भगवान शिव ने अपने भक्त ब्राह्मण के 4 पुत्रन की रक्षा महाकाल के रूप में अवतार लियो हतो। ऐसी कथा है कि प्राचीन काल में यहाँ एक ब्राह्मण अपने पुत्रन सहित रहता हतो। ब्राह्मण शिव जी की आराधना में व्यस्त रहतो। एक दिना जब दूसरा नामक दैत्य ब्राह्मण पुत्रन की हत्या करवे को आयो, तब भगवान शिव धरती फाड़कर प्रकट भय और हुंकार मात्र से वह दैत्य को नाश कर दियो। उज्जैन को प्राचीन नाम अवंती है और यहाँ हमारे प्रिय श्री कृष्ण भ्राता बलदेव व मित्र सुदामा सहित संदीपनी ऋषि को आश्रम में विद्या अध्ययन के काजे आए हते। पूर्व में उज्जैन महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी हती। इनकी सभा में नवरत्न हते, उनमें महाकवि कालदास मुख्य है। 10वीं शताब्दी में परमार राजपूतन ने उज्जैन से अपनी राजधानी बनाया हतो। बाद में वे अपनी राजधानी है पहले धार फिर मांडू ले गए। उज्जैन प्राचीन काल में ही आध्यात्म व धर्म को केंद्र रहे है। यहाँ विभिन्न धर्मन के अपने अपने तीर्थ स्थल है। यह नगर पतित पावनी शिप्रा नदी के किनारे बसो भयो है। ऐसो कहो जाए है कि शिप्रा स्नान करके यदि महाकाल शिव को दर्शन कर लियो जाए तो मृत्यु को भय ना रहे है। कीट पतंग भी यहाँ मरवे पे शिव के गण हुए हैं। उज्जैन को पृथ्वी को नाभि स्थल भी कहो जाए है। भारतीय ज्योतिष में उज्जैन को बड़ो महत्वपूर्ण स्थान है और या के अनुसार देशांतर की शून्य रेखा यहीं से प्रारंभ हुए है। उज्जैन पौराणिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्षन के बाद कुंभ व 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ मेला लगे है। शिप्रा नदी के तट पर लगे वारे मेला में पूरे भारत के वैष्णव शैव्य शाक्त एवं अन्य संप्रदाय के साधु संत सन्यासी एवं भक्त बहुत बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं और विभिन्न तिथिन पर पड़वे वारे शाही व अन्य स्नान पर्वन पर शिप्रा नदी में स्नान करके पुण्य लाभ पा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगन में प्रमुख महाकाल ज्योतिर्लिंग यहाँ पे स्थित है। यह अति प्राचीन मंदिर है और यहाँ शिवलिंग दक्षिण मुखी होवे के कारण तांत्रिकन की साधना स्थली भी है। 12 ज्योतिर्लिंगन में मात्र महाकाल की मूर्ति ही दक्षिण मुखी है। उज्जैन रेलवे स्टेशन से 1 मील की दूरी पे महाकालेश्वर मंदिर है। ये मंदिर बहुत बड़ो है व मुख्य मंदिर भूमि की सतह से कछु नीचे है। या के ऊपर की मूर्ति है ओंकारेश्वर कहो जाए है। नीचे के खंड में महाकाल की मूर्ति है। यह मूर्ति काफी विशाल है और चांदी के घेरा में बैठी हुई है। प्रातः काल यहाँ पंचामृत स्नान के बाद भस्म आरती हो गए है। प्राचीन काल में यहाँ शमशान की भस्म से श्रृंगार करो जाए तो, पर अब मंत्रण से अभिमंत्रित भस्म से श्रृंगार हो गए है। महाकाल को मुख्य मंदिर आंगन के बीचों बीच बने हुए जाके दक्षिणी भाग में कई मंदिर हैं। इनमें आदि कालेश्वर व वृद्ध कालेश्वर मंदिर मुख्य हैं। महाकाल मंदिर के पास नीचे की तरफ सभा मंडप है और वहां के नीचे कोटि तीर्थ नामक सरोवर है।
यह सरोवर के आसपास छोटी छोटी शिव छतरियां भी हैं। महाकाल की श्रृंगार व शयन आरती के दृश्य बड़ो ही मनोरम हो गए हैं। वह सब भक्तन को दर्शन

0: बड़ी सुगमता से हो जावे हैं। शिप्रा नदी उज्जैन रेलवे स्टेशन से करीब 1.5 मील की दूरी पर है। कहा जाए कि भगवान विष्णु के शरीर से शिप्रा नदी उत्पन्न भई हती। यहाँ पक्के घाट बने हैं, इनमें राम घाट, नरसिंह घाट, पिशाच मोचन तीर्थ, छत्री घाट, गंधर्व तीर्थ प्रसिद्ध हैं। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी बने हैं, जहाँ गंगा दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा, वैशाखी पूर्णिमा को मेला लगे है। बृहस्पति का सिंह राशि में होवे पे शिप्रा स्नान को विशेष महत्व है। बड़े गणेश जी को मंदिर महाकाल के मंदिर के पास ही है। ये मूर्ति बहुत विशाल व सुंदर है। पास ही सप्त धातु निर्मित पंचमुखी हनुमान जी को मंदिर है। यह मंदिर में अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। रुद्र सरोवर के पास चार दीवार से घिरो हरि सिद्धि देवी को मंदिर है। यह देश की 51 शक्तिपीठ में से एक है। मान्यता है कि माँ सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव उनके शवे लेके पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वही समय विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंग काट दिए और उज्जैन में माँ की कोहनी गिरी और यहाँ शक्तिपीठ बन गया। ये महाराज विक्रमादित्य के आराध्य देवी भी हैं। कथा है कि देवी को एक स्थान सौराष्ट्र में मूल द्वारिका से दूर समुन्दर की खाड़ी में पर्वत पर है। महाराजा विक्रमादित्य वहीं से अपनी आराधना द्वारा इन्हें संतुष्ट कर अवंतिका ले आए। दोनों ही जगह देवी की मूर्तियां एक जैसी हैं। वास्तव में मंदिर के मुख्य पीठ पर मूर्ति नहीं है, मात्र श्री यंत्र स्थापित है। यह के पीछे माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति है। 24 खम्बा महाकाल मंदिर से बाजार जाते समय मिले हैं। ये कोई प्राचीन द्वार के अवशेष हैं। यहाँ भद्रकाली देवी को मंदिर है। बाजार में गोपाल जी को मंदिर स्थित है। यह महाराजा दौलत राव सिंधिया की धर्मपत्नी वायजाबाई द्वारा बनवाया गया है। यहाँ श्री राधा कृष्ण एवं शंकर जी की आकर्षक मूर्तियां हैं। गोपाल जी के मंदिर से 1 मील की दूरी पर गढ़ कालिका देवी को मंदिर है। कहा जाए है कि इन्हीं की आराधना करके कालिदास महाकवि बने। कालिका जी के उत्तर में 2 फरलांग की दूरी पर भरथरी गुफा व भरथरी समाधि है। यहाँ एक छोटे से रास्ते से गुफा में जानो पड़े हैं। उज्जैन से 3 मील दूर शिप्रा किनारे भैरवगढ़ नामक बस्ती है। यहीं टीले पर भैरवनाथ जी को मंदिर है। या को निर्माण राजा भद्रसेन ने करायो हतो। भैरव अष्टमी को यहाँ मेला लगे है। काल भैरव से पूर्व में शिप्रा नदी के दूसरे किनारे पर सिद्धवट है। या के नीचे नाग बलि नारायण बलि को महात्म है। गोपाल मंदिर से 2 मील दूर संदीपनी मुनि को आश्रम है। यहीं श्री कृष्ण बलराम व सुदामा ने संदीपनी मुनि से विद्या अध्ययन करो हतो। संदीपनी मुनि के आश्रम से कछु दूरी पे मंगलनाथ मंदिर है। पृथ्वी पुत्र मंगल की उत्पत्ति यहीं मानी जाए है। यहाँ मंगल शांति की पूजा हो गए है। वर्ष 1719 में जयपुर के समय राजा जयसिंह ने शिप्रा तट पर ज्योतिष के अध्ययन हेतु वैधशाला बनवाई हती। यह लोग यंत्र महल कहे हैं। या के द्वारा आकाशीय ग्रह नक्षत्र की गति व स्थिति जानी जा सके। उज्जैन देश के सभी भागन से रेलवे बस से जुड़ो भयो है। हवाई जहाज द्वारा इंदौर तक जाके वहां से बस द्वारा टैक्सी बस व टैक्सी से उज्जैन पहुंचो जा सके। वैसे तो यहाँ वर्ष में कभी जा सके, पर अक्टूबर से अप्रैल माह को समय अधिक उपयुक्त रहे है। मथुरा से उज्जैन रेल द्वारा सीधो जायो जा सके है। उज्जैन में शिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाए है। यहाँ भोजन हेतु तो शुद्ध शाकाहारी भोजनालय व ठहरवे को धर्मशाला सुगमता से मिल जावे हैं। मेरो मानना है कि कभी समय मिलवे पे महाकाल नगरी उज्जैन के प्राचीन वैभव व महाकालेश्वर के दर्शनार्थ एक बार अवश्य जानो चाहिए।
1: देश समारोह में अभी श्रोता ले रहे थे जानकारी तीर्थ स्थल उज्जैन के विषय में। वार्ताकार थे हरि नारायण मिश्रा। और इसके साथ ही आज का ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
2: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो

हम अपने श्रोताओं को एक बार पुनः याद दिलाना चाहेंगे कि आज संध्या 6:50 पर श्रोता सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किसान वाणी कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम हम

किसान वाणी कार्यक्रम और ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। समय रहेगा संध्या 6:50।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है और अब प्रस्तुत है फिल्मी भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन।

अमिताभ भट्टाचार्य की शब्द रचना भी आपने सुनी अमित त्रिवेदी और साथियों की आवाजों में। फिल्म थी केदारनाथ, धुन तैयार की थी अमित त्रिवेदी ने।

कविता कृष्णमूर्ति और नितिन मुकेश को अभी आपने सुना। फिल्म थी ईश्वर, शब्द रचना अनजान की थी, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को अभी आपने सुना, फिल्म थी मिस मैरी। बोल राजेंद्र कृष्ण के थे, संगीत दिया था हेमंत कुमार ने।

राजन साजन में शाखे गई। सुरसंगम फिल्म की इस भक्ति रचना के साथ ही आज का संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर ही आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: वर्ष 2036 तक देश में घरेलू सीबीजी उत्पादन को मौजूदा स्तर से करीब 10 गुना बढ़ाना। योजना के तहत सीएनजी और पाइप्ड गैस में सीबीजी की अनिवार्य ब्लेंडिंग भी की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2027 में 3%, 2028 में 4% और 2029 से 5% ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा गया है। इससे किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए गोबर और कृषि अवशेष से अतिरिक्त आमदनी के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। साथ ही कचरे का बेहतर प्रबंधन, प्रदूषण में कमी और आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने में भी मदद मिलेगी।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। तो अब पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
2: ज्योति बहनी।
4: हाँ रामजीत भैया।
2: देखो हम पंच बाग वाग तो लगौबे करी थे।
4: हाँ।
2: मूल कऊ दें का हो जाते कि वही के समय समय पर का कुछ करे है वही का समझ ना पाए और वही से अपन बाग खराब हो जाते है।
4: बिल्कुल भैया, देखो खेती के साथ अगर फल फूल हुआ करत है तो देखो कितना अच्छा लागत है।
2: बिल्कुल बहनी, यही बदे आज की बात माँ विषय है अमरूद के बागों में सामयिक प्रबंधन, और यही पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर कुंदन किशोर भैया।
5: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, अमरूद के बागों में इस समय सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुंदन किशोर साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अमरूद के बागों में सामयिक प्रबंधन की बात करें तो अमरूद की बागवानी जहां शुरुआत करना चाहते हैं तो क्या गुंजाइश है?
6: नमस्कार सभी किसान भाई और बहनों को। जो भी किसान भाई हमारे अमरूद की खेती करना चाहते हैं, ये ध्यान

0: है कि भारतवर्ष में अमरूद एक बहुत महत्वपूर्ण फल के तौर पर सामने आ रहा है और हमारे देश का ये चौथा सबसे महत्वपूर्ण फल है। इसकी उत्पादकता तो वैसे 15 टन प्रति हेक्टेयर है हमारे यहाँ, लेकिन बड़ी गुंजाइश है कि अगर हम इसकी खेती अच्छे से करें इसकी उत्पादकता काफ़ी बढ़ सकती है और 25 टन तो हम आराम से उत्पादन कर सकते हैं। जो नए पौधे लगाने जा रहे हैं इसमें जो है अधिक घनत्व के पौधों को लगाने की जरूरत है, जिसमें कि हम कम से कम 800 से 1000 पौधे एक हेक्टेयर में लें, जैसे 3 मीटर और 4 मीटर की दूरी पर हम अमरूद के पौधे को लगाएं। दूसरा, हमारा संस्थान एक तकनीक जो है ट्रेनिंग सिस्टम जिसको कहते हैं अलग, उसको कहते हैं एस्पेलियर ट्रेनिंग सिस्टम,
1: यानी छत्रक प्रबंधन।
0: छत्रक प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है और उस छत्रक प्रबंधन में हम 1500 से 2000 पौधे को उसमें लगा सकते हैं और अधिक पौधे होने के कारण उसके अच्छे से हम प्रूनिंग की एक जो है तकनीक बताते हैं किसानों को, ताकि उसका जो उत्पादन है लगभग 50% आसानी से बढ़ने की संभावनाएं होती।
1: डॉक्टर साहब, चूंकि रोपण का समय है तो जहां योजना है तो कौन कौन सी प्रजातियां चुने जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से बाजार के हिसाब से अच्छा रहेगा?
0: देखें, हमारे संस्थान ने श्वेता, ललित, लालिमा, धवल और एक नई वैरायटी भूषण, ये 5 वैरायटी हमारे अमरूद के तैयार किए गए हैं। ये सभी वैरायटी बहुत ही अच्छे हैं। बहुत सारे किसान भाई हमारे VNR की भी वैरायटी उत्पादन करते हैं, उसके साइज बड़े होने के कारण उसका बाजार में अधिक मूल्य मिलता है, आकर्षण है और मूल्य जो है वो अधिक मिलता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो हमारे देश की प्रजातियां हैं उसमें भी उतना ही पोटेंशियल है
1: और स्वाद अलग है।
0: स्वाद अलग है। हमारे जो अपने वैरायटी हैं उस पर भी तवज्जो दें, ताकि हमारा भी जो वैरायटी है वो आम जो कंज्यूमर हैं वहां तक पहुंच पाए और हमारा जो उद्यानिकी है वो आगे बढ़ता रहे।
1: डॉक्टर साहब, जहां अमरूद की पुरानी बागवानी है, व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं, वहां खड़ी फसल में इस समय कौन कौन से महत्वपूर्ण काम है?
0: अब देखिए, आप देखेंगे तो अमरूद की मुख्य फसल जो है एक बरसात के सीजन में आ गई और दूसरे जो है वो जाड़े के सीजन में आते हैं।
1: हाँ,
0: ऐसा देखा गया है जो बरसात के अमरूद होते हैं वो थोड़े फीके होते हैं
1: और बाजार भाव भी कम,
0: बाजार भाव भी कम है और उसमें जो है एक होता है फल मक्खी, उसका ज्यादा जो है प्रकोप होता है। और बरसात में क्या है कि आप बहुत दिनों तक अमरूद को नहीं रख सकते, अगर 2 दिन नहीं बिका अमरूद तो किसानों को घाटा हो जाता है। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम जाड़े के फसल को लें जो हम लोग प्रेरित करते हैं तो उसमें ये सभी चीजें नहीं होती हैं
1: जी,
0: तो इसका हम रेगुलेशन करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं क्रॉप का रेगुलेशन। और उसको हम करते हैं प्रूनिंग के द्वारा, कि अगर आपने प्रूनिंग मार्च अप्रैल में किया तो आपको फल मिलेगा बरसात में
1: जी,
0: और अगर आपने प्रूनिंग को डिले करके जून कर दिया, जून में कटिंग किया, तो फल मिलेगा जाड़े में
1: जी।
0: तो मैं किसानों को ये कहता हूं कि मार्च के जो है उसको फल को कम करें और प्रूनिंग करें आप
1: जून
0: में, ताकि आपको
1: जाड़े की फसल,
0: जाड़े की फसल आपको अच्छे से मिल पाए।
1: डॉक्टर साहब, आपने पोषक तत्व प्रबंधन की बात की तो अमरूद के जो फलदार वृक्ष हैं उनकी भूख मिटे इसके लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन कब, कितना और कैसे करना है?
0: हम एक पौधे में कितने फल हों ये निर्धारित करना बहुत जरूरी है। किसान भाई क्या करते हैं कभी कभी कि बहुत ज्यादा फल छोड़ते हैं तो फल का साइज घट जाता है, फल कम छोड़ेंगे तो साइज बढ़ जाएगा, और जितने फल होंगे उसके अनुसार हमको उसको लवण देना है। एक साधारण भाषा में कहते हैं कि हम लोग लगभग 300 ग्राम नाइट्रोजन, 150 ग्राम फास्फोरस और लगभग 400 ग्राम पोटास प्रति पौधा हम लोग बताते हैं
1: हर साल,
0: हर साल। और ये हमको कम से कम 3 स्टेज में देना चाहिए
1: जी।
0: एक महत्वपूर्ण स्टेज है जब हम प्रूनिंग करके नए पत्ते निकलते हैं, उस समय देना जरूरी है। दूसरा, जब फल बढ़ रहे हो तब देना है, जैसे अगस्त सितंबर में हमने एक बार दे दिया। और फिर हम फल जब तोड़ लेते हैं तो बहुत सारा न्यूट्रिएंट बाहर चला जाता है, तब एक न्यूट्रिएंट की जरूरत। इस तरह से अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम उसका प्रबंधन करेंगे तो हमारा जो अमरूद की खेती है वो बेहतर होगा।
1: डॉक्टर साहब, कई बार बेसल डोज में बागवान भाई अगर नहीं दे पाए हैं पोषक तत्व तो पानी छिड़काव भी कर सकते हैं?
0: आजकल बड़ा अच्छा तकनीक आया है कि हमारे पास पानी में घुलने वाले खाद उपलब्ध है,
1: जल विलेय उर्वरक,
0: जल विलेय। उसमें जैसे आप कहेंगे 18-18-18, मतलब नाइट्रोजन 18% है, फॉस्फोरस 18% है, पोटास भी 18% है, कहीं कहीं ये 20-20-20 में भी उपलब्ध है। इसका छिड़काव हम कर सकते हैं, इसका छिड़काव 3 ग्राम से लेकर 4 ग्राम प्रति लीटर

0: इसमें घोल दें और पौधे में स्प्रे करें। फिर इसके साथ हमको बोरोन की जरूरत पड़ती है।
1: जी,
0: बोरोन का छिड़काव हमको करना बहुत जरूरी है,
1: क्योंकि पोषक तत्व,
0: पोषक तत्व का वो बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हमारे जो मिट्टी है इसमें बोरोन कम है,
1: काफी कमी दिखती है।
0: तो इसलिए उसका छिड़काव साथ में ही हम एक माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सर हमारे संस्थान ने भी तैयार किया है और वो पोषक तत्व हम उसमें 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करें, उसको हम लोग फसल प्रभात कहते हैं
1: जी।
0: वो उपलब्ध है किसानों के लिए 5 ग्राम प्रति लीटर। अगर वो उपलब्ध नहीं हो तो कोई भी सूक्ष्म तत्व का मिक्सर बाजार में उपलब्ध होते हैं, अच्छे ब्रांड का लें और वो आप छिड़काव करें तो वो भी पोषक तत्व आप जो मैनेज कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बागवान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे अमरूद के बागों में सामयिक प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके संस्थान आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: हमारा नंबर है 9337962793 या 93-37-96-27-93, इससे संपर्क कर सकते हैं। जो भी जुड़ी हुई समस्याएं आपकी हैं अमरूद से संबंधित, प्रश्नों का उत्तर हम जरूर देंगे। तो पौधे का फोटो इस व्हाट्सएप पर भेजें, निश्चित रूप से आपको सही जानकारी प्राप्त होगी।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं बागवान भाइयों बहनों का अमरूद के बागों में सामयिक प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: मैं यही कहूंगा कि ये एक तो विटामिन सी पूर्ण फल है, दूसरी इसमें आम से अगर कंपेयर करेंगे इसमें बहुत कम कीड़े लगते हैं और इसको बहुत ज्यादा लवण की भी जरूरत नहीं है,
1: यानी पोषक तत्व की
0: जरूरत नहीं है। एक सामान्य हमारे किसान भाई इसकी खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा तकनीक की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पेस्ट मैनेजमेंट कीट प्रबंधन की जरूरत नहीं है। तो हम एक अच्छा सेफ फ्रूट कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं और बाजार में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगर हम जाड़े के फल अच्छे गुणवत्ता के साथ लें तो किसान भाइयों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है।
1: डॉक्टर कुंदन किशोर साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और अमरूद के बागों में सामयिक प्रबंधन इस समय क्या कुछ करें बागवान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ज्योति बहनी।
3: हाँ रामजीत भैया।
2: देखो बादल इस समय गहराए रहा है और जो सावन का छटा है वो हर जगह देखे मिल रही है।
3: तो तुम्हार मन जो है कुछ मनोरंजन करे है हमका लागत है।
2: बिल्कुल बहनी, ऐसा में तो कैसे मनोरंजन न कीन जाए।
3: तो चलो भैया एक लोकगीत लेके आए हैं।
2: हाँ,
3: नकटा।
2: हाँ, हाँ।
3: जो वंदना मिश्रा जी की आवाज में है। हे सैया हमका,
2: बिल्कुल
3: सुन लीन जाए।

0: भाई वाह, अब तो बजरिया घूमिन लियो, अब तो ठीक है, अब चलो कार्यक्रम में। देखो हम पंच अपने खेती पाती में काम तो करबे करी थे, मूल कौदा ऐसा होत है कि हम जितना सोची थे उतना कह ना पाई थे, और कऊ किसान ऐसे हैं जे वो से बढ़ के काम कर लिए थे, और यह सबका हम जानी थे आज के किसान में।
1: सही कह भैया। तो देखो आज जो है विषय जो हम लेके आए हैं केला और अमरूद उत्पादन है ना, जी के वार्ताकार हैं हरीश कुमार वर्मा भैया, तो यका सुना जाए।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज हमारे साथ एक ऐसे बागवान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, बाराबंकी जनपद के फतेहपुर ब्लॉक के रामपुरवा गांव के केला अमरूद उत्पादन से जुड़े हरीश कुमार वर्मा भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया ये बताएं कि इस समय कौन कौन सी फसल आपके खेत में है?
3: किसान भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार। इस समय मेरे पास केला है और ताइवान पिंक अमरूद है।
2: रकबा कितना कितना है?
3: मेरे पास 5 एकड़ केला है, 4 एकड़ ताइवान पिंक अमरूद है।
2: तो अमरूद से शुरुआत करें कि कहां से मन में जगा कि आप तो केला उत्पादन से हमेशा से जुड़े रहे,
3: जी
2: ताइवान पिंक अमरूद की तरफ रुझान कैसे हुई?
3: इसलिए हुआ क्योंकि केला में लगातार कुछ दिन से करते हुए मिट्टी में कुछ ऐसे फंगस डेवलप हो गया जिनसे केले के पौधों को नुकसान हो रहा था, फसल को नुकसान हो रहा था, तो केला के विकल्प में मुझे अन्य कोई फसल चाहिए थी। तमाम इधर उधर विचार करने के बाद चूंकि धान गेहूं में हमको उतना उत्पादन या प्रॉफिट नहीं मिलता जितना मुझे केला में मिल रहा था, तो उसके विकल्प स्वरूप मैंने देखा कि ताइवान पिंक की आज बाजार में मांग बहुत अच्छी है, खाने में बहुत अच्छा है, इसलिए उसकी डिमांड है, रेट भी अच्छा है, तो मैंने ताइवान पिंक अमरूद लगा दिया।
2: तो आपने लगाया कब?
3: मेरे पास 4 एकड़ अमरूद है जिसका 2 एकड़ मैंने 2023 में लगाया था। 2023 में लगाने के 1.5 साल कंप्लीट होने के बाद में उसकी मैंने बिक्री शुरू करी, उससे मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैंने नया 2 एकड़ और लगाया।
2: यानी लगभग 4 एकड़?
3: 4 एकड़ जी।
2: और केला?
3: केला मेरे पास 5 एकड़ है, क्योंकि मैं पहले तो केला का कुछ बड़ा काम करता था लेकिन जमीन में वही फंगस के कारण क्षेत्रफल काफी कम कर दिया, और ये जो 5 एकड़ केला भी मेरे पास है वो नई जमीन में है, यानी कि जहां पर हमने इसके पहले केला का उत्पादन नहीं करा था।
2: यानी फफूंद जनित बीमारी लगने की संभावना बिल्कुल नहीं है?
3: जी, केला रोपण के पहले गर्मियों में जब हमको धूप मिलती है, गर्मी होती है, बहुत ही ध्यान देना होता है कि जितनी गहरी और अच्छी जुताई हम करेंगे उतना मेरा पौधा अच्छे से विकास करेगा। बारिश के समय जाड़ा आने के पहले लगभग 4 महीने का जो समय होता है उसमें जितनी अच्छी हम देख रेख कर लेंगे, चूंकि जाड़े में मौसम का दुष्प्रभाव, जाड़ा के कारण, पाला के कारण हमारे केला का

0: विकास सही नहीं होता है, तो इसके लिए जाड़ा शुरुआत होने के पहले हम अपने पौधे को 3-4 फीट का बना लें, बढ़ा लें। और ऐसा हम तब कर सकते हैं जब अच्छी जल निकास व्यवस्था हो, समय समय पर उसको जो भी फर्टिलाइजर देना हो, खेत को खरपतवार मुक्त रखें, तब उसकी हम ऐसा 4 फीट का वो कर सकते हैं।
1: अभी आपकी फसल किस हालत में है? केला
0: लगभग 70% फूल आ चुका है, 30% में अगले 10-15 दिन में फूल आ जाएगा।
1: यानी आपकी अगेती फसल है,
0: हाँ, थोड़ा सा गेती है और इसकी कटाई लास्ट अगस्त से शुरू हो जाएगी।
1: उस समय भाव अच्छा रहेगा।
0: बहुत ज्यादा संभावना होती कि शुरुआत में लाभ अच्छा मिले।
1: और अमरूद में कौन कौन सी बारीकी आपने किया?
0: अमरूद में अभी 1-2 साल से फ्रूट फ्लाई और व्हाइट फ्लाई का प्रकोप होता है, थोड़ा सा होता था, लेकिन पिछले साल से कुछ ऐसा हुआ, मौसम में दुष्प्रभाव हो सकता है, तो फ्रूट फ्लाई की बहुत समस्या आ गई। तो इसके लिए अब अमरूद के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि उसकी बैगिंग की जाए, फल की बैगिंग की जाए।
1: तो आप अमरूद की बैगिंग की तैयारी में हैं?
0: जी, मेरी बैगिंग मैं राजस्थान से मंगवा चुका हूँ, मेरी बैगिंग मेरे घर पे आ गई है। अभी जैसे ही मेरा नींबू के आकार का जो फल होगा तो उसकी बैगिंग हम शुरू करवा देंगे।
1: अमरूद की बागवानी में कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं आप, उसकी रोपाई से लेकर के पूरे साल?
0: जी, अमरूद की फसल में ये जो ताइवान पिंक प्रजाति है, ये चूंकि घना लगता है, 8x10 की हमारी दूरी है, हमारे जो पहले के पौधे होते थे उनकी अपेक्षा इसको नमी सब कुछ बहुत अच्छा सा चाहिए, तो पर्याप्त नमी देना होता है, क्योंकि ये ऐसी प्रजाति कि इसमें साल भर फूल से फल बनते रहते हैं।
1: जी
0: थोड़ा सा साल भर में 2 समय ऐसा होता है कि तब थोड़ी सी हैवी फ्लावरिंग होती है या फ्रूट बनता है, वैसे फल मिलेंगे पूरा साल। तो उस समय जिस समय फूल से फल बन रहा हो या फल का विकास हो रहा हो, उस समय हमारे पौधे को नमी का बहुत ही ध्यान देना जरूरी
1: और
0: होता है।
1: खुराक भी?
0: जी, खाद की आवश्यकता बहुत कम होती है, लेकिन जब हमारा फूल से फल बन रहा हो, जैसे हमको इसमें यूरिया का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, NPK आप डाल सकते हो, पोटास से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें ड्रिप इरिगेशन से आप उसको ऐसे दे सकते हो, मतलब पोटास की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए।
1: ताकि मिठास रहे, क्वालिटी
0: जी,
1: रहे,
0: क्वालिटी, पोटास,
1: रोग धोक और कीड़ा मकोड़ा न
0: जी,
1: लगे।
0: उनका थोड़ा प्रभाव कम होगा।
1: तो कुल मिला जुला करके केला अमरूद उत्पादन करके आप खुशहाल हैं?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि जो हम पारंपरिक खेती पहले करते थे उनकी अपेक्षा में जो केला में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, और केला के विकल्प में जहां पर केला नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणवश, चाहे फंगस के कारण या अन्य कोई कारण, तो उसके विकल्प में ताइवान पिंक अमरूद, इनकी खेती मेरे हिसाब से उपयुक्त।
1: पूरे साल की लागत की बात करें तो एकड़ पीछे लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना ले लेते हैं,
0: जी
1: और आपका मुनाफा कितना होता है केला अमरूद में?
0: डॉक्टर साहब, इन चीजों को मैं अलग अलग करके बता सकता हूँ, साल भर में तो नहीं बता सकते। केला में लगभग 1.25 लाख रुपए एकड़ की लागत आती है, अगर औसत दर्जे का मुझे रेट मिल जाए तो लगभग 3-3.5 लाख का बिक जाता है। आप ये सोच सकते हैं कि 2 लाख रुपए से 2 लाख या 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ तक हमको शुद्ध लाभ हो जाएगा, लेकिन ये 15 महीने में होता है।
1: और अमरूद में?
0: अमरूद में लगभग 1 एकड़ की लागत एक साल में प्रथम वर्ष होगी लगभग 50-60 हजार रुपये और द्वितीय वर्ष में इसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि अमरूद में एक काम ज्यादा होता है, हर साल उसकी कटिंग करना, और जितना आप कटिंग करोगे, जितनी अच्छी आप कटिंग करोगे, आपको उत्पादन उतना ही अच्छा मिलेगा, फल का साइज और उसका स्वरूप दोनों बेहतर होंगे।
1: जो अब तक का आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: हम किसान भाइयों से अपने यही निवेदन करेंगे कि अगर वो केला उत्पादन करते हैं तो केला में जो उनको लाभ हो रहा था, जैसे उनको काम करने में अच्छा लग रहा था, तो अगर किन्हीं कारणवश केला उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं तो उनका आकर्षण इधर अगर होता है तो उसके विकल्प स्वरूप अच्छी चीज है।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी, मेरा मोबाइल नंबर है 800-900-2122, 800-900-2122, 800-900-2122।
1: हरीश कुमार वर्मा भैया, आज आप कार्यक्रम में आए, और जो आपकी कहानी थी कि आप केला के लाल तो है ही हैं, आपने नई शुरुआत की है अमरूद उत्पादन की और तरबूज उत्पादन करके आप खुशहाल हैं, और किसान भाई आपसे सीख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: रामजीत भैया।
4: हाँ ज्योति बहनी।
3: देखो खेती पाती करक समय अगर हमका मौसम का हालचाल बढ़िया मिल जाए
4: हाँ।
3: तो देखो कितना हमका जो है सुविधा हो जाते। तो देखे हम तुम्हारे हाथे में यहाँ मौसम की जानकारी है।
4: भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 13 अगस्त से जौन 19 अगस्त तक का मौसम है कि संभाग में कहूं कहूं पर गरज चमक के साथ बौछार पड़े के संभावना है और चेतावनी देखा जाए तो मेघ गर्जन के साथ वज्रपात के चेतावनी है।
3: तो भैया किसान पंच अपन तैयारी रखे अपने खेतन की मेढ़ सुधिया लिए भैया।
4: बिल्कुल बहनी बहुत जरूरी है। और अब पंच भाई का बताए दिन जाए अपने कार्यक्रम का पता। तो कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन नंबर 226001।
3: रामजीत भैया।
4: हाँ ज्योति बहनी।
3: अब देखो हम अपन ईमेल आईडी बता दे। तो ईमेल आईडी लिख लिए सब लोग farmandhomeairlko@gmail.com।
4: बिल्कुल बहनी। और देखो समय हो चला है तो पंचन से लीन जाए आज्ञा। जय

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कानपुर में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर घर घर पहुंचा ये अभियान। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में लागू हो गया नया ड्रेस कोड। 15 अगस्त से नई पोशाक में नजर आएंगे अर्चक। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 15 अगस्त को प्रदेश के सभी जनपदों में लगाई जाएगी वंदे मातरम वाटिका। राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर किया जाएगा 150 पौधों का रोपण। और राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में निकाली गई तिरंगा यात्रा में जीपीओ और पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अयोध्या में गांधी पार्क के सामने से शुरू हुई यात्रा का शुभारंभ राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा ने किया। वहीं बाराबंकी में जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश राही तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। बिजनौर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मैनपुरी में अभियान के तहत पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। फतेहपुर में स्कूली बच्चों ने 2 किलोमीटर लंबी तिरंगा मानव श्रृंखला बनाई। मऊ में प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कानपुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचा है।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में तिरंगा अभियान घर घर पहुंच रहा है। मैं प्रदेशवासियों से कानपुर वासियों से अपील करता हूं, घर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर के अपने घर पर तिरंगा फहराएं। और बिठोर के हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गढ़ रहा है, यहाँ से ऐसी शुरुआत करें कि अपना राष्ट्र प्रेम, अपना राष्ट्र प्रथम की भावना से हम घर घर जाएंगे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में अपने प्रदेश को नंबर एक पर ले जाने का काम करेंगे।
0: प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद कानपुर देहात में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा में स्कूली बच्चों और स्थानीय नागरिकों ने लगभग 1200 फीट लंबे तिरंगे के साथ हिस्सा लिया। प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बहराइच में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने तिरंगा अभियान के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
2: मैं धन्यवाद देता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री जी और उस विचारों को, उस सोच को, जो आज पूरे देश में एक साथ हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। पूरे देश भर के कोई गांव, गली, शहर, नगर कुछ भी नहीं बचेगा जहां तिरंगा ना हो। और ये सोच जो डेवलप हुई है, निसंदेह मुझे भारत के प्रति, अपने देश के प्रति एक करने के लिए, संगठित होने के लिए एक बढ़िया अवसर देती है।
0: अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्था में बदलाव के क्रम में रामलला की सेवा में लगे सभी अर्चक अब एक समान ड्रेस में नजर आएंगे। धार्मिक समिति ने अर्चकों के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया है, जिसे 15 अगस्त से लागू किया जाएगा। धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास ने बताया कि नए ड्रेस कोड के तहत सभी अर्चक पीत वस्त्र धारण करेंगे।
3: हमारी संत समिति ने निर्णय लिया है कि वो सूचीबद्ध जो यानी कि सिला हुआ वस्त्र ना हो, ऐसा रेशमी सिल्क का वस्त्र होगा, नीचे धोती और ऊपर उत्तरीय होगा। शरदकालीन ऋतु में ऋतु के अनुसार होगा वस्त्र, लेकिन कलर वही रहेगा, पीत वस्त्र में रहेंगे सभी लोग, ये तय किया गया है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुईं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के उस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय

0: ईडी को आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया गया था। उच्चतम न्यायालय की वाद सूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्याबागची एवं न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ इस मामले पर 17 अगस्त को सुनवाई करेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का 31वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। दीक्षांत समारोह में 34,947 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने विज्ञान और तकनीक की आवश्यकता पर बल दिया।
1: जल भवन में 5 करोड़ का खर्च करके एक सुंदर इसमें 3 प्रकार का एक 28 लाख रुपया का खर्च करके इसरो का बड़ा सेंटर बनाया। इसरो के चेयरमैन खुद ये देखने के लिए आए और हमारे बच्चों को तैयार किया और आज 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चे जिस तरह उसका देखाते थे समझाते थे कि है क्या टेक्नोलॉजी हम गगनयान के लिए क्या काम कर रहे हैं, चंद्रमा की धरती पर हम कैसे उतरे, ये सब आज इतने होशियार हो गए हैं। मैं जाती हूँ तो मुझे भी समझाया।
0: प्रदेश के वन विभाग की तरफ से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 15 अगस्त को सभी 75 जनपदों में वंदे मातरम वाटिका स्थापित की जाएगी। इसके लिए वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सामाजिक वानिकी दीपक कुमार ने बताया कि इस विशेष अभियान में आम नागरिकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित होगी। एक रिपोर्ट।
2: प्रत्येक जनपद में एक चयनित स्थान पर 150 पौधों का रोपण किया जाएगा जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकृति को समर्पित श्रद्धांजलि होगी। वंदे मातरम वाटिका में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप छायादार, फलदार और पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। अवध वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी सितांशु पांडे ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर कुकरैल पिकनिक स्पॉट में वंदे मातरम वाटिका को विस्तार दिया जाएगा। यहां एक अशोक चक्र बनाया गया है, इसकी 24 तीलियों के बाहर के क्षेत्र में अशोक के पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: रक्षाबंधन पर्व के लिए प्रदेश सरकार ने व्यापक परिवहन व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने 26 से 31 अगस्त तक प्रदेश में अतिरिक्त बसों के संचालन के निर्देश दिए हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि त्योहार से पहले और उसके बाद यात्रियों की संख्या को देखते हुए परिवहन निगम को अधिकतम बसों का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर यात्रियों की अधिक आवाजाही के मद्देनजर इस दिशा में अतिरिक्त सेवाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया है। यात्रियों की मांग के अनुसार लखनऊ और कानपुर समेत विभिन्न प्रमुख गंतव्यों के लिए भी अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ में गोमती नदी को सीवेज प्रदूषण से मुक्त करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। शहर से निकलने वाले सीवेज को सीधे गोमती नदी में पहुंचने से रोकने के लिए नालों की टैपिंग, फ्लो डायवर्जन, एसटीपी की क्षमता बढ़ाने और नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। ड्रोन सर्वे के बाद गोमती नदी में गिरने वाले 45 नालों की पहचान हुई है। राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक जोगिंदर सिंह ने बताया कि विभाग ने नए नालों की पहचान की है जिन्हें जल्द शोधित किया जाएगा। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय होने के बाद कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी है। गोरखपुर में आज तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अयोध्या और आसपास के जिलों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उधर बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के चलते कई नदियां उफान पर हैं। बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा नदी, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी व अयोध्या में घाघरा खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कानपुर में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर

घर घर पहुँचा ये अभियान। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में लागू होगा नया ड्रेस कोड। 15 अगस्त से नई पोशाक में नजर आएंगे अर्चक। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 15 अगस्त को प्रदेश के सभी जनपदों में लगाई जाएगी वंदे मातरम वाटिका। राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर किया जाएगा 150 पौधों का रोपण। और राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश जारी। मौसम विभाग

बारिश जारी। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को हमारा स्नेह भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपके द्वारा प्रेषित 7:15 पर भेजे गए संदेशों को शामिल कर रहे जो कि बड़ी संख्या में भेजे गए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

किशोर कुमार और आशा भोसले को अभी आपने सुना, फिल्म थी यादों की बारात, बोल मजरू के थे, संगीत दिया था आर डी बर्मन ने, इस गीत को सुनना चाहा था बागपत उत्तर प्रदेश से चंद्र ढींगिया नमन ढींगिया अपार ढींगिया, मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एम पी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जामिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक स्वाति, जमशेदपुर से बिपिन जायसवाल, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम आशीष विश्वकर्मा, छत्रपति जी शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा शुभम अक्षय सेन, शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता गौरव, ईशान कार्तिक, आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदनी जंगेल, राहटगांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से रुचिका रामेकर, दिलीप अक्षय रुद्रा हर्षा और समस्त रामेकर परिवार, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक, जियाउल हक डावर, पिपीरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी, राकेश, रिशिता, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्माला सुरलकर, आरती सुरलकर, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर एमेकर, प्रमोद प्रदीप एमेकर, बिहार से गोकुल चौक गंगा जला, सहरसा से राधे कुमार विहारती, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी और इनके सभी साथी, गावना थाना पंजाब से हरदिंदर सिंह चंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार हैप्पी राय, कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता निकेत, रोहिणी ऋषिकेश, जीविका सानिका, पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा अविका, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेक यशोधरा शव्या, नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा प्रथमेश निवृत्ति, संजय चौहान, करणवीर हाउस भूचा कैचिया भटिंडा पंजाब से परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, दीपेंद्र, वीरेंद्र, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत, ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंदसौलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंदसौलिया, मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइड़े, मोहन करांगले, जीगांव विदर्भ से बसंतराव भोजने, बी एस नवानकर, लसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमारी, डी के साहू, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता की सुतासु, अर्णवानंद और सत्यमानंद, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से

पी एस नवान कर्नारायण इंगले सोपान तायडे आशीष मोहरकर बसंतराव भोजने बुलठाणा महाराष्ट्र से वासुदेव बोधबड़े अनीता और रमेश राव गाठोड़े ने और ये सुनते हैं धरती कहे पुकार के फिल्म के गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में बोल मजरू के हैं संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मजबूर के बोल अभी आपने सुने मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म थी धरती कहे पुकार के। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के लिए हमें संदेश प्राप्त हुए ब्रज रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह नगला राणा से, राधेलाल सारस्वत सिहोरा से, शारदा प्रसाद प्रजापति से राधा सिटी मथुरा, राजू लवानिया खंदौली आगरा से, यादराम जी उस पार मथुरा, वीरेन सिंह भंडी चौराहा मथुरा, नेतपाल सिंह नकला विजयी राया, भजन लाल कुमार राया, महेश चंद सदर बाजार मथुरा, सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जिला जालौन, पंचम लाल चतुर्वेदी दौसा राजस्थान से, बकरी मौला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से, मनभावन नैना सत्यनारायण

कपिल, शोभा, फुंदीबाई बाकरी, यहीं से हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, कान्हा, श्रीमती मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी, उच्च भट्टी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी और अन्नू गोस्वामी, अडारघाट, नंदघाट, छत्तीसगढ़ से माखनलाल वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा, बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब से सुधा शर्मा, काजल, मीरा, सोनाली शर्मा, अनामिका शर्मा, शिव मंदिर दालमंडी से राजू और राजेश कुमार यादव, बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता बमारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू, धनोरा विटाली से जिला बुढ़ाना से धनोर भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल, कल्याण मुंबई से किशोर हेवराले, सुजाता हेवराले, प्रतीक हेवराले, तुरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमल कांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवानकर, श्रीमती सरिता, प्रणेता, प्रिंस एकांश, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी, मनीष पवार, पहाड़गंज मुल्थाड़ी ठाणा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक, मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना, बुशरा, गुलिस्ता और नंदनी अंजलि, दिल्ली से डॉक्टर दबालोन अंसारी, रियाज अंसारी, आप हैं सिबंद पार्क वीरकाम से अजीत भावसार, प्रमिला भुवेश, सनी भावसार, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान और इसरान, सिंगाड़ा तलाई खंडवा मध्य प्रदेश से राधेश्याम यादव, श्रीमती प्रभा यादव, शालिनी, कमेश और भारती यादव, महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत और गुरु महाराज नीरेंद्र राजपूत, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया, कीर्ति भारती, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रजाक मोहम्मद, शमीम, इमरान खान, इरफान, बकेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव, शनि चौक खंडवा से उमाराज, कुलदीप, जगदीश, प्रभा रानी, 715 पे ये संदेश, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल मेहरा, कुणान मेहरा, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान, रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजूबाई, युवराज सिंह, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमले, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय, राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रुचिका, समस्त रामेकर परिवार, गांव के रोज जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदेव, अनहद और छोटा गुरशब, रिगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने

0: बोल मजरू के थे, धुन तैयार की थी राहुल देव बर्मन ने। इस गीत को सुनना चाहा था। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित, बेबी कर्पी और बेबी बॉय हिमांश। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूना राम और कृष्णा देवांगन। तेलंगाना वारंगल से गजरा राजाउद्दीन, फसाउद्दीन, अफसाना, तबस्सुम और जुबेरिया। अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोडना ने अर्चना, हिरमा मारन, किशोर धनाडे और हिम्मत राव, संजय कुमार। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान, पूजा परिहार। पद्मटा की स्नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति, रोहतास बिहार से सोनम सिंह, अनामिका सिंह। दिल्ली से रेशमा अंसारी, सना, शकीला और वलीउल्ला अंसारी। लक्ष्मणपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवन लाल नेमे, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल, निशा। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ, भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू। जलालाबाद व्यास से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। चांदी चौक पंडरिया से पवन कुमार, प्रभावती सेन, लकी, विकी, नानू, रविंद्र, रौनक सेन। नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज, पी आर जैन। चंडीगढ़ से सतीश, अनेजा, विमला, नेजा। श्री गणेश विकाट, श्रीरामपुर से डी अशोक कुंभार, अविका, जीविका, सानू, अर्चना। कोयते बस्ती पुरावले से अजय सोनवने, करिश्मा, साईशा सोनवने। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा, आसमा खातून। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार, साईं गायकवाड़। करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानुगुला गोपाल माहेश्वरी, प्रमलिका, विश्ववर्धन, विघ्नेश। भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी। तालुका निवास खुपट्टी से पंडू माया, शिवांश, चंद्रकला पोपट घट, देवीदास पोपल घट। बुलढाणा महाराष्ट्र से राजू माठे, गजानन माठे, संजान माठे, ज्ञानेश्वर माठे, देवेंद्र भाटकर। धरतेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा। कृष्टी पटवा। और इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं का हृदय से आभार। नमस्कार। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।
1: अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा। लेखिका हैं

पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा का 271वां सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इस दौरान उच्च सदन की उत्पादकता महज 39.17% रही। उच्च सदन में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी तथा नीट प्रश्न पत्र लीक का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के हंगामे और नारेबाजी के कारण उच्च सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही। सत्तापक्ष एवं विपक्ष के बीच आज तक गतिरोध दूर करने पर सहमति न बन सकी। बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले उच्च सदन में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित किया गया, जिसके तहत राज्यों को खनिज अधिकारों पर अतिरिक्त कर लगाने से रोका जाएगा। लोकसभा में यह विधेयक 12 अगस्त को पारित हो चुका है। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के जरिए केंद्र सरकार ने खनिज वाले क्षेत्रों में खनिज संपदा की मात्रा से संबंधित निर्धारित मानकों के अनुसार खनिज युक्त भूमि के विनियमन को भी अपने नियंत्रण में लेने का प्रावधान किया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एक रूपता को सुनिश्चित करना है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना, पत्थर, लौह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है, जबकि 49 गौण खनिजों के मामले में राज्यों के अधिकार बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए कोयला बेहद महत्वपूर्ण है और भारत में बिजली उत्पादन का 73% कोयले से होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए बिजली की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। रेड्डी ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कोयला ब्लॉकों का आवंटन घोटाला था। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में खनिजों का आवंटन पारदर्शी तरीके से नीलामी के माध्यम से किया गया है और पहले के विपरीत अब किसी ब्लॉक का आवंटन नामांकन के आधार पर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 2014-15 के 65% से बढ़कर 85% हो गई है, जबकि कोयला राजस्व में उनकी हिस्सेदारी 51% से बढ़कर 96% हो गई है। मंत्री ने कहा कि केंद्र को खनिज राजस्व का केवल करीब 11% हिस्सा ही मिलता है, जबकि 88% हिस्सा तो राज्यों के पास चला जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संशोधन से किसी भी राज्य को राजस्व का नुकसान नहीं होगा। रेड्डी ने संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 54 का हवाला देते हुए कहा कि ये संसद को जनहित में खानों और खनिज विकास को विनियमित करने का अधिकार देती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को विनियमित करने और उसके विकास के लिए कराधान एक महत्वपूर्ण माध्यम है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाजपा के तरुण चुग, बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी, अंधना द्रुमुक के डॉक्टर एम थंबीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डॉक्टर वी शिवादासान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, द्रमुक के एसआर शिवलिंगम और डीएमडी के सदस्य एल के सुधीश ने हिस्सा लिया। कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। कुछ सदस्यों ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग भी की। रेड्डी ने कहा कि खनिज के क्षेत्र में राजकोषीय व्यवस्था को निश्चित, स्थिर और पूर्वानुमेय बनाने से राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को बढ़ावा मिलेगा और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को हासिल करने में मदद मिलेगी। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया। इससे पहले सदन ने द्रुमुक सदस्य तिरुचि शिवा

और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने के लिए पेश संशोधन को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। कुछ विपक्षी सदस्यों ने संशोधन पर मत विभाजन की मांग की, लेकिन सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में हंगामे के बीच ऐसी प्रक्रिया कराई नहीं जा सकती। इससे पूर्व सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां उन्होंने भाषण दिया था। खड़गे ने मांग की कि हल्द्वानी में मंच का शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। सभापति सीपी राधाकृष्णन तथा सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस घटना की निंदा की। सदन के नेता नड्डा ने कहा, पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। सभापति राधाकृष्णन ने भी घटना की निंदा की और सरकार से मामले की जांच कराने को कहा। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता एक अपराध है, इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। इसके बाद सदन में खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हुए राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संसदीय परंपराओं के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता महज 39% रही। हालांकि व्यवधानों के बीच सदन ने 12 विधेयकों पर विचार किया और उन्हें पारित या वापस किया। अपने परंपरागत संबोधन में राधाकृष्णन ने कहा कि राज्यसभा के 271वें सत्र के समापन पर मैं इसकी कार्रवाई को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता हूं। ये खेद का विषय है कि सत्र लगातार अव्यवस्था और बार बार हुए व्यवधानों से प्रभावित रहा, जिससे सदन का कामकाज बार बार बाधित हुआ। उन्होंने कहा कि बहुमूल्य कार्य घंटों के नुकसान के कारण राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और बहस का अवसर भी सदन को न मिल सका। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। सभापति ने कहा कि व्यवधानों के बावजूद सदन अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा करने में सफल रहा है और 12 विधेयकों पर विचार करने के साथ उन्हें पारित किया गया या लोकसभा को लौटाया गया है। इनमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान या इसके गान को दंडनीय बनाने संबंधी प्रावधान वाला राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक, परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 तथा केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रावधान वाला केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर कार्यवाही में हम सभी सामूहिक रूप से भाग लेते, अपने बहुमूल्य सुझाव देते और सार्थक विचार विमर्श में शामिल होते तो स्थिति निश्चित रूप से अलग होती। राधाकृष्णन ने बताया कि सदन में सिर्फ 37 घंटे 49 मिनट काम हुआ और इसकी उत्पादकता 39.17% रही। उन्होंने बताया कि सदन के दौरान 285 तारांकित प्रश्न, शून्यकाल के तहत 380 विषय और विशेष उल्लेख के जरिए 380 मुद्दे उठाने का अवसर था, लेकिन इनमें से केवल 16 प्रश्न, शून्यकाल के तहत 52 विषय और 93 विशेष उल्लेख ही सदन में किए जा सके। सभापति ने कहा कि सदस्यों ने लोगों की आवाज को उठाने के लिए उपलब्ध अवसरों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि सदन के वरिष्ठ सदन के रूप में इस गरिमापूर्ण सदन की तर्कपूर्ण बहस, गरिमामय असहमति और विचारशील कानून निर्माण को बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी है। बार बार होने वाले व्यवधान अंततः लोगों के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रभावित करते हैं।
उन्होंने सदस्यों से

0: संसदीय आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने तथा संस्था की गरिमा और पवित्रता की रक्षा करने का आह्वान किया। सभापति ने बताया कि नवनिर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए 2 दिवसीय अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संसदीय कार्य प्रणाली, प्रक्रिया और सदस्यों से अपेक्षित आचरण के मानकों के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में 35 सदस्यों ने हिस्सा लिया। राधाकृष्णन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो इस गरिमापूर्ण सदन की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप अपनी संसदीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के एक नए संकल्प के साथ मिलेंगे। इससे हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं और हमारा लोकतंत्र हमेशा मजबूत होगा। और लीजिए, अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। इसके लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई और मॉनसून सत्र में निचले सदन की कार्य उत्पादकता 19% रही। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के चलते लोकसभा में लगातार गतिरोध बना रहा। इसे दूर करने के लिए विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के बीच आज तक सहमति बन नहीं पाई है। मॉनसून सत्र के दौरान केवल 28 और 29 जुलाई के दौरान सदन में सामान्य माहौल देखने को मिला था, जब लगभग 10 घंटे तक लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई थी। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही 11 बजे प्रारंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने को कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वो अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयकों, पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के गायन की रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता और सदस्य सदन में मौजूद थे। हालांकि कार्यवाही स्थगित होने के बाद अपने संवाददाता सम्मेलन में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि इस सत्र में लोकसभा की कार्य उत्पादकता केवल 19% रही। संसद का वर्तमान मानसून सत्र बीते 20 जुलाई को प्रारंभ हुआ था। सरकार ने कहा था कि वो छात्रों के विषय पर चर्चा कराने और इस पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब के लिए तैयार है। हालांकि विपक्ष का कहना था कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर शाह के जवाब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग करने के मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हैं तथा वो इन तीनों मांगों पर कायम है। लोकसभा अध्यक्ष पूरे सत्र में विपक्षी सदस्यों से बार बार प्रश्नकाल चलने देने, विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने और कार्रवाई में सहयोग करने की अपील करते रहे, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। सत्र के आखिरी दिन तक ये गतिरोध टूट न सका। सदन ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में 29 जुलाई को परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमलों की बरसी पर 6 अगस्त को पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन और वैश्विक शांति एवं सौहार्द के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अध्यक्ष बिरला ने सदन में कुछ दिन प्रश्नकाल के दौरान ग्लासगो के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति पर घोषणाएं।

सुरेश गुप्ता और साथियों के स्वर में अभी आपने देश का सुना। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। एक ही फिल्म से आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं नमक हलाल फिल्म के कुछ गीत। गीत लिखे हैं अनजान ने।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

आशा भोसले, पप्पी लहरी और शशि कपूर को अभी आपने सुना, और आइए अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में नमक हलाल फिल्म का अगला गीत।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले के गाए नमक हलाल फिल्म के इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार

0: गहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
2: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
3: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
4: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
5: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल से स्पीड अप करा रहे, ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है, उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं, होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसे ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत

0: संयुक्त बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
1: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 120 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलारूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
2: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और

0: उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मन्ना डे को अभी आपने सुना, फिल्म थी काबुलीवाला। अब शब्द रचना प्रेम धवन की थी, धुन तैयार की थी सलील चौधरी ने।

ओपिनियर के संगीत निर्देशन में साहिर की शब्द रचना भी आपने सुनी। मोहम्मद रफ़ी, बलबीर और साथियों की आवाज़ों में फिल्म थी नया दौर।

0: अनुराधा पोडवाल और मोहम्मद अजीज के गाए आज़ाद देश के गुलाम फिल्म के इस गीत के साथ ही चितपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने अभी यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है। उड़ने की पहल पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में सचिव एवं ICMR महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल के साथ हर्ष रंजन की विशेष बातचीत।
2: भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान को नई दिशा देने और देश के युवाओं को विज्ञान तथा अनुसंधान से जोड़ने की दिशा में ICMR लगातार महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में शाइन 2026, शाइन मतलब साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोरर्स का दूसरा संस्करण 11 और 12 अगस्त को देश भर में आयोजित किया गया। देश

के 83 ICMR केंद्रों पर स्कूली बच्चों को प्रयोगशालाओं में जाने, वैज्ञानिकों से बातचीत करने और स्वास्थ्य अनुसंधान को सीधे तौर पर समझने का मौका मिला। हिमाचल प्रदेश के केलोंग से लेकर केरल तक और दमन दीव से लेकर नागालैंड तक देश के अलग अलग हिस्सों से लगभग 30,000 बच्चे इस पहल से जुड़े हैं और इसी के बारे में हम आज बातचीत करेंगे।

0: के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल। डॉक्टर बहल, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: डॉक्टर बहल। सबसे पहले शाइन 2026 के सफल समापन पर आपको ढेर सारी बधाई हो। दो दिनों तक ये चला, देश भर के 83 केंद्रों पर हजारों स्कूली बच्चों ने ICMR की प्रयोगशालाओं और अनुसंधान गतिविधियों को करीब से देखा। आपके लिए इस पूरे कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव क्या रहा?
1: ये कार्यक्रम हमने पिछले साल शुरू किया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि हर युवा को, हर स्कूली बच्चे को एक मौका मिलना चाहिए कि वो एक दिन एक साइंटिस्ट की तरह व्यतीत करे, कम से कम साल में एक बार। तो इससे प्रेरित होकर हमने ये प्रोग्राम पिछले साल शुरू किया था, जिसमें 10,000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस साल 30,000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है। और जो मेरा अनुभव अपना रहा इसमें, जो सबसे ज्यादा जिसने मुझे इम्प्रेस किया, वो ये था कि बच्चों की जिज्ञासा जो हमने देखी और जिस तरह के सवाल उन्होंने पूछ रहे थे मुझसे भी, क्योंकि मैंने भी पर्सनली दिल्ली में कुछ बच्चों से इंटरैक्ट किया, और जिस तरह के सवाल वो प्रयोगशाला में और जो एग्जीबिशन लगी थी उनमें और जो साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्शन में जिस तरह से सवाल पूछ रहे थे, उसको पूछ के बहुत ही प्रसन्नता हुई कि बच्चों में इतनी जिज्ञासा है, इतना कुछ वो जानना चाहते हैं और इतने अच्छी तरह से उन्होंने इसको लिया, और बहुत अच्छा फीडबैक भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये हमें दिया है कि उनको इस प्रोग्राम से आने से उनको कितना अच्छा इस बारे में लगा और आगे उनकी सोच पे इसका क्या असर।
0: बच्चे यानी नेक्स्ट जनरेशन ही हमारे देश के असली भविष्य हैं। डॉक्टर बहल, क्या बच्चों ने कोई ऐसा सवाल पूछा जो आपको अभी तक याद है?
1: एक्चुअली 3 बच्चों ने मुझसे ऐसे सवाल पूछे जो मुझे लगा कि कोई बड़ा साइंटिस्ट भी पूछ सकता है ऐसे सवाल, इतने अच्छे सवाल थे। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि हम ICMR कैसे आगे आने वाले किसी भी महामारी के लिए तैयारी कर रहा है, कैसे हम जल्दी वैक्सीन बना पाएंगे, कैसे हम जल्दी कोई डायग्नोसिस बना पाएंगे, इसके लिए ICMR क्या कर रहे हैं। तो इतना अच्छा सवाल था क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है ये और ICMR इस एरिया में इतने अच्छे काम कर रहा है पहले से ही। तो मैंने अच्छे से बच्चों को इस बारे में समझाया कि किस तरह हम महामारियों को और कोई भी आने वाली बीमारी को, नई बीमारी को किस तरह से ढूंढेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि हमारे देश के होने वाले नागरिक, जो विकसित भारत के शायद पहले नागरिक होंगे, वो बच्चे इस तरह का बहुत ही जिम्मेवारी वाला सवाल पूछा उन्होंने। इसी तरह एक बच्ची ने पूछा कि वायरस और कैंसर का क्या रिलेशनशिप है, और जैसा आपको पता है कि अभी ही हाल ही में HPV वैक्सीन लॉन्च हुई है, और ना मुझे अच्छा लगा कि बच्ची पूछ रही है कि कैसे वायरस जो है वो कैंसर करता है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। फिर उसने ये भी पूछा कि क्या कैंसर की कोई नई तरह की वैक्सीन बन रही है। तो मुझे ये सब चीजें तो कटिंग एज है और बच्चों की ऐसी जिज्ञासाएं हैं, तो ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा और उनको इसका जवाब देने में मुझे अति प्रसन्नता हुई कि किस तरह से हम कैंसर को, जैसे सर्वाइकल कैंसर या हेपेटिक कैंसर को वैक्सीन के जरिए हम रोक सकते हैं, किस तरह से जो इम्यूनिटी हमारी है, इम्यून सिस्टम है, वो हमारे को कैंसर से बचाता है, और हम किस तरह से उसके ऊपर नए नए ट्रीटमेंट्स कैंसर के ला रहे हैं, और पूरे विश्व में कैंसर पे किस तरह का रिसर्च हो रहा है, ये बताने का मुझे मौका मिला ऐसे प्रश्न को पूछ सुनने से। और भी कई तरह के क्वेश्चन मैंने उनके देखे जब मैं प्रयोगशाला में गए और वहां पर पूछ रहे थे कि जिस तरह मस्कीटो का लाइफ साइकिल है, इसका क्या मतलब होता है, क्या ये सिर्फ जो अंडे हैं ये सिर्फ पानी में पनपते हैं, उस तरह उन्होंने देखा कि किस तरह से ये होता है। तो ये सब चीजें देख के बहुत अच्छा।
0: बिल्कुल, आपसे अगला सवाल हमारा ये है कि शाइन में कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों के साथ सीधे बातचीत का अवसर मिला। क्या आपका मानना है कि ऐसी पहल से बच्चे साइंस को केवल अब एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं बल्कि करियर और नेशन बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखना शुरू कर चुके हैं?
1: जब किसी चीज को बच्चा देखता है और एक अपने स्कूल में एक विषय की तरह देखता है, एक किताब पढ़ के देखता है और

0: कुछ छोटे मोटे प्रयोग करता है, लेकिन जब वो आके ये देखता है कि किस तरह से रिसर्च जो चीजों को चेंज कर रही है, कोई नई चीज, नया डायग्नोस्टिक या नई वैक्सीन बनाने में मदद कर रही है, तो उस एज पे, उसके दिमाग पे उसका एक बहुत अच्छा और बहुत गहरी छाप पड़ती है, और उससे उसकी ना सिर्फ जिज्ञासा बढ़ती है बल्कि उसको ये भी समझ आने लगता है कि ये भी एक ऐसा चीज है जो हम कर सकते हैं। यही नहीं कि हम सिर्फ डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या हम सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बने या कुछ और इस तरह की अपने प्रोफेशन करें, बल्कि हम साइंटिस्ट भी बन सकते हैं।
1: और इस काम में आईसीएमआर, जैसा कि आप बता रहे हैं, बच्चों को मदद करने के लिए बेहद तत्पर है। डॉक्टर राजीव बहल, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। जिनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, प्रेसिजन मेडिसिन और डिजिटल हेल्थ बड़ी तेजी से स्वास्थ्य क्षेत्र को बदल रहे हैं। क्या एआई और नई टेक्नोलॉजीज के आने से आने वाले सालों में भारत के हेल्थ रिसर्च को कोई इसमें फंडामेंटल चेंजेस, बदलाव आ सकता है?
0: बदलाव आ सकता है और अवश्य ही आएगा, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजीज भारत ने अपने आप भी विकसित किए हैं, अपनी हमारी जिस तरह की कैपेसिटीज डेवलप हुई हैं इस देश में पिछले सालों में, जब से हम आजाद हुए हैं तब से हम अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पिछले एक दशक में खास तौर एक तरह का कॉन्फिडेंस जो आया है कि हम इस नई टेक्नोलॉजी में ना सिर्फ इसको यूज करेंगे बल्कि हम इसमें अग्रसर रहे। जिस तरह से भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी में उदाहरण के तौर पे यूपीआई को यूज करके जिस तरह से डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल उसमें अपना सिक्का जमाया पूरे विश्व में, इसी तरह से भारत डिजिटल हेल्थ में बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम हेल्थ केयर को इम्प्रूव करेंगे, ये ऑलरेडी हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह जीनोमिक्स इंडिया में हो रहा है, ऐसा इस तरह की चीज जो आज हम कर रहे हैं वो हम वही सब कर रहे हैं जो विश्व में कहीं भी ऐसी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं वो हमारे पास भी उपलब्ध हैं।
1: डॉक्टर साहब, क्लाइमेट चेंज भी स्वास्थ्य से एक तरीके से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, और क्लाइमेट चेंज के कारण नई तरह के की हेल्थ चैलेंजेस, इन्फेक्शस डिजीजेस का खतरा बढ़ रहा है। आईसीएमआर इन इमर्जिंग हेल्थ थ्रेट्स के लिए अपनी रणनीति में, खासतौर पर रिसर्च की रणनीति में, किस तरीके की बदलाव ला रहा है या क्या तैयारी कर रहा है?
0: क्लाइमेट चेंज इसी रफ्तार से होता रहा, इसी रफ्तार से ग्लोबल वार्मिंग होती रही, तो ये हमारे लिए कई तरह की प्रॉब्लम्स करेगा। हेल्थ उसमें से एक प्रमुख प्रॉब्लम है जिसको क्लाइमेट चेंज से हमें देखें तो बहुत मुश्किल होने वाली है अगर इस तरह से क्लाइमेट चेंज होता रहा। तो रिसर्च क्या कर रहा है और रिसर्च इस बारे में क्या हम कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमने ये एस्टैब्लिश किया है कि इस तरह की वार्मिंग से, इस तरह के क्लाइमेट चेंज से क्या असर आएंगे और क्या असर हो रहे हैं, जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीजेज में अब डेंगी जिसको कहा जाता है, जो बुखार आता है डेंगू होता है,
1: जी
0: वह बीमारी जो है वो उन इलाकों में भी बढ़ रही है जहां पहले कभी नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ऐसे ऐसे जो वेक्टर है डेंगू का, जो मच्छर है, वो वैसे वैसे उसका प्रकोप बढ़ रहा है। इसी तरह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जैसे कि कार्डियक डिजीज और हाइपरटेंशन, ये बीमारियां जो हैं इनका प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है जब क्लाइमेट चेंज होता है। ऐसे ही जो किडनी फेलियर है देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये भी डिहाइड्रेशन, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काफी इसका प्रभाव रहता है। तो पहली चीज तो हम ये कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के प्रभाव हो रहे हैं उसको समझ के वो हम सामने लाए। जो हमारी रणनीति है वो है इनकी एमिलियोरेशन, यानी कि इनको किस तरह से एक मल्टी डायमेंशनल, एक मल्टी सेक्टोरल इंटरवेंशंस को रखते हुए इनको किस तरह से हम इन प्रभावों को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा काम करने का समय है क्या हम उसमें बदलाव ला सकते हैं? क्या हम भरी दोपहर में लोगों को बाहर काम ना करना पड़े इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं? क्या हम इस तरह के घर बना सकते हैं कि जो उस तरह से गर्म ना हो, जैसे कि हमारे ऑर्डिनरी घर होते हैं, तो उसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं?

0: आप मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि उपचार के साथ साथ बचाव यानी प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन पर भी ICMR ध्यान केंद्रित कर रहा है और उसके बारे में भी लोगों को जागरूक बना रहा है।
1: बिल्कुल, ये इंटरवेंशंस जो प्रिवेंशन के हैं और हेल्थ के जो दुष्प्रभाव क्लाइमेट चेंज के हैं उससे बचना सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसका इलाज, जैसे अगर हीट स्ट्रोक और दूसरी तरह की जो तकलीफें होती हैं उसका इलाज करना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी हमारी यही रहेगी कि हम किस तरह से एक तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको रोकें और दूसरा कि उसके प्रभावों को कम करें।
0: डॉक्टर राजीव बहल, यदि शाइन में शामिल कोई 15-16 साल का बच्चा ये कार्यक्रम सुन रहा है और आपसे ये सवाल पूछता है कि मैं अभी से वैज्ञानिक बनने के लिए क्या कर सकता हूँ, तो आप उसे क्या सलाह देंगे?
1: तो मेरी सबसे पहली सलाह तो ये है कि अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा को बढ़ाइए, उसको सोचिए। ये मत सोचिए कि मुझे सिर्फ सब्जेक्ट को याद करना है, ये सोचिए कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं अगर बच्ची है तो वो क्यों होता है, इसको किस तरह से हम सोचें कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको इन डेप्थ उसको जाके समझ के और कोशिश करें जानने की कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके पीछे क्या है और उसको कैसे साइंटिस्ट ने पहचाना। दूसरी चीज ये है कि अपने मन को खुला रखें, अपने को इस वक्त आप 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ते हैं, आप अपने को एक क्यूरियस स्टूडेंट के रूप में, जैसे कि आपने देखा हमारा मैस्कॉट है डॉक्टर क्यूरियो, और उसका नाम ही हमने इसलिए रखा है कि ये आपकी क्यूरियोसिटी को आप रखें। और आज आपके पास अपने पेरेंट्स के अलावा, अपने टीचर्स के अलावा, आपके पास और भी बहुत संसाधन हैं, जैसे कि आप AI अपने किसी पेरेंट्स की मदद से या अपने किसी बड़े की मदद से भी AI के जरिए भी सीख सकते हैं, आप इंटरनेट के जरिए सीख सकते हैं। तो आप अपने सारे रिसोर्सेस को यूज करके अपने मन को इस तरह से अगर आप सीखेंगे तो आगे जाके आपका वैज्ञानिक बनने का जो सपना है वो अवश्य पूरा होगा।
0: डॉक्टर राजीव बहल, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए और शाइन के बारे में जानकारी देने के लिए, देश के युवा बच्चे कैसे इससे जुड़ सकते हैं, कैसे वैज्ञानिक अनुसंधान में जा सकते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे शाइन 2026, युवाओं को स्वास्थ्य अनुसंधान से जोड़ने की पहल पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में सचिव एवं ICMR महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल के साथ हर्ष रंजन की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और यूट्यूब चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com।
3: Countrywide.

तीज के दिन मथुरा स्थित यमुना बाग में तो मठ महिलाओं और बालकों के लिए ही मेला लगता है, जहाँ खाना पीना, झूलना, गाना सभी कुछ एक साथ चलता है।

0: तीजों के दिन ही घर के लड़कों को मल्ल विद्या की दीक्षा भी दी जाती है विभिन्न अखाड़ों में।
1: ये पहलवान भैया अखाड़े भूतेश्वर को है।

0: वृंदावन स्थित कालीदेह पर 3 दिनों तक चलने वाला दंगल पर्याप्त प्रसिद्ध है। दंगलों की परंपरा निश्चय ही यहाँ की शौर्यपूर्ण पृष्ठभूमि का परिचायक है, जिसका संकेत आज भी गांव के मेड़ पर जाते किसी पुरुष कंठ से फूटते आला से आंका जा सकता है।
1: लिखूं कहानी गढ़ मोवे की, सज्जन सुन ले कान लगाए, बड़े लड़ैया गढ़ मोवे के, इनकी मार सही ना जाए, एक मारे द्वे मर जामे, तीसरो गिरे तमारो खाए।
0: ब्रज में बगीचे सेवन का भी विशेष महत्व है। आइए आप भी हमारे साथ चलकर देखिए ना, आखिर इन बगीचों में होता क्या है।
2: जान जान का कीमत मा, और भैया दाऊ जी महाराज की भांगे, दाऊ दयाल ब्रज के राजा, भांग पीवे तो यहाँ आ जा। आज तो कोई ऐसो जजमान चेते,
3: घुटंदे भैया
2: आज ऐसो जजमान चेते कि 1 किलो पे गाड़ी चले। भैया एक दंड तो लगा दे के, कैसे सपाटे लगावे तू। हाँ अरे के
3: वो डंडे लग गए भैया,
2: अब तो 1 किलो की है गई।
3: है गई रबड़ी।
2: और भैया जा तमन्ना में तो है जाए मिलके, लेकिन मीठो कम रह गए। हाँ भैया दाऊ दयाल ब्रज के राजा, सब ले लो भैया चुल्लू चुल्लू।
0: सुन लिया ना आपने, ये सब तो सांझ ढले बगीचों में रोज ही होता है, किंतु सावन में इसी में गोट की परंपरा और जुड़ जाती है। गोट अर्थात सामूहिक मिला जुला भोजन, जिसमें प्रमुख होता है दाल बाटी चूरमा। मथुरा स्थित कुछ प्रमुख बगीचियां हैं यमुना बाग, टोल वाली बगीची, भूतेश्वर, गिरधरपुर आदि। श्रावण मास में यात्रियों का एक बहुत बड़ा आकर्षण होता है ब्रज के मंदिरों की नित्य अदल बदल कर होने वाली झांकियां, जो हिंडोलों और घटाओं के नाम से जानी जाती हैं। मथुरा स्थित लोक प्रसिद्ध श्री द्वारकाधीश जी मंदिर की ये झांकियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। सुना है आज केसरिया घटा है, तो आइए ना हम भी दर्शन करें। मंदिर का प्रांगण भक्तों से खचा खर्च भरा हुआ है। भीतर की आकर्षक खंभों और विभिन्न कृष्ण लीलाओं से अकोरे के जगमोहन में संपूर्ण साज सज्जा केसरिया है। एक और बड़ा विशाल हिंडोला भी केसरिया सज्जा से मंडित है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ें। भगवान द्वारकाधीश की नयनाभिराम प्रतिमा के सामने बैठी भक्तों की भीड़ और भाव भीगे पद गायन और आरती के मिले जुले स्वर मंत्रमुग्ध किए डालते हैं। कहते हैं अलग अलग तिथियों को अलग अलग निराली सज्जा होती है, निराली घटाएं होती हैं। वो देखिए सामने से आ रहे हैं मंदिर के व्यवस्थापक श्री बैजनाथ चतुर्वेदी, आइए उनसे इस बारे में कुछ जानकारी लें।
4: चतुर्वेदी जी, श्रावण मास में हमारा ये जो द्वारकाधीश का मंदिर है और भी जो अन्य मंदिर हैं, वहाँ विशेष दर्शन होते हैं, विशेष साज सज्जा होती है, हिंडोले कहते हैं उन्हें और घटाएं कहते हैं। अब भी हम यहाँ देख रहे हैं कि आज ये केसरिया घटा, सारी साज सज्जा केसरिया है। क्या आप ये बतलाएंगे कि ये घटाओं से और विभिन्न रंगों से जो सज्जा होती है, उससे क्या तात्पर्य?
5: जी देखिए, यहाँ के विशेष घटाएं हरी घटा हरियाली अमावस्या के दिन होती है, लाल घटा यहाँ की, काली घटा तो सबसे बड़ी यहाँ की घटा है जिसमें लाखों आदमी दर्शन करने के लिए आते हैं, वो तारीख 3 अगस्त को होगी, और जो लाल घटा है वो तारीख 1 अगस्त को होगी। और यहाँ के नौ झूला तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिस दिन लहरिया की घटा और नौ झूला होते हैं। यहाँ के सोने चांदी के झूला लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। भारतवर्ष में जैसा सोने का

0: यहाँ पर ऐसा अन्यत्र कहीं भी नहीं है। जिस समय सोने का भाव 16 रुपए तोले था, उस समय इस झूले की कीमत करीब 1,18,000 रुपए थी। यहाँ की विशेष झांकियाँ बड़ी आकर्षक होती हैं। काली घटा में यहाँ बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, वर्षा होती है और घाट इत्यादि बनाए जाते हैं। और यहाँ की घटाओं में विशेषता यही होती है कि जैसी घटा होती है वैसे ही श्रृंगार होता है, उसी तरह की रोशनी होती है, वैसे ही भगवान के श्रृंगार इत्यादि होते हैं।
1: अच्छा, आप तो ये भी बतला सकते होंगे कि प्रतिवर्ष ये जो यात्री आते हैं हमारे यहाँ, ये विशेष रूप से किस प्रांत से अधिक आते हैं और कब से आना शुरू होते हैं?
0: विशेष करके यहाँ भारतवर्ष का ऐसा कोई प्रांत बाकी नहीं होता है जहाँ से यात्री ना आते हों। दूसरे, यहाँ ठकुरानी तीज से लोगों का आना, जिस क्यों वृंदावन में, बांके बिहारी में भी हिडोला वो साल में एक दिन ही होता है और ठकुरानी तीज पे यहाँ भी विशेष फल फूल का हिडोला होता है, लेकिन भारतवर्ष का ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहाँ से यहाँ यात्री ना आते हों। लाखों यात्री आते हैं और काली घटा के दिन तो यहाँ जैसे और दर्शन तो घटाओं के दिन 7 बजे से 9 बजे तक होते हैं और काली घटा के दिन तो इतनी जनता आती है कि हमको दर्शन 7 से 11 बजे तक रखने पड़ते हैं।
2: मंदिर के प्रांगण में जैसे अनेकता में एकता की स्पष्ट ही दर्शन हो रहे हैं। विभिन्न अंचलों से आए विभिन्न भाषा भाषी यात्री, किंतु भावना एक ही, लक्ष्य एक ही। ये सामने जो भाई खड़े हैं लगता है ये भी कहीं बाहर से आए हैं। आइए इनसे पूछें कि ये आए कहाँ से हैं।
1: भाई साहब, आप यहीं के निवासी हैं कि बाहर से आए हैं?
3: नहीं, बाहर से आए हैं, गुजरात, अहमदाबाद गुजरात से आए हुए हैं।
1: अच्छा, तो यहाँ आप मथुरा में ही आपने दर्शन किए कि ब्रज में और भी विभिन्न भागों में आपने दर्शन किए?
3: सारा ब्रज में हमने दर्शन किया है, मथुरा से लगाकर गोकुल, दाऊद जी, वृंदावन, जतिपुरा, नंदगाम, बरसाना और कई कामवान, ब्रज का सारा ब्रज का हमने दर्शन किया है। और जो दर्शन हमने ब्रज में हमको जो प्यार मिला है और जो दर्शन का लाभ भी मिला है और प्रभु की लीला का जो हमने दर्शन किया है, वो सारा हिंदुस्तान में हमने टूर करके कहाँ भी नहीं किया है। और ये द्वारकाधीश के मंदिर में 3 दिन से हम लगातार आ रहे हैं और यहाँ जो दर्शन का व्यवहार भी देखा, दर्शन का जो सुविधा भी देखा और दर्शन जिस ढंग से करा रहे हैं, ठाकुर जिस ढंग से श्रृंगार कर रहे हैं, जिस ढंग से इन लोग उत्सव मना रहे हैं, आज केसरी भागा का जो केसरिया उत्सव मना रहे हैं और सद्भाग्य से प्रभु कृपा से आज उत्सव का मनोरथ हमारा मनोरथ था आज।
2: ब्रज का ये सावन यात्रियों के टोल की टोल खींच लाता है, जिनकी सुख सुविधा और व्यवस्था का भार बहुत कुछ प्रशासन पर ही होता है। श्रावणी मेले की विशेष व्यवस्थाओं के बारे में बताते हुए जिलाधीश मथुरा श्री वी डी माहेश्वरी।
4: हम लोगों ने इस बारे में विचार विमर्श करने के पश्चात एक मीटिंग बुलाई प्रशासनिक अधिकारियों की, पुलिस अधिकारियों की तथा स्वास्थ्य अधिकारियों की, क्योंकि 2-3 मुख्य समस्या होती हैं। एक तो जो यात्री लोग आते हैं उनकी सुरक्षा का की व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए, बहुत जमाव यात्रियों का होता है जगह जगह मंदिरों पर, घाटों पर, तो उन पर उचित पुलिस व्यवस्था, जहाँ जहाँ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ यात्री भीड़ में इकट्ठे होते हैं, कुछ असामाजिक तत्वों से बचाने के लिए जेब कटे वगैरह, या जो लेडीज आती हैं बाहर से उनके कभी कभी जेवर वगैरह नोचने की कोशिश करते हैं, इसके लिए कुछ महिला पुलिस, महिला होमगार्ड, जहाँ महिलाओं के बीच में लगाने की व्यवस्था है, कुछ सादे लिबास में पुलिस के लोग लगाए जाते हैं ताकि इस तरह के असामाजिक तत्वों को लोकेट कर सकें। घाटों पर विशेष रूप से कुछ पुलिस के आदमी ऐसे लगाए जाते हैं जो डूबने वाले आदमियों को यदि आवश्यकता हो तो बचा सके। सैनिटेशन भी इसके साथ साथ जितना ये शांति व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता उतनी आवश्यकता, इतनी भीड़ और जमाव के लिए सैनिटेशन की भी आवश्यकता होती है, उसके लिए विशेष रूप से दोनों नगर पालिकाओं को, मथुरा तथा वृंदावन को, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इस पीरियड में लगभग 1 महीने की अवधि में, जिसमें यात्रियों का विशेष जमाव होता है, सफाई और स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान दें।
2: श्रावण के प्रत्येक सोमवार को ब्रज का प्रत्येक शिव मंदिर अनूठी साज सज्जा से दमकता है। यहाँ कभी फूल बंगला बनता है तो कभी बर्फ का, कभी फल फूल का तो कभी मिष्ठान।

0: वो देखिए, वो बहन भी तेजी से शायद शिव मंदिर की ओर ही जा रही हैं।
1: बहन आप बड़ी तेजी से जा रही हैं, ऐसा लगता है कि आप मंदिर की तरफ जा रही हैं।
2: आज सोमवार है ना, सोमवार का व्रत करके शंकर भगवान की पूजा करना सावन के महीने में बहुत महत्व रखता है।
1: तो ये हमको भी बताइए कि क्या इसका महात्म्य है सावन के सोमवार के व्रत का।
2: ऐसा है कि सावन के महीने में हर स्त्रियां सोमवार का व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, बेलपत्र, बहुत सी औरतें तो 108 भी चढ़ाती हैं, वैसे जिसकी जितनी श्रद्धा हो उतने चढ़ा देती हैं, बेलपत्र वगैरह और शंकर भगवान पर फल वगैरह जो भी कुछ अपनी श्रद्धा हो वो चढ़ाएं, और फिर व्रत करके शाम के वक्त व्रत खोलती हैं। बहुत सी लोग मीठा भी खाती हैं, बहुत से सारे पदार्थ खा करके अपना व्रत शांत कर लेती हैं।
0: भोले के भक्त भी बड़े विलक्षण होते हैं, न जाने कहां दूर दूर से गंगा जल लिए पैदल चले आएंगे शिवलिंग को अर्घ देने के लिए। कंधों पर रंग बिरंगी कामर और मुख पर आराध का नाम और चलना चलना और सिर्फ चलना।

0: हम सोरो से आ रहे
1: हैं। और कहाँ जाएंगे?
0: ये आने के
1: आप लोग कहाँ वैसे रहने वाले कहाँ के?
0: शेरगढ़ के।
1: शेरगढ़ के, तो आप लोग पैदल गए थे और पैदल आएंगे?
0: हाँ।
1: अच्छा, तो इसका नियम क्या है आपका?
0: नियम ये दूसरा आदमी छिन नहीं जाए।
1: हाँ।
0: कुत्ता उत्ता नहीं आ जाए।
1: अच्छा,
0: ये नियम है सर।
1: बैठना
0: बिल्कुल नहीं।
2: ये जो आपके पास ये जो दिख रहा है रंग बिरंगा, एक तरफ दो कुटकनिया ऐसी है रंग बिरंगी चीजें सजी, इसे क्या कहते हैं?
0: ये कावर कहते हैं, सजावट है।
2: इसमें क्या रहस्य रखा हुआ है?
0: ये इसमें जल है, गंगा जल।
1: तो ये चढ़ाने के लिए
0: महादेव जी?
2: कौन कौन से महादेव जी को चढ़ाएंगे? कहाँ के महादेव?
3: शेरगढ़ के। शेरगढ़ जिस गांव में निवास है उसी गांव के शिव जी पे चढ़ा के वहीं जाएंगे।
4: इसी श्रावण मास में एक और आकर्षण बांधता है, वो है वृंदावन स्थित सुविख्यात श्री बांके बिहारी जी मंदिर, जहां नृत्य की नैना भी राम झांकियों के अतिरिक्त वर्ष भर में चार दुर्लभ दर्शन होते हैं। एक तो अक्षय तृतीया को भगवान के चरण दर्शन, दूसरे श्रावण की हरियाली तीज को सोने चांदी के हिंडोलों के दर्शन, जन्माष्टमी के दूसरे दिन मंगला दर्शन और कार्तिकी पूर्णिमा को बांसुरी रहित बांके बिहारी जी का वेणु धारण किए हुए रिझाने वाला दिव्य स्वरूप। इन दुर्लभ दर्शनों के लिए जैसे भक्त समूह भरभरा उठता है।
2: लगता है कि आप यहाँ के तो है नहीं, कि बाहर से आए हैं क्या?
5: हाँ जी, मैं बाहर से आया हूँ।
2: कहाँ से आए हैं?
5: मैं राजस्थान से आया हूँ।
2: अच्छा, राजस्थान में कहाँ से?
5: सीकर से आया हूँ।
2: सीकर से आए हैं, काफी दूर से आए हैं आप। तो ये बताइए कि विशेष रूप से आप यहाँ दर्शन करने आए हैं?
5: हाँ जी।
2: तो क्यों, आज कोई विशेष दर्शन है क्या?
5: हाँ जी।
2: क्या
5: आज हरियाली तेज है ना?
2: हाँ, तो हरियाली तीज तो देखिए आपके यहाँ राजस्थान में बहुत बढ़िया होती
5: है। राजस्थान में तो बहुत जोर की हुआ है, जयपुर में तेज का मेला बहुत जोर को हुआ है।
2: हाँ।
5: पर ये भगवान कृष्ण के झूले का तो जितना महत्व यहाँ पर देखवाने मिले है,
2: तो ये आज ही होता है क्या?
5: हाँ, हरियाली तेज नहीं तो हुआ है।
2: अच्छा,
5: साल भर में एक दफा देखने को मिले।
2: अच्छा,
5: दर्शन
2: तो आप इसके लिए?
5: इसके लिए विशेष रूप से मैं एक वास्ते आये हूँ।
2: पहली बार आए हैं क्या?
5: नहीं, कई दफा आए हूँ।
2: तो कई बार आते हैं आप?
5: हाँ।
2: तो आप यहाँ कब से आए हुए हैं?
5: अच्छा, होगा 5-7 दिन होगा।
2: अच्छा, अब उसके ये तो वृंदावन में दर्शन तो आप करते ही हैं, और कुछ आपको यहाँ पर दर्शन से हटके भी कुछ सुख मिलता है?
5: जी, वृंदावन में तो सुख मिला ही मिला।
2: हाँ।
5: यहाँ सबसे बड़ा सुख तो ये है कि बिहारी जी के अलावा अपने स्वामी हरिदास जी की समाधि देखवाने मिले।
2: हाँ।
5: और दूसरों रास देखवाने मिला।
2: अच्छा, तो इन दिनों रास भी?
5: तो रास का बड़ा आनंद है।
4: सावन में ही वृंदावन धाम का दूसरा आकर्षण है रास।
6: हे श्री प्रिया प्रीतम जी, आपके नित्रास मंडल को समय है गयो है, सो कृपा करके रास मंडल में पधारो।
4: अच्छा, जिसके माध्यम से आज भी नंदलाला के ब्रजांगनाओं और प्रिया लाडली जी के साथ बिताए मधुर संयोग क्षणों को किसी सीमा तक अनुभव किया जा सकता है।

कण कण में बिखरी ये मस्ती किसी को भी नहीं छोड़ती। नगर की अट्टालिका हो या गांव की झोपड़ी, मन का उत्साह जिसे फूटा ही तो पड़ता है। उधर देखिए, बसे गांव का वह नौजवान खेत की मेड़ पर बैठा, सब कुछ बिसराए अलगोजे की मस्त तानों में खोया हुआ है।

0: गांव की संपन्नता तो लहलहाती फसल और वहां के पशुधन से ही आंकी जाती है। इसी से वर्षा की पहली फुहार पड़ते ही किसान भाई उत्साह से भर उठते हैं। और भी क्या करते होंगे भला? आइए तो बसी गांव के इन भाइयों से पूछें। क्या नाम है आपका?
1: छिद्दी।
0: छिद्दी, और आपका?
2: मंगतू।
0: अच्छा, एक बात बताइए, आप यहाँ मिल गए हैं हमको कि ये सावन मास देखिए पूरे ब्रज में ही कहीं हिंडोले पड़ रहे हैं, कहीं दर्शन झांकी हो रही हैं। आप ये बताइए कि आपका तो खेतीबाड़ी का काम होगा,
1: खेतीबाड़ी
0: है ना? तो खेतीबाड़ी का काम होगा तो आपका जो पशुधन है और खेती के जो हल बैल हैं वही सब आपके काम की चीजें हैं।
1: सब।
0: तो ये बताइए कि जैसे पानी पड़ता है, बरखा होती है पहले, तो आप क्या उसके लिए कुछ करते हैं, उन खेतीबाड़ी के जो पूजा करते हैं या कुछ पर्व उत्सव करते हैं? कुछ
1: पूजा करते हैं।
0: कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं बताइए कुछ।
1: पहले पूजा करते हैं हल की,
0: हल्की,
1: और हल में वो तगा बांधा जाता है,
0: तगा बांधा जाता है। हाँ,
1: फिर हारी के,
0: अच्छा,
1: और फिर बैलों के नार में बांध दिया जाता है,
0: बैलों के नार में भी वही कलाबा बांधते हैं। अच्छा, और भोगों का क्या लगता है?
1: भोग हलवा पूरी या सीरा फुलका।
0: अच्छा,
1: जो
0: तो ये पूजा आप किस दिन करते हैं?
1: जब वर्षा होती है।
0: हाँ, पहली वर्षा।
1: पहली वर्षा होती है, बोने के खेत जाते का।
0: हाँ, तो और फिर कुछ और गाते बजाते भी हैं कुछ
1: गाँव में?
0: तो अब आपके यहाँ खेती बाड़ी शुरू हो गई, बुआई हो गई शुरू?
1: अरे

0: आइए गांव के उस लिपे पुते आंगन में भी चलें, जहां से लोकगीत की धीमी धीमी स्वर लहरियां उड़ उड़ कर हम तक आ रही हैं। बहन आप ये जो गुनगुना रही हैं और ये जो क्या कर रही हैं आप
1: ये सेमैया सेमैया
0: सेमई तोड़ रही हैं आप? तो ये सेमई किसी विशेष काम के लिए तोड़ रही हैं कि ऐसी घर में इस्तेमाल के लिए?
1: विशेष काम के लिए जी, समीने के दिन पूजन होते है तो इसकी पूजा होती है, बहन बेटी को दी जाती हैं और पूजन करके बड़ी बुढ़ी को दे के फिर खाना खाते हैं और राखी बांधते हैं।
0: ये जो सेवैया आप तोड़ रही हैं ये भेजते हैं बेटी के घर?
1: बेटी के घर भेजते हैं और देनदार जो देते हैं 6 महीने के ऊपर और विदा करते हैं बेटी। तीजन के दिन सिनारा भेजते हैं बेटी के लिए मैया, और ससुरवार ससुरार बारे तो सिनारा भेजते हैं मैया के यहाँ, तो बेटी पहर ओढ़ के और अपने

0: डांस कूद गाने और बजाने का होती है।
1: पीर सिंदारे में क्या क्या होता है?
0: सब सुहाग की चीज होती हैं, कपड़े होते हैं, मिठाई हैं, फल हैं, वो सब चीज दी जाती है।
2: श्रावण मास का समापन होता है देश विख्यात उस पर्व से जिसे हम रक्षाबंधन और ब्रज में सलूनों कहा जाता है। बहनें भाइयों के हाथ में पवित्र सूत्र बांधती हैं और भाई उनकी आजीवन रक्षा का बेड़ा उठाते हैं, किंतु ब्रज में राखी बंधवाने के बाद भाई का अपनी ससुराल जाने का एक अनोखा चलन है जिसे बूरा खाना कहते हैं। सुनिए तो सही, ये ब्रजवासी भाई भी तो बूरा खाने जा रहे हैं।

0: गयो मेरी बहना दइए मटर की दाना।
1: दामाद अपनी श्रद्धानुसार बूरा अपने साथ ले जाता है और उसमें ससुराल वाले अपनी हैसियत के अनुसार घी मिलाकर दामाद को खिलाते हैं। भरपूर आव भगत के साथ ही साली सलहजों की छेड़छाड़ और मीठी रसीली गालियों की बौछार भी होती है। लेकिन एक बात है, दामाद ससुराल का घी खाएगा तो उसे शक्ति परीक्षण भी देना होगा। इसे फुद्दी कूदना या ठेका कूदना कहते हैं। ये हमारे ग्रामीण भाई हैं जो इस प्रथा के बारे में बता रहे हैं।
2: सावन में देखिए, अब जो बेटियां हैं वो तो जाती हैं अपने मायके जाती
1: जाते
2: हैं।
1: हैं
2: अच्छा, फिर जो गांव के जो लड़के होते हैं वो अपने ससुराल जाएंगे बूरा खाने,
1: बुरा खान जाना।
2: हैं? तो बूरा खाने में ये बताइए, जब बूरा खा के वहां से विदा होती है तो वहां क्या क्या करते हैं? जैसे छेड़खानी भी चलती होगी, क्या क्या होता है वहां?
1: वह फुद्दी कूदती है, पैथा।
2: फुद्दी
1: हाँ
2: कैसे,
1: पैथा, पैथा
2: क्या करते हैं उसमें?
1: वो दौड़ के आते हैं।
2: कौन, दामाद?
1: हाँ,
2: अच्छा
1: और फिर इनाम बन जाती है, 5 रुपया 10 रुपया
2: अच्छा तो
1: ऐसे।
2: गांव के जितने भी होते हैं तो सब वहां आ
1: हाँ,
2: जाते हैं?
1: रिश्तेदार जो गांव गमे थे
2: हाँ।
1: सब इकट्ठे हो जाते हैं जब फुद्दी कूदती है।
2: अच्छा, तो उसमें जो सबसे पहले ऊंचा कुदूर तक होता है,
1: हाँ,
2: क्या करते हैं?
1: पहले जो 15 हाथ 18 हाथ कूदता है उसके लिए इनाम मिल जाती है।
3: ये सब देख सुनकर ऐसा लगता है जैसे सावन और ब्रज, ब्रज और सावन एक दूसरे के पूरक बन गए हों। और ये भी तो सच ही है कि सावन तो दुनिया भर में आता है, लेकिन ऐसा सुखड़ सुहावना रंगीला सावन तो बस इस ब्रज में ही आता है।

0: गम में थी।
1: हाँ।
0: सब इकट्ठा।
2: और ये भी तो सच ही है कि सावन तो दुनिया भर में आता है, लेकिन ऐसा सुखद सुहावना रंगीला सावन तो बस इस ब्रज में ही आता है।

ब्रिज का रंगीला सावन। अभी श्रोता सुन रहे थे ये रूपक, आलेख एवं प्रस्तुति डॉक्टर अचला नागर की थी।

FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनते हैं कामोद मिश्रा की गायी ठुमरी और कजरी गायन। सबसे पहले सुनते हैं कजरी। बोल हैं सावन की ऋतु आई राग देश में, तत्पश्चात तुम संग लागे नैन राग पीलू में, और अब न बजाओ श्याम राग खमाज में। और साथ ही ठुमरी बोले आज ही ना आए राग शिवरंजनी में।

0: उपशा से संगीत में अभी श्रोता सुन रहे थे कामोद मिश्रा का गायन। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। राति के 11 बजने को है। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
3: झारखंड के 600 बच्चों पर FIR हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए

0: कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, क्या ये FIR जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
1: देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। डॉ जयशंकर ने नई दिल्ली में लाइबेरिया के दूतावास के उद्घाटन पर विदेश मंत्री नियांती को बधाई दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण 8 रजत और 14 कांस्य समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. The monsoon session of Parliament has concluded with both houses being adjourned sine die today. The session began on July 20 and saw a total of 19 sittings over 25 days. In all, 12 bills were passed by the Parliament, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill. In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed concern over the repeated disruptions in the House. He said the House managed to fulfil its core legislative duties by passing and returning 12 bills. Mr. Radhakrishnan informed that the House functioned for only 37 hours and 49 minutes.
3: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes, regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 starred questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up.
2: Earlier, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 was passed by the Parliament, with the Rajya Sabha approving it today. Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy moved the bill